मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के बैसाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 12 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री

0: इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए इसमें पहले सुनते हैं मातृवंदना। स्वदेश प्रेम, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, कल्याण की भावना प्रत्येक भारतीय के हृदय में है और इसी भावना से ओतप्रोत होकर ही भारतवासी विश्व कल्याण और अपने देश की कल्याण की कामना उस परमपिता परमेश्वर से करते हैं।

जब बड़े बड़े संकट हमारे सामने आ खड़े हो जाते हैं, समस्याओं का समाधान हम खोज नहीं पाते, तब हमें याद हो आते हैं संकट मोचन हनुमान जी। आइए, जिन समस्याओं का समाधान हमसे नहीं हो पा रहा है, हनुमान जी के आश्रय में जाकर उनकी मदद मांगकर उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं।

कितने अनुपम भक्त हैं हनुमान जी। जब हनुमान जी से कोई भक्त याचना करता है, उनकी दया दृष्टि चाहता है, उनका नाम जपता है, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे सारे काम तो राम जी बनाते हैं, राम जी का नाम लीजिए, आपके सब काम बन जाएंगे।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन। आलेख और प्रस्तुति है एम अली की।
1: बात अतिरंजित भले ही लगे पर शिक्षा पर इतनी सार्थक टिप्पणी और क्या हो सकती है कि दुनिया में जितने प्रयोग विज्ञान क्षेत्र में नहीं हुए उससे कहीं ज्यादा प्रयोग हमारे देश नियंताओं ने केवल शिक्षा पर कर डाले हैं। शिक्षा को बूझे बिना, शिक्षा के मूल अर्थों की चर्चा किए बिना, शिक्षा के साथ गिनी पिग जैसा व्यवहार दुर्भाग्य का विषय है। नित नए कलेवरों के साथ नई नई शिक्षा प्रणालियां, भले ही सामाजिक सरोकारों से उसका कोई लेना देना न हो, आजाद भारत की कई पीढ़ियां इस सांप सीढ़ी खेल का शिकार हो गईं, पर शिक्षा आज भी बहस, सार्थक बहस के लिए आशातुर है। शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक, प्रौढ़, मुक्त और न जाने क्या क्या प्रयोग, पर शिक्षा की आत्मा पर चिंतन शून्य। शिक्षा की प्राचीन परंपरा बताती है कि उसका स्वरूप मूल्य चिंता का था, वह पुस्तकीय नहीं थी, उसके जीवन के व्यापक अनुभवों से जोड़कर देखा गया था और इस दृष्टि से उसका आशय पूर्ण मनुष्य बनाना था। भारत में शिक्षा की मौखिक और वाचिक परंपरा बहुत समृद्ध रही है और तब शिक्षादाता आलोकदाता था। दरअसल शिक्षा की परंपरा में दृष्टव्य परिवर्तन समय और मूल्यों के परिवर्तन से असंपृक्त नहीं है और मूल्यों की गतिशील प्रक्रिया और इतिहास समय समाज के उन दबावों जिनसे कि मूल्य निर्मित हुए निरंतर परिवर्तनशील है। अतएव शिक्षा पर मूल्य परिवर्तन का प्रभाव स्वाभाविक था, किंतु 19वीं शताब्दी में शिक्षा की पुरानी परंपरा और इतिहास के जीवित अंशों की उपयोगिता के आधार पर एक आदर्शात्मक ढांचा बनाया गया और गांधीवादी दौर में भी यही आदर्शवाद हमारी शिक्षा का मूल आधार है। पर आदर्शवाद की भी अपनी सीमाएं होती हैं और यथार्थ के धरातल से उसकी टकराहट स्वप्न खंडन के लिए पर्याप्त होती है। स्पष्टतः शिक्षा की निरपेक्ष स्थिति को स्वीकार करने के बजाय शिक्षा को व्यापक सामाजिक संदर्भों में देखना होगा और सत्य यह है कि शिक्षा को सामाजिक रूपांतरण में महत्वपूर्ण तथा कारगर भूमिका का निर्वाह करना और महती मूल्य चिंताओं से जुड़ना ही होगा। इतिहास की गतिशीलता को देख हम एक ही बिंदु पर ज्यादा देर ठहर नहीं सकते। यह तो ध्यान में रखना ही होगा कि सृष्टि के केंद्र में मनुष्य है और उसकी चिंता किए बिना हर शिक्षा अधूरी है। पुस्तकीय ज्ञान और परीक्षण शिक्षा के पर्याय नहीं है, ये तो बस गंतव्य तक पहुंचने के साधन हैं। पुस्तकें मनीषियों के जीवन अनुभवों से निर्मित हैं, जिनकी मूल्य चिंता अपने समय के धरातल पर स्थित है और हर समय हमारी मूल्य चिंता का मुख्य केंद्र मनुष्य है। अतएव शिक्षा की तटस्थता की बात बेमानी होगी। जो शिक्षा मनुष्य की तनाव मुक्ति का साधन ना बन सके या हमें सुकून न दे सके वह शिक्षा अधूरी है। आज हम अलगाव में नहीं जी सकते। पुस्तकों की कैद एक तरह का आत्मछल भी हो सकता है। संक्रमण कालिक समाज में मूल्य चिंता और अनिवार्य हो जाती है, लेकिन जो शिक्षा ललकार नहीं सकती, चुनौती नहीं देती, वह मूल्य चिंता तो क्या अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगी। वैज्ञानिक खोजों से चमत्कृत कर देने वाले रमन अब कहाँ हैं? कंप्यूटर अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, पर वे सुविधाएं हैं, क्रांति नहीं। आखिरकार मनुष्य मशीन से बहुत बड़ा है, अतः शिक्षा का सरोकार

0: मूल्य और जीवन अनुभवों से होना चाहिए, क्योंकि भारत में सही सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की कारगर भूमिका होना चाहिए, अथवा इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। इन दिनों भारत मूल्य चिंता के कमजोर दौर से गुजर रहा है और हमने सोचना विचारना बंद कर दिया है। आखिर चिंतन की शून्यता शिक्षा में किसी निर्णायक पहल का आधार कैसे बन सकती है? अतः बेहद जरूरी है कि शिक्षा की बात मूल्य और मनुष्य को केंद्र बनाकर ही की जाए और दिमाग की खिड़कियां और चिंतन के रास्ते सदैव खुले रहें।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और प्रस्तुति थी एम अली की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। आवाजें हैं सुरेश वाडकर और ए हरिहरन की। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।
2: Three, eight, six.

काक भुशुंडी को अखंड भक्ति का वरदान देकर भगवान राम उन्हें अपनी माया से उत्पन्न जगत का रहस्य बताते हुए निज सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं, एक ही पिता के अनेक पुत्र अलग अलग स्वभाव और चारित्रिक विशेषताएं लिए होते हैं। कोई ज्ञानी, कोई तपस्वी, कोई वीर योद्धा तो कोई दानी होता है। पिता का प्रेम उन सबको समान रूप में प्राप्त होता है। निरा मूर्ख पुत्र भी पिता को अपने प्राणों के समान प्रिय होता है। उसी प्रकार मेरा सेवक मुझे प्रिय होता है। अतः सब कुछ त्याग कर हे काक भुशुंडी, तू मेरा भजन कर। इस भांति तुम्हारी गति कालातीत होगी, समय का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रभु से अखंड भक्ति का वरदान प्राप्त कर उनके श्रीमुख से निज सिद्धांत की व्याख्या सुनकर काक भुशुंडी का तन मन पुलकित हो गया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट।
1: कास्तकार भाई बहन मन, खेती कमानी काजे बैला भैंसा छो। कास्तकार भाई बहन मन, खेती कमानी काजे बैला भैंसा छो खूबे जरूरत पड़े से। ये मन चो नहालोर खेती कमानी काजे बैला भैंसा छो खूबे जरूरत पड़े से। ये मन चो नहालोर खेती कमानी मुश्किल होए दे। हम चाहन गांव मन ने सबे ठान ने ढोर अस्पताल नहीं हाय। गुनुक गाय बैला के कई बीमारी पड़लो ने ये मन चो इलाज करा तो काजे किसान भाई बहन मन के खूबे तकलीफ होए से। असन ने गाय बैला ने जौड़तो रोग और हुंचो रोकथाम चो वाट के जानून रले पशु जनावर चो प्राथमिक उपचार किसान आपलो घरे बोले करुक लाए सकोत। तो या कास्तकार भाई बहन मन, पशु जनावर ने जौड़तो रोग और हुंचो रोकथाम चो वाट के हामी जानू। बैला भैंसा ने पेट फूलतोर गोटक बीमारी होय से। ये बीमारी ने बैला भैंसा चो पेट फूले से और ए मन के खूबे तकलीफ होय से। गाय बैला चो पेट फूल तोर कारण होय से जेबे एमन खूबे मात्रा ने हरा चारा खासोत तेबे असन होय से। नहाले कुहलो खराब बीती चारा खादलो ने, नहाले फिर गंदला पानी के पीवलो ने, नहाले पेट ने केस रूंडा हौंडरलो ने, ये सबे कारण लागुन बैला भैंसा चो पेट ने फूला चेगाव रह से। ये बीमारी ने पेट ने अनगर मात्रा ने लेहरा भरी होय से जेचो लागुन पशु के निनाज धरतो ने तकलीफ होय से। पशु जनावर दुखा काजे पाए के भूई ने बिसार मारते रुहात और पेट के बले लात मारुआत। ये जो रोकथाम काजे घर ने 1 लीटर खातो बीती तेल, 1 लीटर गर्म पानी और 20 ग्राम खातोर सोडा मिलाऊन पशु जनावर के पियाऊन दे तो राय। असन कर ले एमन चो तकलीफ कम होय दे। गाय बैला ने पेट सूल नाव चो बीमारी होय से एके हमी पेट दुखा चो बीमारी बले बलुक लाए सकूं। ये बीमारी जौट तोर कारण होय से जेबे पशु खाली पेट ने रह से और आगर बूता करुन दय से तो हुनके पेट दुखा होय से। और हुन चो खातो बीती आहार ने अचानक बदली कर ले, नहाले लेहरा के जौटा तो बीती कई जिनिस के खादलो ने पशु जानवर के पेट दुखा उठुक सके। असने पशु चुपेट ने चारा कुहुन रले, नहाले पेट भीतर ने घाव हौन रले और पथरी हौन रले बले पेट दुखुआए। कास्तकार भाई बहन मन, बैला भैंसा के पेट दुखा चु बीमारी होले ए चु लक्षण बल्ले चीना असन दखा पड़े दे। पशु घन घन पेट के दखुन पाए के भूए अपटते जाए दे। जुगे पेट दुखा दिलो ने भूई ने लोंडून उलट पुलट होय दे और दांत कट रे दे। असन ने हम के जानतो राय कि ये पशु के खुबे पेट दुखा दय से। कास्कर भाई बहन मन, तुरते घर ने एचो रोकथाम काजे जीरा 15 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, अजवाइन 20 ग्राम, काला नमक 5 ग्राम, हरट 20 ग्राम, ये सब जाग के मिसाउन पिसुन भाती गर्म पानी संगे पशु जनावर के पियाउन दे तो राय। असन कर ले पेट ने भरलो लेहरा बाहर निस्के दे और पशु के अच्छा लागे दे। पशु मन के 20-30 ग्राम मात्रा बड़े पशु मन के और नानी पशु मन के 10 ग्राम मात्रा दिन ने दुहार पिया तो राय। कास्तकार भाई बहन मन, के भाई जे भाई हामी दुखुआओं की बैला भैंसा चारा खाऊक नहीं मने आऊआत और असन हुन मन तेबे करुआत जेबे पशु के जर धरली से, नहाले पेट दुखा दय से, नहाले और कोनी दूसर प्रकार चो बीमारी होली से। तो कास्तकार भाई बहन मन, एचो घर ले इलाज काजे 10 ग्राम अजवाइन, आंवला 20 ग्राम, चित्रक 5 ग्राम, पिपली 5 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, हरट 15 ग्राम, काला नमक 25 ग्राम और जीरा 10 ग्राम, ये सब जाग के मिसाउन कुटुन भाती चूर्ण तैयार करतो राय और बड़े पशु के 20-30 ग्राम और नानी पशु के 10 ग्राम तैयार कर लो चूर्ण के गर्म पानी संगे दिन ने दुहार पिया तो राय। असन कर ले पशु के चारा नहीं खाऊ भाव तो बीती बीमारी ले उपचार होय दे और पशु जोना चारा खाऊ मुरे आए दे। गाय बैला भैंसा ये पशु मन तो हम जो संगे गोठिया उग नहीं सकोत मानतर हमन मन के ये पशु मन ने जौट तोर बीमारी चो लक्षण बल्ले चीना के जानून रतो राय और ये मन के कहीं बल्ले तकलीफ हो से बल्ले आप लोग घरेज प्राथमिक उपचार करतो राय फिर पाछे ढोर डॉक्टर मन के बल्ले दखातो राय हम जो खेती कमानी ने बैला भैंसा खूब सहायता देसोत।
0: आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए गोरस दुआनी पाड़। वादा कलाकार हैं धर्मू और साथी।

0: हुलहुली कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गोरस दुआनी पाड़। वादा कलाकार थे धर्मू और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए आपको जानकारी दे दें, हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आज सुबह 8:30 पर आप सुन सकते हैं छत्तीसगढ़ी साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। सुबह 10 होगा प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। नमस्कार जगदलपुर के आज आपके लिए होगा आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पत्रांकन। प्रस्तुति होगी चंद्र ऋषि ठाकुर की। संयोजन होगा श्रीबा सिंह का और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 9 आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 9:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकते हैं प्यासा फिल्म के गीतों का। सुबह 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में जैनू सलाम और साथियों के गाए गोंडी गीत सुने जा सकते हैं। 11 कार्यक्रम होगा एक ही कलाकार। हमारे आज के कलाकार होंगे अभिनेता नसरुद्दीन साहा। 11:30 पर लोक वाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में आप सुन सकते हैं बारात पाड़। वादक कलाकार होंगे भारत और साथी। दोपहर 12 हम आपके लिए लेकर आएंगे रूपक सागौन वृक्ष। लेखक और प्रस्तुतकर्ता होंगे MA रहीम और प्रस्तुति सहयोग होगा हर्ष कुमार स्कॉट का। दोपहर 12:30 पर ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार सुना जा सकता है। दोपहर 1:05 पर कृषि समय की बेड़ा खड़ा चौक गोठ का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम कला और कलाकार। शाम 5 हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी। शाम 5:05 पर समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में आप सुन सकते हैं। शाम 5:10 पर युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी हम आपके लिए लेकर आएंगे। शाम 6:35 पर रतनी और साथियों के गाए जगार गीत सुने जा सकते हैं। शाम 7 कार्यक्रम होगा बस्तर के स्वर। शाम 7:21 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। और रात 8 शिक्षकों के लिए कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं इंटरनेट और आधुनिक शिक्षा पद्धति पर वार्ता। वार्ताकार होंगी इंद्र कुमार झा। रात 8:30 पर पीला मन का जी गोठ कार्यक्रम में सुना जा सकता है संत गुरु घासीदास बाबा पर कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी भरत कुमार गंगादित्य की। आज रात 9:15 पर आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से का। रात 9:30 पर कार्यक्रम मोचो मंचो गीत कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित विभिन्न लोकगीत। और रात 10 लोक वाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में सुना जा सकता है कंकालीन माता पाड़ और लक्ष्मी जगार पाड़। वादक कलाकार होंगी गणपति कड़ियारी और साथी। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 हुए हैं। अब क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोक्तवान यत् केंद्र प्रशासनस्य निरंतर प्रयास ही भारतम पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेश यात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामीरात्, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री शुक्रवासरे नीदरलैंड देशं सम्प्राप्स्यति। 17-2000 वर्षे स्वान्तिम यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैंड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिक वार्तां करिष्यति। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामी यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धीषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत बिस्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असमराज्यस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असमराज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

एक और सुहानी भोर में नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वीकार कीजिए हरिप्रिया का नमस्कार।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 15102।
6: नमस्कार, जगदलपुर में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पत्रांकन कार्यक्रम और फिल्मी गीतों की मधुरिमा, लेकिन इससे पहले कुछ बातचीत कर ली जाए। जी हाँ श्रोताओं, पहला सुख है निरोगी काया, ऐसा सब कहते हैं और ये 100% सच भी है, क्योंकि जब हमारी काया निरोगी रहेगी तब हम हर बात का आनंद ले सकते हैं। और हमारी काया को निरोग रखने के लिए जो सबसे बड़े सहयोगी होते हैं, आज करते हैं उनकी बात। जी हाँ, आज 12 मई है और आज हम मनाते हैं नर्स दिवस। विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है आज। ये फ्लोरेंस नाइटेंगल की याद में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटेंगल एक प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक, सांख्यिकीविद और आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थी। उन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की रात दिन सेवा करने के कारण उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से, यानी दीपक वाली महिला के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने नर्सिंग को एक सम्मानित पेशा बनाया और 1860 में लंदन में नर्सिंग स्कूल की स्थापना भी की थी। और यदि हम भारत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने में भारत में पहली महिला नर्स थी काशीबाई गणपत जी। उन्होंने 1891 के आसपास प्रशिक्षित नर्स बनकर रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा और नर्सिंग के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। तो इनकी याद में हम मनाते हैं और आप और हम, पूरी दुनिया जानती है कि नर्स का कितना बड़ा योगदान है। वे स्वास्थ्य जीवन प्रणाली की रीढ़ मानी जाती है। वो सेवा भाव से मरीजों की सेवा करती है, रोगियों की सेवा करती है। और आज के दिन को मनाने का उद्देश्य भी ये है कि हम नर्सों के प्रति जागरूक हों और उन्हें सम्मानित करें। और फ्लोरेंस नाइटेंगल को श्रद्धांजलि भी दें। ये नर्सों की पेशेवर चुनौतियों को भी उजागर करता है। वो दिन रात धूप में हर जगह घूमती हैं, फिर अपने कार्यों को करती हैं। एक तरह से डॉक्टर की सहयोगी मानी जाती हैं नर्सें। और कर्मचारियों के साथ काम करते हुए वो भावनात्मक रूप से भी मरीजों के साथ जुड़ी हुई रहते हैं। इसलिए हमें युवाओं को नर्सिंग के पेशे को कैरियर के रूप में चुनने के लिए उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। और आजकल बढ़ावा मिल भी रहा है। और हम ये कैसे कह सकते हैं कि आज का ये दिन स्वास्थ्य सेवा में उनके निस्वार्थ भाव से की गई सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। तो हमारे आसपास भी यदि कोई नर्स हैं, इस सेवा से जुड़ी हुई हैं, तो आप उन्हें शुभकामनाएं दें, प्यार दें और उनके प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करें, क्योंकि रोगी के चेहरे पर मुस्कान देखकर नर्सों को भी काफ़ी राहत महसूस होती है। वो खुश होते हैं और जब रोगी स्वस्थ होकर जाता है तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। और जीवन का सार तो यही है कि हम लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरें और अपने आप को संतुष्ट पाएं।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में, हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आइए अब कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं कार्यक्रम पत्रांकन की ओर। प्रस्तुति है चंद्र ऋषि ठाकुर की और इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं शिवा सिंह।

0: पत्रांकन सुन रहे आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर
1: और मैं शिवा सिंह का प्यार भरा नमस्कार।
0: तो शिवा जी, आज हम फिर हाजिर हैं कार्यक्रम पत्रांकन का एक नया अंक लेकर। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पत्रांकन, और आप बताएं कि पहला संदेश किनका है और उन्होंने क्या लिखा है।
1: जी हाँ चंद्र ऋषि जी, पहला जो खत हमें भेजा है वो है मेघापारा लोरमी से मनोज कुमार साहू। इन्होंने लिखा है, दिया तरी अंधियार, चेहरा में ही आंखें होती हैं पर चेहरे को देख नहीं पाती। ठीक इसी तरह आपके यहाँ का एक कार्यक्रम है और वो है पत्रांकन, जिसमें पत्रों को शामिल नहीं किया जाता, यथा नाम यथा गुण नहीं लगता। आपके यहाँ पत्रों पर आधारित कार्यक्रम नहीं होते तो हमें कोई शिकायत नहीं होती। दीप जल रहा है, अगर तेल में कपूर डाल दिया जाए तो प्रकाश के साथ खुशबू तो फिर क्या ही कहने। SMS के साथ पत्र कपूर ही तो हैं। जी हाँ, जब तक सांस है तब तक आस होनी चाहिए। पत्रांकन के पहले या बाद में एक गीत पत्र से संबंधित होना चाहिए, ऐसा इन्होंने लिखा है चंद्र ऋषि जी। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी?
0: सबसे पहले तो समय निकालकर अपने विचार रखने के लिए मनोज कुमार साहू जी का धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने कहा है कि पत्रांकन नाम तो है पत्रांकन, लेकिन उसमें पत्रों को शामिल नहीं किया जाता
1: जी।
0: तो शिवा जी, मैं ये आपको बताना चाहूंगी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है वैसे वैसे विज्ञान और तकनीकी ने भी तरक्की की है, और उसी के साथ साथ संचार का जो माध्यम है वो भी बदला है। पहले हम पोस्टकार्ड या कहे टेलीग्राम या अंतरदेशी जो आता था उसके माध्यम से पत्र भेजते हैं। आज के जमाने में आप देखिए कि कितने लोग पोस्टकार्ड के माध्यम से अपने प्रियजनों को, अपने रिश्तेदारों को खत भेजते हैं। कुछ भी चीज अगर जानकारी लेनी अगर उन्हें होती है सिर्फ एक फोन उठाते हैं, उसमें अपना संदेश टाइप करते हैं और भेज देते हैं, और जो भी उनको जानकारी चाहिए होती है वो तत्काल उन्हें प्राप्त हो जाता है। और रही बात कि हम पोस्टकार्ड्स क्यों शामिल नहीं करते, तो ये बात गलत है। हम पोस्टकार्ड भी शामिल करना चाहते हैं, लेकिन हमें पत्रों के माध्यम से संदेश हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अगर कोई श्रोता हमें पत्र भेजते भी हैं तो बहुत सारी दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे उनका जो पोस्टकार्ड है वो कहीं गुम हो गया या फिर किसी गलत जगह पे पहुंच गया या फिर हमें देरी से मिल रहा है। तो इससे हमारे श्रोताओं को, जो पत्र भेजने वाले हैं, उन्हें ही असुविधा होगी। तो अगर हम संदेश जो है फोन के माध्यम से या SMS या WhatsApp के माध्यम से अगर ले रहे हैं तो ये हम सिर्फ अपने श्रोताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ले रहे हैं, लेकिन ये बात गलत है कि हम पत्र को शामिल नहीं करते। हम पत्रों को भी शामिल करते हैं, लेकिन पत्र हमें आजकल प्राप्त उतने नहीं हो रहे हैं, और इस बात को मैं समझ भी सकती हूँ क्योंकि तकनीकी के साथ साथ हम सब भी और हमारे श्रोता भी काफी तरक्की कर चुके हैं और वो भी अब मॉडर्न हो चुके हैं और नए नए तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए, आपने हमें संदेश भेजा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार साहू जी।
1: इन्होंने ये भी लिखा है चंद्र ऋषि ठाकुर जी कि पत्रांकन के पहले और बाद में यदि एक गीत पत्र से संबंधित होता तो बहुत अच्छा होता।
0: जब भी हम ऐसे कार्यक्रमों में किसी तरह से बदलाव करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम हर पत्र के बाद में एक एक गाना लेना शुरू करेंगे तो हमें 7 पत्रों के लिए, 7 हमें संदेश प्राप्त हो रहे हैं उन्हें ही बनाने के लिए हमें पूरे 1 घंटे का समय चाहिए होगा, और ऐसे में हम अपने श्रोताओं के कम पत्र शामिल कर पाएंगे। और गीत तो आप सभी सुनते ही रहते हैं अपने पसंद के गीत, क्योंकि हमारे यहाँ से फरमाइशी गीतों के भी कार्यक्रम जाते हैं हर दिन। आप कार्यक्रम श्रोता सुमन के माध्यम से अपने पसंद के गीत सुनते हैं, और अभी हमने नया एक फरमाइशी कार्यक्रम शुरू किया है मोचो मंचो गीत, उसमें भी आप अपने पसंद के गीत सुनते हैं। तो श्रोता जो है फिल्मी गीत तो सुन भी सकते हैं हमारे दैनिक कार्यक्रम में, लेकिन सिर्फ जो उनके पत्रों पर आधारित है वो कार्यक्रम के लिए तो थोड़ा सा ही समय मिला है, उसमें भी हम गीत सुना देंगे तो उनके पत्रों को उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस या कहे महत्व नहीं मिल पाएगा, उतना समय नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों को तौलना पड़ता है, तब जाकर हम एक कार्यक्रम बनाते हैं। लेकिन आपके जो सुझाव है वो काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हम ये अपेक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे आपसे कि आप आगे भी हमें इसी तरह के सुझाव भेजते रहें। अब आगे बढ़ते हैं शिवाजी, बताएं कि अगला जो पत्र है या कहें अगला संदेश है वो किनका है।
1: अगला जो पत्र हमें भेजा है वो है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविन्द्र, रौनक सेन। इन्होंने लिखा है, हर मौसम की एक अलग ही अनुभूति होती है। इंसान के जीवन में चाहे मौसम ठंड का हो, बरसात का या फिर भीषण गर्मी का, अपने अपने समय अपना विकराल रूप दिखाया ही करते हैं, और ऐसे मौसम में पार करके हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए चलना पड़ता है। लेकिन मौसम कोई भी हो, हमें सभी मौसम एक जैसे लगने लगते हैं। जब हम आकाशवाणी जगदलपुर से अपने आप को जोड़ते हैं तो मौसम और भी खुशनुमा बन जाता है और बड़ा ही सुकून देता है। जैसे कि पिछले पत्रांकन कार्यक्रम में ऐसा ही एहसास हुआ। अप्रैल माह की अंतिम मंगलवार 28 तारीख की सुबह नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी परिवार अपने घर के बरामदा में इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम को सुन रहे थे, जिसे अपने बेहतरीन अंदाज मनमोहक आवाज से कार्यक्रम को गुंजायमान किया आकाशवाणी जगदलपुर के जाने माने मशहूर सुप्रसिद्ध उद्घोषिका बहन रानू जी और साथ में बहन जसवीर कौर जी। क्या अंदाज, क्या आवाज, वाकई काबिले तारीफ। सभी श्रोताओं के पत्रों को विस्तार पूर्वक समावेश किया। कार्यक्रम को सुनकर दिल गदगद हो गया और मन आनंदित हो गया। और इसी क्रम में भाई मनिंदर सिंह देवगुरु जी, बहन रूपाली सेठिया, गायत्री आचार्य जी, मर्सी

0: स्वर्णा बहन, रानू जी के साथ साथ अन्य उद्घोषक साथियों के हृदय स्पर्शी अभिनय ने हमें पूरे सप्ताह श्रोता सुमन कार्यक्रम, नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम, साथ में फोन इन चाहत कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में आनंदमयी सुंदर मौसम का आनंद उठाया। आकाशवाणी जगदलपुर के सभी कार्यक्रमों के लिए हमें सोचना पड़ता है कि ऐसे क्या लिखें, क्या कहें कि हमसे कहीं कभी शब्द में गलती ना हो जाए। इसलिए अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया सुधार कर पढ़ लीजिएगा और पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ दीजिएगा। और एक बात, हमारा पत्र अन्य कार्यक्रम में शामिल हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस कार्यक्रम में कम बुद्धि के अनुसार समीक्षा लिखकर भेजने का हर समय प्रयास करते रहते हैं। बहरहाल ऐसे सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, मनमोहक, सदाबहार समागम और शानदार, जानदार, मधुर प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी जगदलपुर परिवार के साथ कार्यक्रम प्रमुख संयोजिका बहन चंद्र ऋषि ठाकुर जी को स्नेह भरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। पत्र का समापन करते हुए पुनः धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो पूरे सेन परिवार को, पवन कुमार जी को, प्रभा देवी जी को, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक, आप सभी को दिल से धन्यवाद। और आपने हमारे कार्यक्रमों को पसंद किया, चाहे वो पत्रांकन हो, चाहे वो श्रोता सुमन हो, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। आपने यहाँ पे एक बात लिखी है कि आप चाहे टूटी फूटी भाषा में, या फिर आपने यहाँ पे ये कहा है कि आप अपने अनुसार समीक्षा करते हैं और जो गलती होती है उसे हम सुधार लें, तो हम आपको बताना चाहेंगे ये मायने नहीं रखता कि हमारे जो श्रोता है वो किस भाषा में, किस बोली में, या फिर कितनी त्रुटियों के साथ हमें पत्र भेज रहे हैं या संदेश भेज रहे हैं। ये मायने रखता है कि आप किस भावना से हमें पत्र भेज रहे हैं। आप लोग इतने साफ मन से और इतने प्यार से हमारे आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रमों को सुनते हैं और इतने प्यार से आप लोग तारीफ करते हैं कि हम आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। तो आपकी भाषा भले टूटी फूटी हो, लेकिन आपकी भावना जो है वो टूटी फूटी नहीं है। आप अपने प्यार से और इतने सही मन से, साफ मन से हमें सुनते हैं और हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा भेजते हैं, तो हम आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप हमसे आगे भी इसी तरह से, चाहे वो टूटी फूटी भाषा में ही क्यों ना हो, इसी तरह से अपना प्यार हमें संदेशों के माध्यम से भेजते रहेंगे। आपके और आपके पूरे परिवार को दिल से धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और हमें पत्र लिखा। तो आगे बढ़ते हैं, शिवा जी बताएं कि अगला पत्र किनका है।
0: अगला जो पत्र है वो है ऋषि जी, देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री। इन्होंने लिखा है, 1 मई को प्रसारित नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम में विश्व मजदूर दिवस पर बहुत सुंदर जानकारी के साथ फिल्म कुली का गीत सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, बहुत ही सुंदर गीत मन को भा गया। बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध के बारे में अच्छी जानकारी ज्ञानवर्धक लगा। साथ ही आज के अतिथि क्रम में डॉक्टर स्वर्णिम मिश्रा जी काउंसलर की भूमिका पर साइकोलॉजी काउंसलर से चंद्र ऋषि ठाकुर जी की बातचीत अच्छी लगी। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में मजदूर के गीत में हम मेहनत कश इस दुनिया में अपनी हिस्सा मांगेंगे करने प्रिय लगा। गुलशन में सभी गीत अच्छे लगे, इसके लिए रानू जी को हार्दिक बधाई। साथ ही इसी दिन एक ही कलाकार में गायक मन्ना डे पर केंद्रित जानकारी और गीत बहुत अच्छा लगा। दोपहर की सभा में श्रोता सुमन कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक गीतों के साथ श्रोताओं के ढेर सारे पत्रों को शामिल करने के लिए प्रस्तुतकर्ता गायत्री आचार्य जी को हार्दिक बधाई। 8 मई को नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम में आज के अतिथि क्रम में रंगमंच कला से जुड़े रुद्र नारायण पाणिग्राही जी से श्री नारायण सिंह बघेल जी की बातचीत में बस्तर की कला और संस्कृति को देश विदेश तक पहचान दिलाने में पाणिग्राही जी का योगदान जारी है, बहुत ही सुंदर जानकारी अच्छी लगी। इसके लिए रुद्र नारायण पाणिग्राही जी, नारायण सिंह बघेल जी और नमस्कार जगदलपुर के प्रस्तुतकर्ता रानू जी को बधाई। 9 मई को नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम में काव्य सरिता में काव्य पाठ गंगोत्री मिश्रा जी के द्वारा प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण अपने कविता में किया, बहुत ही अच्छा लगा। गंगोत्री मिश्रा जी को बधाई। एक ही फिल्म से क्रम में न तुम जानो न हम इस फिल्म के गीत बेहतरीन लगे, इसके लिए प्रीति यादव जी को हार्दिक बधाई। गुड़दुम में केदार यादव और साधना यादव जी के गाए छत्तीसगढ़ी गीत में बागे बगीचा दिखेला हरियर छत्तीसगढ़ी गीत बहुत कर्णप्रिय लगे। साथ ही दोपहर की सभा में श्रोता सुमन कार्यक्रम में बेहतरीन गीतों के साथ श्रोताओं के अधिक से अधिक पत्रों को शामिल करने के लिए प्रस्तुतकर्ता शिबा सिंह जी के साथ आकाशवाणी जगदलपुर केंद्र को ढेर सारी बधाई।
1: जी, तो सबसे पहले आप सभी को पत्र लिखने के लिए, संदेश भेजने के लिए धन्यवाद। और आपने यहाँ पे दिनों के अनुसार हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा की है, तो इससे ये पता चलता है कि आप हमारे कार्यक्रमों को कितने ध्यान से सुनते हैं और हर दिन सुनते हैं, चाहे वो मजदूर दिवस की बात हो, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा पर आधारित कार्यक्रम हो, चाहे हमारे स्टूडियो में आमंत्रित अतिथियों से हमारी भेंट वार्ता हो। आपने हर कार्यक्रम की यहाँ पे समीक्षा अच्छे से लिखी है। और जब आपने 1 मई की बात की तो मुझे तुरंत ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की वो कविता याद आ गई जो हमने स्कूल के समय में पढ़ी थी, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिनत बार मैंने धरा पर स्वर्ग बनाए। और ये बात सही भी है क्योंकि हम अपने आसपास जितनी भी भौतिक संरचनाएं देख रहे हैं या हमारे जीवन में जो भी बड़े बड़े कार्य हमें करने होते हैं, चाहे वो घर बनाना हो या किसी तरह का व्यवसाय करना हो, तो इन सभी चीजों में मजदूरों का कहीं ना कहीं हाथ होता है। उनकी नींव जो है वो मजदूर ही रखते हैं, तो उनको एक दिवस समर्पित करना, उनको सम्मान देना, ये बनता है, वो ये डिजर्व करते हैं। तो 1 मई जो है वो हमारे मजदूरों को ही समर्पित है, ऐसे ही मजदूरों को जिन्होंने निस्वार्थ भाव से तरक्की में साथ दिया और हमारे समाज की संरचना को बनाने में साथ दिया। और यहाँ पे आपने जिन भी कार्यक्रमों की तारीफ की है और हमारे उद्घोषकों को यहाँ पे आपने जो बधाइयाँ प्रेषित की है वो बधाइयाँ उन तक पहुँच गई है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आपने विस्तार से हमारे कार्यक्रमों की यहाँ पे समीक्षा की है, इसी तरह आगे भी आप समीक्षा करते रहें और हमें संदेश भेजते रहें। तो एक बार फिर से गन्नू लाल रजक जी, के आर साहू जी, अश्विनी वर्मा जी और गणेश राम मिस्त्री जी को धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं, बताएं कि अगला संदेश किनका है।
0: अगला पत्र हमें भेजा है पार्थ रेडियो श्रोता संघ छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से, श्री राजेश सांबले पाटिल का। इन्होंने लिखा है, दिनांक 28 अप्रैल को प्रसारित पत्रांकन कार्यक्रम सुना। श्रीमती जसवीर कौर जी और श्रीमती रानू जी की प्रस्तुति में यह कार्यक्रम बहुत ही मनभावन रहा। श्रोता मित्र श्री मनोज कुमार साहू जी द्वारा आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम को सफेद काली चाय की उपमा देने पर श्रीमती रानू नाग जी ने इस सफेद काली चाय की चुस्की लेते रहिएगा, ये बड़ा ही हाजिर जवाबी मजाकिया अंदाज में अर्थपूर्ण उत्तर दिया। आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित नमस्कार जगदलपुर, एक ही कलाकार और श्रोता सुमन, ये अग्रणीय एवं श्रोता प्रिय कार्यक्रम है। साहित्य के विविध विधाओं पर प्रकाश डालता हुआ नमस्कार जगदलपुर हमारे सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति एवं वर्तमान घटनाओं से जुड़े सभी विषयों पर भाषा करता है। मधुरिमा में सुंदर शब्दावली के साथ आप जो गीत सुनवाते हैं उनमें से बहुत से गीत हमारे भी पसंद होती है। उससे हमसे जुड़ा गीत दिन भर हमारे मन मस्तिष्क में दस्तक देता है तथा हम अनायास ही उसे गुनगुनाते रहते हैं। दिनांक 23 अप्रैल को मनिंदर जी की प्रस्तुति में एक ही कलाकार एवं श्रोता सुमन कार्यक्रम सुना। आपने पार्श्व गायिका एस जानकी की जीवनी पर विस्तृत जानकारी के साथ उनके गाए बहुत ही मधुर गीत सुनवाए। श्रोता सुमन में सभी श्रोताओं के पत्रों को शामिल किया, साथ ही कार्यक्रम में बहुत ही लाजवाब और मनभावन गीत सुनवाए। इन दोनों कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए आपका आभार और अभिनंदन।
1: शिवा जी, वैसे तो हमारे लिए हमारे सभी श्रोता खास हैं, लेकिन क्योंकि आप दूसरे प्रदेश में महाराष्ट्र से हैं और फिर भी हमारे आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रमों को सुनते हैं, तो ये हमारे लिए और खास हो जाते हैं। तो सबसे पहले राजेश साबले पाटिल जी, आपको समय निकालकर हमारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए धन्यवाद। महाराष्ट्र में क्योंकि मराठी भाषा बोली जाती है और हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी और यहाँ बस्तर में तो और भी अन्य बोली भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। और आपने हमारे उद्घोषकों द्वारा जो पत्रांकन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था और उसमें जो हाजिर जवाबी आपको मिली थी उसे आपने पसंद किया है, तो हम आपको बता दें हमारे जो उद्घोषक साथी हैं वो सभी वाक्पटु होते हैं और जानते हैं कि पत्रों का जवाब किस तरह से देना है, और आपने उनके जवाब को पसंद किया, ये हमारे लिए भी अच्छी बात है, हमारे लिए खुश होने का विषय है। तो हमारे अन्य कार्यक्रमों को जैसे एक ही कलाकार, श्रोता सुमन, इन कार्यक्रमों को सुनते हैं, नमस्कार जगदलपुर को सुनते हैं। और आपने यहाँ पे ये भी लिखा है कि नमस्कार जगदलपुर के माध्यम से आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और वर्तमान घटनाओं से जुड़े हुए बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो हम आपको बता दें क्योंकि हमारा आकाशवाणी का उद्देश्य ही ये होता है कि हम आप लोगों को मनोरंजन के साथ साथ सूचना भी और ज्ञान भी दें, तो हम अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप सभी तक इन कार्यक्रमों को पहुंचाते हैं। तो आपने अपना पत्र लिखा और यहाँ पे संदेश के माध्यम से आपने हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा की और बधाई प्रेषित की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला जो पत्र है वो है पलटूराम कोठारी, ये पत्र आया है संबलपुर जिला कांकेर से। इन्होंने लिखा है कार्यक्रम के संबंध में, मोचो मंचो गीत ये नया फरमाइशी कार्यक्रम शुरू करने के लिए आकाशवाणी जगदलपुर का बहुत बहुत धन्यवाद एवं 29 अप्रैल को उद्घोषिका रूपाली सेठिया जी ने प्रस्तुत किया, हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन पहले आकाशवाणी जगदलपुर से पसंद आपकी कार्यक्रम चल रहा था, उसे पुनः शुरू करने की कृपा करें।
1: तो सबसे पहले पलटूराम कोठारे जी, धन्यवाद आपका कि आपने संदेश भेजा और आपने यहाँ पे मोचो मंचो गीत, जो हमने नया फरमाइशी कार्यक्रम शुरू किया है, उसके लिए हमें धन्यवाद प्रेषित किया है। हम ये जानते हैं कि हमारे श्रोताओं को सबसे ज्यादा पसंद वही कार्यक्रम आते हैं जिसमें उनके फरमाइशी गीत सुनाए जाते हैं, उनके नाम शामिल किए जाते हैं, उनके फरमाइशी गीत शामिल किए जाते हैं। इसलिए हमारा एक प्रयास था कि हम तो क्योंकि हिंदी गानों पर आधारित एक कार्यक्रम सुनाते ही हैं, जो कि श्रोता सुमन है, जो आप सभी का पसंदीदा भी है, लेकिन जो लोकगीत है उन पर फरमाइशी कार्यक्रम एक भी नहीं थे। इसलिए हमने ये प्रयास किया कि हम मोचो मंचो गीत कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी लोक गीत हैं उनको सुनाएं। और आपने यहाँ पे पसंद आपकी कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की बात कही है, तो हम पसंद आपकी कार्यक्रम के बदले ही मोचो मंचो गीत का कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को लोक गीतों का भी आनंद उतना ही मिल रहा होगा जितना फिल्मी गीतों का मिलता है। श्रोता सुमन के माध्यम से आप फिल्मी गीतों का आनंद उठाएं, फरमाइशी फिल्मी गीतों का आनंद उठाएं और मोचो मंचो गीत के माध्यम से आप लोक गीतों का आनंद उठाएं। तो फिर से एक बार आपका फिर से कोठारे जी, संदेश भेजने के लिए धन्यवाद। अब शिवा जी आगे बढ़ते हैं, बताएं कि अगला मैसेज किनका है।
0: अगला पत्र इन्होंने भेजा है, ये है ग्राम बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। हमारे ये श्रोता है योगेश सारवा। इन्होंने लिखा है, ऋषि जी आकाशवाणी जगदलपुर से नियमित कार्यक्रम के तहत इस दिन हमने श्रोता सुमन का बेहद बेहतरीन कार्यक्रम सुना, बेहतरीन प्रस्तुति रही, खूबसूरत गीतों के साथ सजा यह कार्यक्रम और भी खूबसूरत हो गया। जब मनिंदर जी जैसे गुणी इस कार्यक्रम को पेश किया, बेहतरीन गीतों के लिए एक बार पुनः अभिनंदन और हार्दिक बधाई।
1: इनका संदेश तो छोटा सा ही है लेकिन सुंदर है, प्यारा है। तो योगेश सारवा जी ने लिखा है यहाँ पे कि उनको मनिंदर जी की जो प्रस्तुति है वो बहुत अच्छी लगी। तो आपकी ये जो शुभकामना है, ये जो आपने प्रेषित की है हमारे सामने बधाई, वो हम उन तक पहुंचा देंगे। और श्रोता सुमन कार्यक्रम को और हमारे अन्य कार्यक्रमों को सुनने के लिए और पसंद करने के लिए आपका धन्यवाद। अब शिवाजी बताएं कि किनका संदेश है।
0: मेघापारा लोरमी से अगला पत्र हम तक भेजे हैं कृष्ण कुमार, धनंजय, गायत्री, मनोज कुमार साहू। इन्होंने लिखा है, बने जैविक खाद डाल के गमला मा गुड़दुम के बीज डाली स्मृति यादव जी, जब घुमर के आईस करिया बादर, जब ना घुमड़ घुमड़ के बरसिस बीज ह, बिरवा बन के लहलहाए लागिस, बिरवा के डार मा अलग अलग फूल के कालम कारिस, ददरिया देशभक्ति बरसाती गीत, असन फूल मा हृदय ला गदगद करके, तन मन ला झुकवावे घर अंगना ला, मह महाविस पूरा परिवार एक ठौर मा ठुडिया गए, बड़ सुग्घर प्रस्तुति बर बधाई
1: जी। ये आखिरी मैसेज है और ये हमें छत्तीसगढ़ी में प्राप्त हुआ है, मैं इसको फिर से पढ़ना चाहूंगी। इन्होंने लिखा है, बने जैविक खाद डाल के गमला मा गुड़दुम के बीज डाली प्रीति यादव जी, जब घुमर के आईस करिया बादर, और जब उमड़ घुमड़ के बरसिस, तब बीज हा बिरवा बन के लहलाए लागिस, बिरवा के डार मा अलग अलग फूल कलम करिस, ददरिया देशभक्ति बरसाती गीत, असन फूल मन हृदय ला गदगद करके, तन मन ला झुमवा के घर अंगना ला महमुआइस, पूरा परिवार एक ठौर मा ठुड़ियागे, बड़ सुघर प्रस्तुति पर बधाई। तो साहू परिवार लगते छत्तीसगढ़ी ला बड़ पसंद करते, काबर की हर बार पत्रांकन मा उकर छोटे मोटे घला छत्तीसगढ़ी में कोनू ना कोनू संदेश हमला मिल जाते, और छत्तीसगढ़ी तो मोला बड़ मीठ बोली लागते। हमन घर में छत्तीसगढ़ी में गठियाथन घला शिवाजी, तो आप मन हमार कार्यक्रम ला औ बादर ले ता पौधा ले, पौधा बोले से आप मन यहाँ बिरवा ले, एकरन हमर तुलना करे हाओ, और आप मन के हो कि कैसे बने जैविक खाद डाल के गुड़दुम के बीज डालिस प्रीति यादव जी, तो प्रीति यादव जी के आप मन एक रन तारीफ घला करे हो, जे तरह के आप मन है एक रन तुलना करे हो हमारे कार्यक्रम ले, जैसे बारिश होते तहाने नवा पौधा या फूल खिलते और तरह तरह के फूल मन खिलते, ओकर से आप मन एक रन तुलना करे हो, तो एक बात से समझ में आते कि आप मन है छत्तीसगढ़ी में घला बड़ अच्छा पकड़ है आप मन के और तुलना घला बढ़िया से करेल जानते। तो मेघापारा लोरमी से जतना भी साहू परिवार मन है आप मन मला छत्तीसगढ़ी बोली में एक रन मैसेज भेजे हो, एक बार धन्यवाद। और हम यही चाहतन कि आगु घला आप मना छत्तीसगढ़ी बोली में नान वोन घला कहीं कुछ लिखत रहो। ता अतिक मया बर आप सप्पा मन के धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करत हूँ मैं। हाँ, जय जोहार। तो शिवा जी, ये आखिरी पत्र था और इस पत्र के साथ ही हम अपने श्रोताओं से अनुमति लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले हम आप सभी को अपना फोन नंबर जरूर बताएंगे ताकि आप हमें पत्र या कहें संदेश भेज सके। हमारा फोन नंबर है 9425 90590।
0: एक बार फिर से सुन लेंगे, 9425 90950।
1: तो अब इस कार्यक्रम से हमें दे अनुमति,
0: नमस्कार।

अपने विचारों से भरे पत्रों का कार्यक्रम आप सुन रहे थे पत्रांकन में। प्रस्तुति थी चंद्र ऋषि ठाकुर की और इस कार्यक्रम की संयोजिका थी सीबा सिंह। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, दिनों की बात करें तो आज एक और विशेष दिन है, शायद आपको याद हो। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय स्वस्थ पादप दिवस। हर साल 12 मई को मनाया जाता है ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 मई को इस दिवस के रूप में घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य आप भी जानते होंगे, इसका उद्देश्य है पौधों के स्वास्थ्य के महत्व देना, भूख को कम करने, गरीबी मिटाने, जैव विविधता की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता फैलाना है। आप सभी जानते हैं कि पौधे हमारे भोजन का 80% और हमारे द्वारा ली जाने वाली सांस यानी कि ऑक्सीजन का 98% हिस्सा प्रदान करते हैं और इसलिए भी हम पौधों की उपेक्षा नहीं कर सकते। पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाना जो खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा होती हैं। यह खाद्य दिवस और कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण कन्वेंशन द्वारा प्रचारित किया गया है, क्योंकि भोजन हमारे लिए ज़रूरी है और हवा या ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह दिवस इस बात पर जोर देता है कि स्वस्थ पौधे स्वस्थ मानव और पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। और यदि हम गीतों की बात करें, प्रेम की बात करें, तो बिना पेड़ पौधों के तो हमारी बात पूरी होती ही नहीं। ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। तो पेड़ पौधों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते।

0: ये खूबसूरत गीत के साथ आप इस बात को भी याद रखें कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस पर हमें अपने पेड़ पौधों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वे हमारे भोजन के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं और पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। चलिए अब वक्त है मधुरिमा का, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन

0: अपन बुक करवाइए।
1: पेश है मधुरी माँ। तुम धड़कन हो हमारी, तुम धड़कन हो हमारी, तुम ही हमारा सुकून हो। साथ तुम्हारा हो तो हर लम्हा हसीन हो। तुम्हारी जुल्फें, तुम्हारी आँखें, तुम्हारी हथेली, तुम्हारे कदम जहाँ जहाँ लहराते हैं, हमारी आँखें वहीं ठहर जाती है।

हम क्या कहें मोहब्बत के बारे में, हम क्या कहें मोहब्बत के बारे में, तुम्हारे साथ रहकर ही सीखा है कि प्यार निभाया जाता है, जताया नहीं जाता।

मधुरमा के इन मधुर गीतों के साथ ही आपके शुभ दिन की कामना करते हुए हरिप्रिया चाहती है नमस्कार जगदलपुर से इजाजत। नमस्कार।

0: विश्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुने, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के

0: सामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
6: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
7: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास

0: और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमरीका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF, to also take oath. ADRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
5: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च हो, जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है.
4: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
5: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता. मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें.
4: Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. Four ministers, including two from BJP and one each from AGP and BPF, will also take oath along with Chief Minister. We have more from a correspondent.
6: Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, four other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The four cabinet ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of BJP-ruled states. The Veterinary College ground at Khanapara in Guwahati has been fully decorated to host the swearing-in ceremony. Elaborate arrangements have been made at the venue in view of the large gathering expected for the event. The Kamrup Metro District Administration has also issued traffic advisories in several parts of the city to avoid congestion and ensure smooth movement of vehicles. Rakesh Dole, Akashwani News, Guwahati.
4: Enforcement Directorate ED has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata, in connection with the South Damdam municipality recruitment scam. We have more from a correspondent.
7: After more than 10 hours of interrogation, he is the first former minister to be arrested since the BJP government took charge in Bengal. ED officials say the alleged irregularities took place between 2014 and 2016. According to ED sources, across 17 municipalities, about 1,000 employees were recruited unlawfully. In the recent assembly poll, Bose lost to BJP by over 37,000 votes. According to Enforcement Directorate, the arrest was made under provisions of the Prevention of Money Laundering Act. Investigators have alleged that Bose recommended appointments of several candidates in the South Damdum municipality in exchange for financial benefits. The agency has also reported suspicious financial transactions during the course of the investigation. Sandeep Andashgupta, Akashvani News, Kolkata.
8: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. The visit will further deepen India's partnership with Europe across sectors, particularly trade and investment ties, in light of the recently concluded India-EU FTA. We have more from a correspondent.
9: On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. Then the Prime Minister will reach Netherlands on Friday and call on King William Alexander and Queen Maxima. He will also hold talks with Prime Minister Rob Jetten. For the third leg of the visit, Mr. Modi will travel to Gothenburg, Sweden on Sunday and hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway on Monday for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. As part of the final leg of his visit, the Prime Minister will undertake an official visit to Italy on Tuesday. During the visit, Mr. Modi will call on the Italian President Sergio Mattarella and hold talks with Prime Minister Giorgia Meloni. With Anupam Mishra, Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
8: US President Donald Trump has said the ceasefire with Iran was at its weakest and on massive life support a day after he rejected Tehran's proposal to end the months-long war as totally unacceptable. In response to a question on the ceasefire with Iran in the wake of the rejection of the peace proposal, Trump told reporters at the Oval Office that it is at its weakest. After reading that piece of garbage they sent, it's on life support, massive life support, he added.
10: It's unbelievably weak. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, they said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
8: Trump received the Iranian proposal on Sunday amid hopes that it could lead to a breakthrough to end the war with Iran that began on February 28, blocking the key sea route for global oil supplies, leading to fuel shortages in several countries. A West Asia correspondent has filed this report.
11: Iran's demands focused heavily on wartime and economic conditions rather than immediate nuclear concessions, a framing that Washington appears unwilling to accept at this stage. The gap between the two sides' position remained wide, with mediators struggling to find common ground as battlefield pressures and economic stress continue to mount across West Asia. Meanwhile, in the United Arab Emirates, the government has moved to formalize its response to attacks on national infrastructure. Authorities have established a national committee tasked with documenting damage from more than 2,800 drones and missiles that have struck the Emirati territory. The UAE is now pursuing international legal accountability and seeking reparations for strikes in its landmark and energy facilities. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
8: In Bangladesh, a three-member inquiry committee has been constituted to probe the reason behind the national cricket team's withdrawal from the ICC Men's T20 World Cup in India. According to an official government order dated May 10th, former Additional Secretary Dr. A.K.M. Oli-Ullah will head the panel, which also includes former Bangladesh captain and current chief selector Habibul Bashar and Supreme Court lawyer Faisal Dastagir. The committee has been asked to submit its findings within 15 working days. We have more from a correspondent.
12: Bangladesh withdrew from the T20 World Cup, jointly hosted by India and Sri Lanka, from February 7 to March 8 this year after the International Cricket Council, ICC, refused a request to shift Bangladesh matches from India to Sri Lanka over security concerns. The controversy emerged after the Board of Control for Cricket in India, BCCI, reportedly dropped Bangladesh pacer Mustafizur Rahman from the IPL following threats from extremist group. The then Bangladesh Cricket Board, BCB, led by Aminul Islam, expressed concern over the safety of players, officials, officials and journalists traveling to India for the tournament. After the ICC stated that security arrangements were adequate, the interim government subsequently directed the BCB to withdraw from the tournament, a decision that drew sharp criticism from former cricketers and sports analysts. Nawal Singh Parmar, Akashwani News.

तीस कड़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। इसमें सुनिए लोक गायिका श्रीमती जयंती यादव ले भेंट वार्ता। भेंट करता है नेमीचंद साहू। आप सुनेंगे इस भेंट वार्ता का तीसरा भाग।

जम्मो श्रोता संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। मोर भुइया में क्रम हमर संस्कृति हमर कलाकार में आज हमन लोक गायिका श्रीमती जयंती यादव के संग गोठ बात के तीसरा कड़ीला सुनबो। पिछले कड़ी में हमन लगभग 80 वर्षीय जयंती यादव जी के जीवन के जो अनुभव है वोला सुनेन। अपन गीत के माध्यम ले समाज ला एक नवा रद्दा दिखावत है जयंती जी हा। सुनहा बिहान, नवा बिहान, चंदैनी गोंदा और दौना पान के समय ले जयंती जी हा गीत के माध्यम ले लोगन मन के दिल में जगह बनाए है। ये तीसरा भाग में फिल्मकार मनु नायक जी और लता मंगेशकर जी के साथ ओकर भेंट कैसे होइस तेला सुनबो। ता आवो सुनथन भेंट वार्ता के तीसरी कड़ी।

0: मनु नायक मनु नायक ला जान
1: हाँ हाँ कही देवे संदेश फिल्म बनाई
0: संदेश फिल्म बनाई
1: हाँ हाँ
0: वो समय में एक लेखक महतारी रहे हूँ
1: हाँ हाँ
0: नहीं दू जन हो गए रहे
1: हाँ हाँ
0: अब वो घर लली पत हो
1: हाँ हाँ
0: मनु नायक
1: हाँ
0: अब मलाई चक्रवर्ती खोजात
1: हाँ
0: वो दीपक गुरुजी मर गए बेचारा पोटिया के गा
1: दीपक चंद्राकर
0: चंद्राकर
1: हाँ हाँ
0: ओला धार के आई दीपक घर की सर कोई छत्तीसगढ़ में खोड डाले गांव गांव खोड रहे दुर्ग में चले गया कहाँ कहाँ रायगढ़ चले गया बोले छत्तीसगढ़ गवा मोर पिक्चर में गवा आज बार मो चाहत हो ऐसे छत्तीसगढ़ के गवैया बोला भिड़ा देते थे है ये ला हम पुलिस दीपक ला तहने फिर चाहे क्या थे एक जन है अरे वो कर अब्बर नाम सुने वो लड़का कहाँ रहते
1: हाँ, हाँ,

0: खेरागढ़ के
1: हाँ
0: जेला लता मंगेशकर ला वो सिखाए रही से गुरुजी
1: हाँ हाँ
0: ते मोला देखेला आई ये गाना कौन गा है।
1: अच्छा तो कहीं देवे संदेश में ये गीत लगाए रहे हो आप? हा?
0: हाँ
1: अच्छा
0: ईचे गा रही हूँ।
1: हाँ आकाशवाणी ले?
0: हाँ
1: अच्छा
0: ये लग गिरी से यहाँ के सब मशीन लग गिरी से
1: हाँ हाँ अच्छा
0: मुरली चंद्रा कर घर में
1: हाँ हाँ
0: पूरा मशीन धर के गिरी से
1: हाँ
0: वो नाम बता तो
1: बरसाती भैया
0: बरसाती और
1: हाँ
0: एक जनऊ
1: बिसाहू
0: बिसाहू
1: हाँ
0: और एक जनऊ रही से
1: हाँ हाँ
0: तीनों झन गेरी से ही
1: हाँ
0: मोर गाना ला
1: हाँ हाँ
0: रिकॉर्डिंग करे बर
1: अच्छा
0: दा वो मन गेरी से
1: हाँ
0: तो ये गाना मन ला सुने तो वो रेडियो में आए
1: हाँ हाँ
0: तो वो रेडियो वाला सुन के
1: हाँ हाँ
0: खेरागढ़ के पड़ोसर
1: हाँ
0: आके मोला कहते बेटी ये गाना कैसे गाए है
1: हाँ हाँ
0: ये गाना तोला कौन ऐसे
1: हाँ
0: गुरुजी तोला बताया है और सिखा है।
1: हाँ हाँ
0: मोर कोई गुरु नहीं है
1: हाँ हाँ
0: मोए अपन गाथो छत्तीसगढ़िया गाना। अच्छा मन्नू नायक है
1: हाँ
0: गाल लिपत रहे हो अब दीपक चंद्रा कर कर बैले आए
1: हाँ
0: पड़ोसर आए बड़े जान साहब आए जंती
1: हाँ
0: कब है
1: हाँ
0: अरे तोर गाना गवाए बा फिल्म में
1: हाँ हाँ
0: मोर फिल्म में गाना गाऊं ये देई कतका बहागे मोर
1: हाँ
0: अब वो मनाइन बैठा
1: हाँ
0: रहे हूँ वो मल्ला
1: हाँ
0: मन्नू नाइक ला
1: हाँ
0: भाई मानो राखी बांधे हूँ
1: हाँ
0: अब बोला
1: हाँ
0: का कहते मलाई चक्रवर्ती आई
1: हाँ
0: आ ले तो गा
1: हाँ
0: तो गायू गाना
1: हाँ
0: वो मन खुश हो गए
1: हाँ
0: तक खरोरा में होतरी से
1: हाँ
0: शूटिंग
1: हाँ
0: ओकर मन के
1: हाँ हाँ कहीं देवी संदेश फिल्म के
0: फिल्म के
1: हाँ
0: मोहम्मद रफी आ रही से
1: हाँ हाँ
0: लता मंगेशकर आ रही से
1: हाँ हाँ
0: आ वाह देखियो आ लता मंगेशकर ला देखियो
1: हाँ
0: चित्त
1: हाँ हाँ
0: मैं कहूँ माँ सरस्वती देखत हूँ
1: हाँ
0: आज मैं हाँ रेडियो में माता ला सुने
1: हाँ
0: कर आवाज ला वो में गाय वो मेरी सोनरी सोनरी सोनरी दे दूंगी जान जुदा मैं तू हो नरे मैंने तुझे पैड़ा दे रुनिया ना होया कसू रुखपा मैं तू हो नरे मैं तोर बहुत पुजारी हूँ माता
1: हाँ
0: और तोरे गाना गा के मैं बहुत आज ऊंचा हूँ फिर छत्तीसगढ़ी गाना सीखे हूँ
1: हाँ
0: ता यह सब चलत रहा है
1: हाँ
0: मोहम्मद रफील देखियो
1: हाँ
0: हाँ कल मोर रसीक तो देखो
1: हाँ
0: ऐसे ऐसे कलाकार के संगत हो इस मूर्ते
1: हाँ
0: ए
1: हाँ
0: तो वो गात रहा है ओकर यह गाना रहा है मोहम्मद जमकत नंदिया बहनी लागे पर्वत तो रुमिता नरे रे भाई पर्वत तो रुमिता हो ये सब
1: हाँ
0: अरे बाप रे ऐसे ऐसे कलाकार
1: हाँ
0: और माता ला छत्तीसगढ़ हिंदी बोले ला
1: हाँ हाँ
0: कौन ला
1: लता जिला
0: नहीं आ
1: हाँ
0: छत्तीसगढ़ी गाना नहीं आये हो
1: हाँ
0: आ गाए वो हा बोला
1: हाँ
0: गवाए बर लाए री से मनु नायक का
1: हाँ
0: पैसा में
1: हाँ तब
0: वो हा गानी से के छत्तीसगढ़ी
1: हाँ हाँ
0: अब वो हा कहा पंजाबी गवैया
1: हाँ हाँ
0: मद्रासी गवैया
1: हाँ
0: आए
1: हाँ
0: मराठी गवैया
1: हाँ
0: माता हा गा
1: हाँ हाँ
0: छत्तीसगढ़ ला वो हा बासी साग नून चटनी वो का गानी और का गोठा
1: हाँ
0: यो हा
1: हाँ
0: हमरे सॉरी
1: हाँ
0: हमन का गोठा थम तैसे
1: हाँ
0: है कहाँ जाता तो का
1: हाँ
0: साग है वो
1: हाँ
0: नूने का वो
1: हाँ
0: मिर्चाए का वो
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: गोंदली
1: हाँ
0: रामकलिया
1: हाँ
0: ओला जानी वो लता मंगेशकर
1: हाँ
0: आए
1: तब फिर कैसे हुई हाँ
0: ओला गाना दिरी माला
1: हाँ
0: बिहनी।

0: माता मोला कथे छत्तीसगढ़िया कैसे गाती है बेटी तू बता। बोलो वोला टोक दे हूँ माता ला, नहीं हमार छत्तीसगढ़ी हमें ऐसे नहीं गा माँ। तो कैसे गाती है? अब डर के मारे ऐसा ढांग हो भाई, इतना बड़े कलाकार वो कर सामने में गाना कौन ला इसे ये लगी बेटा। तब मैं माताल बोलूं, देख माँ छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ की गाना बड़ा सुरीली है, छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ ऐसे गढ़े माता जे में भारत ही में समाए है, ये सारी इंडिया पूरा ही छत्तीसगढ़ में समाए है। एक अर पीरा ला माता हम गाथन छत्तीसगढ़ महतारी मोर, हम गाथन अर पैरी के ढार महानंदी है अपार, ओकर अंग अंग ओकर उंगरी के नख नखल हमन जोड़ के कभी मन बता बना है ऐसे तेला हमारी आवाज के माध्यम से ओला हम पिरोथन महा छत्तीसगढ़ ला, हम जागृत करथन माँ छत्तीसगढ़ ला। बोले कितनी अच्छी सोच है तेरा, तर रिहर्सल हो 15 दिन ले रहे हो माता के साथ में, लता मंगेशकर के माता के साथ में, वही मोला पढ़ाई से माता बोला लेगद्री से बब्बे तेरी आवाज बहुत सुंदर है कही, ये दादा मोर नाना लेके मैं नहीं जाऊ मोर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ऐसे के। तब गए
1: कौन से गाना?
0: बिहनियाली उगवी सूरज देवता तेरी, मैं बोलो नहीं माँ छत्तीसगढ़ तेरी नहीं है हिंदी हो गए माँ, हिंदी में नहीं क्या गाऊ तो बच्चे बोल बेटी ऐसे है गाना गाना, बिहनियाली उगवी सूरज देवता तोर चर

0: माँ मुला लेंगे बम्बे।
1: अच्छा
0: धार के लेंगे। यही लेंगे तोर का कथे
1: मनु नायक जी। हा
0: मनु नायक
1: हा
0: चल ऊंचे चल कह के तोर लोग लेके उधार के चल कह के लेके हम माता तोला तनखा मिली तोर बहुत बड़े बिल्डिंग रही ते वहां चल। मैं काकरो भाड़ को निम नहीं आये बेटा। मोर छत्तीसगढ़ महतारी
1: इनचे सेवा करूं की के नहीं।
0: मोर छत्तीसगढ़ की पीरा ते का जान में बम्बई वाले मन। अपन ढंग से तुम गाओ बजाओ माता राम। अपन ढंग से मैं अपन छत्तीसगढ़ में एक दिन ते जागृत हो बे माता। छत्तीसगढ़ में मोहूला जागृत होना है। मोला पैसा नहीं चाहिए। मैं पैसा तो दुनिया कमाईस आओ गाइस मगर मैं हाँ पैसा नहीं कमाई बेटा। मैं सिर्फ तुम्हार मन के आशीर्वाद तुम्हार मन की प्यार ला छत्तीसगढ़ के मोर आचराम समेट के रखे। तब तो बुला है का तभी तो मोर याद करतो का। नहीं तो मोला कौन जाने।

0: दीदी आप मन ह बड़ सुघर जानकारी देवत हो, और हमर जो नवा पीढ़ी है, हमर छत्तीसगढ़ के जो श्रोता संगी है, हमर छत्तीसगढ़ के नोनी बाबू है, ते मनला आप आशीर्वचन के रूप में अपन का संदेश देना चाहो।
1: ओहो हो, धन्य धन्य। अरे कोनो गात रथे पहली जमाना के छत्तीसगढ़ी ला, हमार कितना बड़ा ये दिस है, हम दे हैं छत्तीसगढ़ ला, हम गा के पीओ के बासिल खा के चटनी रोटी खा के हमार छत्तीसगढ़ ला जगा हैं। आज के लड़का मन हा हमार जैसे हम तपस्या करें अपन छत्तीसगढ़ ला जगाएं, और छत्तीसगढ़ में हम फोड़ता नहीं गायन गायन ते मन

हाँ, रामायण गीता भागवत का मैयाला भगवान तक ला घलो कलाकार मन अपन बस में करथन गा के। जन जन जन जन के दुख पीर चिन्हैया ते भूई

0: झील तो क्या है?
1: हाँ।
0: वो में डूबो,
1: हाँ।
0: उसमें डूबो।
1: हाँ।
0: माता को कैसे गाया जाता है जस गाना?
1: जी
0: अभी अभी लड़का मन गाते,
1: हाँ।
0: अभी के जो गाना मन है,
1: हाँ।
0: हाय हाय हाय।
1: हाँ।
0: मैं कहा ये मन,
1: हाँ।
0: हाय रे मन,
1: हाँ।
0: हाय रे मन, तोर मन
1: हाँ।
0: कैसे लागे प्रभु तोर मन। यहाँ तो संपस है,
1: हाँ।
0: भगवान मन तो यहाँ है, कहाँ को जा सकते हैं,
1: हाँ।
0: कहाँ मंदिर में जावे,
1: हाँ।
0: वो तो स्थापना दे है तेला
1: हाँ।
0: घंटी बजा था ना,
1: हाँ।
0: तोर में तो सबे भरे है
1: हृदय में
0: हृदय में
1: हाँ।
0: भगवान मन है, तो
1: हाँ।
0: तोर मन कैसे लागे राजा महल के भीतरी में, तोर मन कैसे लागे लड़का मन ल खोजे हो। अरे मैं तो चले जाऊ मगर तू मन हो तो बढ़िया से तो गाओ। आए ऐसे ऐसे धुलंधर धुलंधर कलाकार मन चलेंगे बेटा,
1: हाँ,
0: आए छोड़ छोड़ के गाना मन ला, मगर वो गाना काबर बिगाड़ थो। खुनुर खुनुर सुर में बोली।

0: பரி பரிலா சிட்டுக்கு சரம் நல்லாகி, பரிலா சிட்டுக்கு சரம் நல்லாகி.
1: जी हाँ हाँ
0: ये दे जिंदगी के नए ठिकाना लहर गंगा ले ले तीन जुड़ी लहर गंगा ले ले तीन ना पुण्य के मेला में जाते दुख लाय करिया तीन गंगा स्नान ले ले तीन केला चढ़ा दे तीन भेला मना ले तीन भोला भगवान. काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना, मिला ठेला देखा तीन जो

0: एटीन
1: दीदी बड़ सुघर आपसन गोड़ बात हुआ थे, बड़ सुघर जानकारी मिला थे। और हमर जो नवा पीढ़ी है, नवा कलाकार है, आपसन होए बातचीत ल सुन के जरूर प्रेरणा ली। और
0: अब
1: आप
0: गात है भगवान मोर
1: हाँ
0: मोर आशीर्वाद है।
1: हाओ
0: ये अभी गात है लइका मन हा,
1: हाँ
0: जैसे भी गाए
1: हाँ
0: वो जंती यादव तो नहीं बन जाए।
1: हाओ
0: आ वो का कथे है लता मंगेशकर के गाना जे गाते थे, लता मंगेशकर तो नहीं बन जाए।
1: हाँ हाँ
0: मोहम्मद रफी के गाना गाते तर मोहम्मद रफी तो नहीं बन जाए।
1: हाँ
0: मगर नहीं, जैसे भी गाते उस बच्चे लोग,
1: हाँ
0: भगवान उसको सरस्वती मैया ने,
1: हाँ
0: छत्तीसगढ़ माता ने
1: हाँ
0: कर्मादाई
1: हाँ
0: ओला रक्षा करे,
1: जी
0: उस आगे बच्चा मल्ला बढ़ाए।
1: जी
0: काए मोर नो है वो गाना, हा बेटा किसी
1: हाँ
0: कवि की कलम है,
1: हाँ
0: उसकी आत्मा मरना नहीं चाहिए। उसकी आत्मा ला मैं नहीं गात हूँ तो दूसरा गात है, मैं कोई और दूसरा गात है, कोई और दूसरा गात है, तो वो गाना हम मरे नहीं है। वो नहीं मरे है
1: हाँ
0: जे लिखे है कलम से,
1: हाँ
0: वो मरे नहीं है,
1: हाँ
0: उसकी आत्मा जिया रहे,
1: हाँ
0: उसकी आत्मा
1: अक्षर अमर है,
0: अमर
1: गीत
0: है,
1: अमर है।
0: गीत अमर है।
1: हाँ
0: हाँ गाना अमर करत है लइका मन भगवान।

0: धन धन है मोर भाग, तुमन जीवित रखे हो मोला। सुरिता समागे सुरिता समागे जुआनी खयाले रगा, सुरिता सु समा हमना।
1: हाँ,
0: ओ गाना ला।
1: हाँ,

0: कहते हूँ यहाँ सब गाना है।
1: जयंती यादव जी, आप मन हमार श्रोता मन ला अपन जीवन के अनुभव ला गीत के माध्यम ले कैसे आप मन समाज ला नवा रद्दा दिखाए हो और नवा पीढ़ी ला गीत संगीत लोक गायकी के शिक्षा दे के वो मन ला घलो ये लोक गायन की परंपरा ला आगे बढ़ाए के प्रेरणा दे हो, हमन ला समय दे हो, स्टूडियो में आए हो, एक हर बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: छत्तीस।
1: आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी साहित्य पत्रिका मोर भुइयां, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8:59 हुए हैं।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, फोन इन किसानवाड़ी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 3:30 से 4 तक की जाती है। इसमें विषय विशेषज्ञ आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो आज इसकी रिकॉर्डिंग होगी दोपहर 3:30 से दोपहर 4 तक। तो आप अपनी समस्याओं के साथ फोन करना ना भूलें। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
0: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
0: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
0: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
0: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
0: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी
0: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
0: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता है
0: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
0: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
0: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
0: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
0: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
0: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
0: जी,
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भवका कह सकते हैं?
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है। ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
0: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी।
0: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
0: जी।
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
0: जी।
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है
1: जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी

0: जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
3: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
2: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
1: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक में खेले भरपूर।
3: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
5: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
7: साथियों नमस्कार।
5: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
7: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
5: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
7: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
5: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
7: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
5: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
7: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
5: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
7: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया।

0: बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब एल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक एल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसने उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर कूद पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का, ये जगदलपुर केंद्र है।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
5: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1957 में बनी फिल्म प्यासा के गाने। प्यासा एक अमर क्लासिकल फिल्म है जो भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं महान फिल्मकार गुरुदत्त। आइए सुनते हैं फिल्म का पहला सबसे सुरीला गाना।

1957 में बनी इस फिल्म प्यासा में गुरुदत्त ने फिल्म का निर्माण, निर्देशन और इसमें अभिनय भी किया है। उनके साथ सह कलाकार हैं माला सिन्हा, वहीदा रहमान और जानी वॉकर। फिल्म की कहानी एक संघर्षशील कवि की कहानी है। यह फिल्म स्वार्थी दुनिया में सच्चे प्यार और कला की कद्र न होने की कहानी को खूबसूरत रूप से दर्शाती है। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गाना गीता दत्त की आवाज में।

0: फिल्मों का निर्माण सच में कोई जीवन गढ़ने जैसा कोई जादू ही होगा, जिसमें निर्माता, निर्देशक और कलाकार अपनी सारी ऊर्जा झोंक देते हैं, तब बनती है एक यादगार और शानदार फिल्में। प्यासा भी एक ऐसी ही फिल्म है जो अपनी कहानी से दर्शकों को बांधे रखती है। और गीत संगीत की बात क्या करें, प्यासा का हर गीत कमाल है, संगीत लाजवाब है। और जिन गीतों को गायक कलाकारों ने अपनी आवाजें दी हैं, उनकी तारीफ के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं हैं। अब और क्या कहें, आप सभी श्रोता गीत सुने और गीतों की मधुरता और गहराई को हृदय से महसूस करें। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और क्लासिक गाना।
1: जाने वो कैसे लोग थे जिनके

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं प्यासा फिल्म के गाने। फिल्म के गीतों की रचना की है साहिर लुधियानवी ने और गीतों को संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने। आइए सुनते हैं जॉनी वॉकर पर फिल्माया ये गाना जो बहुत ही अर्थपूर्ण है।

उलझनों से पार पाने के लिए और सिर के दर्द को मिटाने के लिए मालिश की ज़रूरत हम सभी को पड़ती है, और ये गाना सुनते हुए यदि चम्पी किया जाए तो सचमुच राहत मिल सकती है। जी हाँ, ये प्यासा फिल्म मुख्य रूप से पूंजीवाद के खिलाफ कवि की हताशा, प्यार में धोखा और मानवीय संवेदनाओं की कहानी है, जो दुनिया की सच्चाई जानकर कवि खिन्न है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

तो ये थी आज की फिल्म 1957 में बनी फिल्म प्यासा। वैसे तो इसे कोई विशेष पुरस्कार नहीं मिला था, लेकिन 2005 में टाइम्स पत्रिका ने प्यासा को सर्वकालिक 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया था। 2017 में टेस्ट ऑफ सिनेमा ने इसे अब तक की 25 सबसे प्रभावशाली एशियाई फिल्मों में स्थान दिया था और अंतर्राष्ट्रीय सराहना भी इस फिल्म को मिल चुकी है, जो 1980 के दशक में जब यह फिल्म यूरोप में रिलीज हुई तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहा गया। फिल्म प्यासा को शुरू में आलोचकों से कम प्रशंसा मिली, लेकिन बाद में यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कल्ट फिल्म मानी गई। एक ही फिल्म से कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून महीने तक आवंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय सीमा बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। और जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और तीन अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री ने स्कूलों से भी आग्रह किया कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथ ही उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि जब तक हालात सामान्य न हो सोने की खरीदी न करें। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है और देश के पास 60 दिन के कच्चे तेल, 60 दिन के प्राकृतिक गैस और 45 दिन के एलपीजी का भंडार है। यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पश्चिम एशिया पर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की पांचवी बैठक के दौरान दी गई। बैठक में संघर्ष में नवीनतम घटनाक्रमों का जायजा लिया गया और जनता पर इसके न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए देश की तैयारियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्यप्रदेश के सीहोर में आयोजित योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सम्मानित किया। राज्य की ओर से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और प्रमुख अभियंता के कटारे ने पुरस्कार ग्रहण किया। प्रदेश में अब तक 32,000 किलोमीटर लंबी 8,000 से अधिक सड़कों का नवीनीकरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण और तीसरे चरण के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून महीने तक आवंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब हितग्राही को 15 मई तक एकमुश्त राशन का वितरण किया जाएगा। खाद्य विभाग ने सभी उचित मूल्य के दुकानदारों और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य विभाग ने राशन कार्डधारी परिवारों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर लें। नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं वहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चुनाव प्रचार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। चुनावी सभाओं और प्रचार वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और तीन अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। बीमार बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। प्रशासन ने तरबूज के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 10वीं और 12वीं की प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनकी सफलता के अनुभव और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून महीने तक आवंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय सीमा बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। और जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और तीन अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: शिक्षा ज्ञान के लिए होनी चाहिए। इस उक्ति के प्रकाश में लोक कल्याणकारी सरकारें नित नई योजनाओं को लागू करती हैं। इसी के तहत नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि एक पुराने ढर्रे पर चलने वाली शिक्षा नीति केवल कुछ क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर प्रदान कर पाती है, जबकि परिवर्तित नीति बहुत सारे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को विकसित करती है। भारत एक प्रगतिशील देश है, यहाँ की एक बड़ी आबादी आज भी रोजी रोटी के संघर्ष से जूझ रही है। ऐसे में जमीनी स्तर पर शिक्षा के प्रचार प्रसार की अत्यंत आवश्यकता है। बात यदि हम अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति एक समान नहीं है और न ही समान संसाधन है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया है कि हर वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा पाना चाहता है उसे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना का लाभ दिया जाएगा। आज ये योजना प्रदेश भर में लागू है। इस संबंध में और अधिक जानकारी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के सहायक महाप्रबंधक व्यवसाय एवं सांख्य श्री अमरजीत सिंह खनुजा।
1: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छत्तीसगढ़ शासन की उच्च शिक्षा हेतु ब्याज का अनुदान देने की योजना है। यह योजना तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु लागू होती है। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है। इस योजना में अधिकतम 4 लाख तक के ही शिक्षा ऋण पात्र होते हैं। हितग्राही की पात्रता के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं हो सकती है। योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान मॉरेटोरियम अवधि के पश्चात जो ब्याज लगता है उस पर देय होता है। ब्याज अनुदान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100% अर्थात 100% छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वहन किया जाता है। अन्य जिलों में 1% जो है वो विद्यार्थियों को देना पड़ता है और 99% राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऋण किस्तों का नियमित भुगतान करना अत्यंत आवश्यक है। यह योजना ड्रॉप आउट निष्कासित विद्यार्थियों को योजना का के लिए नहीं है, उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। जितने भी उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम है उसके लिए लागू है और जितने भी संस्थान है लाइक IITs, IIMs, NITs और एम्स, MCI, DCI, INC इत्यादि में ये स्कीम लागू होती है। अप्लाई तो एक्चुअली बैंक के थ्रू जाता है। जब बैंक में आप शिक्षा ऋण लेते हैं तो बैंक इसका क्लेम करता है गवर्नमेंट को पात्रता अनुसार जो खाते होते हैं। जब आदमी अप्लाई करता है लोन की तब बताना पड़ता है कि हाँ मेरी जो लाइफ जो मेरी जो परिवार की वार्षिक आय है वो 2 लाख से कम है और टोटल जो मुझे 4 लाख के लोन चाहिए, कौन सी जगह मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्या पढ़ने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ये इस योजना का पात्र है कि नहीं। पात्र खातों का जो अनुदान क्लेम है वो बैंक के द्वारा सब्सिडी क्लेम इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम की जाती है। दस्तावेज में आप जहाँ पर हायर एजुकेशन लेने जा रहे हैं उसके सारे दस्तावेज जिसमें आपको फीस वगैरह सब रहेगा, एजुकेशन फीस, हॉस्टल फीस वगैरह सारा कुछ, और इसके अलावा आपका KYC लगेगा, जो भी एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंट है सब एज इट इज लगेंगे।
2: और इसको लौटाने की अवधि क्या होती है सर?
1: जो एजुकेशन लोन की नॉर्मल पॉलिसीज बैंक की होती है उसके अनुसार, मतलब जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन

लोन में ही अपनी ओर से एड ऑन दे रहा है छत्तीसगढ़ शासन, ताकि इसको प्रमोट कर सके एजुकेशन लोन को भी, और उनके लिए एजुकेशन के साधन भी हो सके जिनके पास आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी हैं। देखिए शिक्षा ऋण तो एक्चुअली एक बार मिलता है, क्योंकि आप पूरे कोर्स का पैसा ले लिए रहते हैं ना, तो दोबारा मतलब इसमें कोई डोज सिस्टम तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए मेडिकल करना है तो मेडिकल आपका 5 साल का अगर कोर्स है तो 5 साल में जो फीस लगनी है जो भी लगना हो तो पहले प्रोजेक्ट होकर आपको लोन मिल जाता है, तो दोबारा लोन जैसा कोई इसमें होता नहीं है सिस्टम।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के पात्र वे सभी विद्यार्थी हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो। इस योजना के तहत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ एक लंबे समय से नक्सलवाद से पीड़ित रहा है। बस्तर और सरगुजा संभाग के वे सभी जिले जहां कभी हिंसा का आतंक था, वहां मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना ने शिक्षा का परचम फहरा दिया है। अब यहाँ उच्च शिक्षा से वंचित छात्रों को समुचित संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के बंद द्वार सरकार ने सभी के लिए खोल दिए हैं।

0: छत्तीसगढ़ के मेधावी छात्र छात्राओं को अपने उच्च शिक्षा पाने के सपनों को पूरा करने का आधार प्रदेश सरकार ने दिया है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा महंगी होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे अक्सर उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ये योजना ऐसे छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके करियर को सुदृढ़ सोपान प्रदान करने में भरपूर सहयोग देती है।
1: ब्याज नहीं लग रहा है लोन लेने में, तो अच्छी बात है। और पेरेंट्स भी ज्यादा प्रेशराइज्ड नहीं रहेंगे, बच्चे भी ज्यादा प्रेशराइज्ड नहीं रहेंगे और वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उनके में कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि हमको ब्याज देना है तो हमको उस चीज के लिए भी पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, सेव करने पड़ेंगे, तो ये चीज अच्छा है, वो बिना टेंशन के पढ़ सकते हैं।
2: मैं मोदी और विष्णुदेव साय को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा योजना कल निकाला। जो सभी छात्राएं हैं उनको बहुत तकलीफ होती थी ब्याज देने में, और वो सभी उन सभी के लिए माफ हो गए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: छत्तीसगढ़ में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए आज कई शाखाएं हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी शाखाएं भी हैं जिनमें पढ़ाई के लिए अन्यत्र जाने की जरूरत होती है। AICTI, UGC, MCI, DCI और INC जैसे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए है। ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है। ये मॉरिटोरियम अवधि के उपरांत नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण राशि के ब्याज भार में छूट प्रदान करता है।
1: आप हैं भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक श्री राकेश सिन्हा।
2: यह जो राज्य सरकार की उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना है, यह तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित छात्रों के लिए योजना सत्र 2012-13 से लागू है। इस योजना में ऋण किस्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण पर ब्याज अनुदान राज्य के चरम वामपंथी प्रभावित जिलों पर जो वहां के जो विद्यार्थी हैं उनके ब्याज का संपूर्ण भार राज्य प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है और राज्य के शेष जिलों में जो निवासी शिक्षार्थी हैं उन्हें केवल 1% की दर से ब्याज का भार वहन करना पड़ता है और शेष राशि की ब्याज जो है वह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह योजना जो है केवल छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए लागू है। इसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम जो है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। स्कीम जो है जो विद्यार्थी फेल हुए हैं या ड्रॉप आउट हुए हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है और जैसा कि मैंने पहले बताया जो नक्सलाइट बेल्ट है वहां पे मोरेटोरियम पीरियड का पूरा ब्याज राज्य सरकार वहन करती है और बाकी जो जिले हैं उसमें विद्यार्थियों को केवल 1% ब्याज दर से ब्याज देना पड़ता है। केनरा बैंक इसका नोडल बैंक है लेकिन राज्य के विद्यार्थी जो है वो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक या 21 प्राइवेट बैंक से लोन ले सकते हैं और इस स्कीम में मैक्सिमम लोन जो है वह 4 लाख है। तो सरकार की ओर से यह एक पहल है जिसमें जो शिक्षार्थी हैं उनको एकदम कम किस्त में कम ऋण में ऋण की सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे उच्च शिक्षा का लाभ उठा सके और अपने को खुद को सक्षम बना सके। डॉक्यूमेंट जो स्कूल के उनके जो राज्य के निवासी हैं उसका प्रमाण और स्कूल और कॉलेज के जो सर्टिफिकेट्स हैं और जहां उनको एडमिशन मिला है उस एडमिशन का जो कॉपी है वो केवल चाहिए और कुछ नहीं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिल सकता है जिनकी पारिवारिक इनकम जो है 2 लाख से कम है तो वो एक इनकम प्रमाण पत्र जो होता है वो चाहिए होता है, आय प्रमाण पत्र। तो पंचायत से या राज्य सरकार के किसी ऑथोरिटी से जो आय प्रमाण पत्र होता है वो लगता है।

छत्तीसगढ़ राज्य विकास के पंख फैलाए, हर क्षेत्र में तरक्की की परवाज भर रहा है। सरकार ने न सिर्फ पूरे प्रदेश को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है, बल्कि उसकी मंशा ये भी है कि किसी भी मेधावी छात्र को उच्च शिक्षा के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। वंचित वर्ग पर सरकार के लगातार ध्यान देने के कारण ही आज जनजातीय बाहुल्य इलाकों से उच्च शिक्षा प्राप्त युवक युवतियां बड़ी संख्या में दीक्षित होकर आ रहे हैं। ये तस्वीर बयां करती है छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास की बहती अविरल धारा को, जहां हर कोई कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, ये आकाशवाणी का।
2: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए अब एक सूचना सुनिए। फोन इन किसानवाणी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 से 4 बजे तक की जाती है। इसमें आप हमारे किसान साथी अपने सवाल पूछ सकते हैं विषय विशेषज्ञ से, तो फोन करना ना भूलें। आज दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 बजे तक, तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 बजे हैं।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लीजिए अब सुनिए लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में जैनू सलाम और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दुम में अभी आप सुन रहे थे गोंडी लोकगीत। गायक कलाकार थे जैनू सलाम और साथी।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस वक्त दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा में एक वैकल्पिक फिल्म आंदोलन जो मुख्यधारा की व्यावसायिक बॉलीवुड फिल्मों जैसे नाच गाना एक्शन से बिल्कुल अलग है, इसे हम समानांतर सिनेमा या पैरेलल सिनेमा के नाम से भी जानते हैं। श्रोताओं, इस प्रकार की फिल्में कलात्मक सिनेमा या यथार्थवादी फिल्में होती हैं जो मनोरंजन से ज्यादा समाज का आईना, उसकी हकीकतें दिखाने के लिए जानी जाती हैं। और इस शैली में बनने वाली फिल्मों में अपना एक अलग ही और शानदार मुकाम हासिल कर चुके हैं वो अभिनेता जिनके जीवन व्यक्तित्व के बारे में आज हम आपसे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले उन पर फिल्माया ये गीत आपको सुनवाते हैं।

बेहतरीन व्यक्तित्व और अदाकारी, जबरदस्त अंदाज और अभिनय की पाठशाला और भी न जाने कितने ही तारीफों के अल्फाज जो आपकी शान में कहे जाएं तो भी कम पड़ जाएं। जी हाँ, आप हैं दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। आपने जिन भी फिल्मों में काम किया, आपकी अदाकारी ने उन फिल्मों को जीवंत रूप दे दिया और दर्शकों का उन फिल्मों से एक अलग ही रिश्ता बन गया।

श्रोताओ, नसीरुद्दीन शाह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक नवाब परिवार में 20 जुलाई सन 1950 को हुआ था। आप बेहद ही प्रतिभाशील और सम्मानित अभिनेताओं में से एक हैं। इनकी तालीम की अगर बात की जाए तो आपने सेंट एंसलम स्कूल अजमेर, सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल से पढ़ाई की और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कला संकाय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD दिल्ली से अभिनय की शिक्षा भी प्राप्त की। श्रोताओ, नसीर साहब की फिल्मी करियर, थिएटर और अवार्ड्स के बारे में आपसे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हीं की फिल्म का ये गीत सुनिए। फिल्म का नाम है सर।

श्रोताओं, रंगमंच यानी कि थिएटर के कलाकार वे पेशेवर कलाकार होते हैं जो अपने अभिनय, हाव भाव और भावनाओं के माध्यम से मंच पर पात्रों को जीवित करते हैं। नसीरुद्दीन शाह भारतीय रंगमंच के एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली कलाकार माने जाते हैं। आपने न केवल फिल्मों में बल्कि थिएटर में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इनके फिल्मी करियर की अगर बात की जाए तो शाह साहब ने वर्ष 1970 के दशक में फिल्मों में कदम रखा। इनकी शुरुआती फिल्मों में निशांत और मंथन शामिल हैं, जिन्हें कला यानी कि आर्ट फिल्मों की बेहतरीन फिल्में माना जाता है। इनके अलावा 1980 के दशक में वे समानांतर सिनेमा के दिग्गज अभिनेता बन गए, जिसमें शामिल थी स्पर्श, आक्रोश, मासूम और मिर्च मसाला जैसी फिल्में। इसके अलावा आपने मुख्य धारा की फिल्मों में भी अपना हुनर दिखाया, जिसमें कर्मा, मोहरा और सरफरोश जैसी फिल्में शामिल हैं। और आधुनिक दौर की फिल्मों में भी उन्होंने दमदार भूमिकाएं निभाई, जैसे कि फिल्म वेडनेसडे, इश्किया और द डर्टी पिक्चर। श्रोताओं, इनकी ही एक जबरदस्त और हिट फिल्म सरफरोश, इसी फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, नसीरुद्दीन शाह को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नवाजा जा चुका है। नसीर साहब हर किरदार को बहुत ही सच्चाई और गहराई से निभाते हैं। आप उन गिने चुने अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने आर्ट और कमर्शियल दोनों ही विधाओं की फिल्मों में बराबर सफलता हासिल की है। नसीरुद्दीन शाह केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि अभिनय की एक जीवंत पाठशाला है। उनका योगदान भारतीय सिनेमा और रंगमंच के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर। मीडियम वेव पर आप आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित कार्यक्रम सुन रहे हैं। इस वक्त दिन के 11:30 हुए हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए लोकवाद धुनों पर आधारित कार्यक्रम पाड़। इसमें सुनिए बारात पाड़। वादक कलाकार है भारत और साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकवाद्धनों पर आधारित कार्यक्रम पाड़। इसमें आप सुन रहे थे बारात पाड़। वादक कलाकार थे भारत और साथी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। समय दिन के 11:55 होने को है। प्रादेशिक समाचार एकांश हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। कपड़े बेचने की आड़ में गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 12 तस्कर गिरफ्तार। करीब 2 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया गया। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रदेश भर में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। कल वडोदरा में सरदारधाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पूलिंग को बढ़ावा दें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री ने स्कूलों से भी आग्रह किया कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथ ही उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि जब तक हालात सामान्य न हो सोने की खरीद को टालें। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सम्मानित किया। राज्य की ओर से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और प्रमुख अभियंता के कटारे ने पुरस्कार ग्रहण किया। रायपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिलों में संयुक्त नाकेबंदी के दौरान कपड़ा फेरी वालों की आड़ में की जा रही अंतर्राज्यीय तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 378 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1,98,00,000 रूपये बताई गई है। कार्रवाई में 11 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 12 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कपड़ों के ढेर के बीच छिपाकर गांजा ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये दिन विश्वभर में नर्सिंग पेशेवरों के लिए बेहतर सहायता, सुरक्षा और संसाधनों की आवश्यकता को बताता है। ये दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और 3 अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। बीमार बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। प्रशासन ने तरबूज के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। इस बीच बच्चे का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि मृतक बच्चे के अंगों में बदलाव मिला है। उसका बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश में बारिश में कमी आने के बाद लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर बना हुआ है, जिससे कल कुछ इलाकों में विशेषकर दक्षिण छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव और बीजापुर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। कपड़े बेचने की आड़ में गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 12 तस्कर गिरफ्तार, करीब 2 करोड़ रूपये का गांजा बरामद। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रदेश भर में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकेगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। समय दिन के 12 बजे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी, यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान, बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक, तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने कागज।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2000

0: मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित हरियल वनांचल बस्तर अपने वन वनस्पति वन संपदा और पर्वतों के सीने में छिपे खनिज कोष के कारण देश के भूगोल में अपनी अलग पहचान रखता है। पुराण प्रसिद्ध दंडकारण्य का एक अरण्य बस्तर को भी माना जाता है। इसी बस्तर का एक अरण्य क्षेत्र है माचकोट।
1: माचकोट के जंगल में एक जगह ऐसी है जहां लगभग 250 वर्ष आयु के चार वृक्ष हैं सागौन के। सागौन, जिसे हरा सोना या हरित स्वर्ण की संज्ञा दी जाती है। वनवासियों और बस्तर के वन विभाग ने सागौन के पितामह सदृश इन वृक्षों को नाम दिया है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न।
2: माचकोट रेंज के कांगेर आर्यप के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 52 में सागौन के चार वृक्ष हैं, जिनमें उनकी गुलाई लगभग 4 मीटर से लेकर 5.80 मीटर है। उनकी ऊंचाई लगभग 90 से 110 फीट होगी। इनकी उम्र मेरे अनुमान से 200 से 250 वर्ष होगी। मेरे द्वारा अभी तक इस मोटाई या ऊंचाई के सागौन के वृक्ष एक जगह पर चार वृक्ष कहीं नहीं देखे गए हैं। ये काफ़ी कीमती वृक्ष है। इनमें से लगभग 17-18 घन मीटर माल निकल सकता है। आज की स्थिति में करीब 1.5 लाख कीमत का ये वृक्ष है। ये बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि एक जगह पर इस टाइप के वृक्ष कहीं नहीं देखे गए हैं, इसलिए इनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी रखा गया है।
0: माचकोट के सहायक परिक्षेत्र अधिकारी श्री राजेश्वर सिंह ही नहीं, वन वनस्पति और वन्य प्राणियों में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति मानता है कि सागौन के ये चार भाई बहुत अनूठे हैं। बस्तर में सागौन परिवार के ये पूर्वज अपने आप में पूरी तरह समर्थ हैं।
1: प्रकृति और प्राकृतिक नियमों से संचालित ऋतुओं के साथ ये चार वृक्ष ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे सागौन के अन्य वृक्ष। लगभग 250 वर्ष बताई जाती अपनी उम्र ये छिपाते भी नहीं और बूढ़े भी नहीं कहलाते।
0: यूं भी सागौन और उसकी लकड़ी पर उम्र का असर बहुत कम पड़ता है। वर्षों बीत जाए पर ना तो सागौन की लकड़ी अपनी चमक खोती है, न शरीर पर दरारें पड़ने देती है और ना ही ऐंट कर अपनी कमर झुकाती है। शायद इसीलिए ये बहुमूल्य और बेशकीमती है।

0: वर्बिनेसी कुल के प्रजाति के सागौन का वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। रूप गुण में सबसे उत्तम है मध्य भारत का सागौन, जो मूलतः भारत में ही पाई जाने वाली प्रजाति का सागौन है। भारत के बाहर ये जावा, मलाया, बर्मा के उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है, किंतु इसका घनत्व सबसे अधिक भारत के जंगलों में ही देखा गया है।
1: सागौन के जंगल पश्चिमी भारत में अरावली राजस्थान तक, मध्य भारत में इसकी सीमा झांसी जिले तक और दक्षिण पूर्व में महानदी तक आती है। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में भी सागौन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है।
0: सागौन का सबसे पुराना रोपण तमिलनाडु के नीलांबुर में है, जो सन 1842 में रोपित माना जाता है, जिसका श्रेय छत्तू मेनन को दिया जाता है। तमिलनाडु के वन रक्षक छत्तू मेनन ने अपनी लगन और कोशिशों से वन रोपण तकनीक का विकास कर तत्कालीन ब्रिटिश शासकों के बीच अपनी महत्ता बनाई और सहायक

0: वन संरक्षक पद के साथ साथ अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए।
1: सागौन की खासियत है कि इसे अगर खूब नमी और तेज गर्मी दी जाए तो ज्यादा पनपता है। आदर्श वर्षा यूं तो 200 सेंटीमीटर है, पर 100 सेंटीमीटर से 500 सेंटीमीटर वर्षा भी उपयुक्त होती है। और रहा गर्मी का सवाल, तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा आदर्श मानी जाती है। उष्णता अगर कम होकर 10 हो और बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब भी कोई बात नहीं।
0: सागौन के जंगल जमीन का चुनाव करते समय ज्यादा चिंतित नहीं होते। जमीन उबड़ खाबड़ है तो ठीक, और अगर मैदानी है तो भी फर्क नहीं पड़ता। सैंडस्टोन, स्लेट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी चट्टानी संरचना वाली भूमि हो या अन्य मृदाएं, सागौन के लिए सभी उपयुक्त हैं।
1: मृदा अच्छी हो और जल निकासी कम तो सागौन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पहली शर्त है अच्छी जल निकासी, फिर मृदा साधारण या अधिक हो तो अंतर नहीं। हाँ, अगर मृदा और जल निकासी दोनों उत्तम हो तो सागौन की बाड़ देखते बनती है।
0: अपने पूर्ण यौवन पर आया सागौन का वृक्ष आसमान से होड़ लगाता बड़ा ही सुंदर लगता है। ऊंचा, चौड़ा, मजबूत सागौन मौसम के साथ अपने परिधान बदलता है। हरे भरे वृक्ष माह अक्टूबर से जनवरी के बीच अपने पत्ते जमीन पर गिराते हैं। जहां अधिक नमी है वहां मार्च में पर्णपातन होता है, और गर्मियों में तो शाखें सूनी सूनी होती हैं।
1: बारिश की बौछार इन पर हरियाली उगाने लगती है और माह जून से लेकर सितंबर तक इनकी डालियों पर फूल निकल आते हैं और निखर आता है सागौन का सौंदर्य। सर्दियों के झोंके आए कि फल लगने शुरू, और वसंत के आगमन तक फल परिपक्व।
0: फूलने और फलने के साथ साथ सागौन का उपयोग वन रोपणी के लिए अधिक महत्व का हो जाता है। फलों से बीज प्राप्त किए जाते हैं जो वृक्षारोपण के पौधे तैयार करने के लिए जरूरी होते हैं। सागौन का बीज अपने ऊपर कठोर आवरण ताने होता है। प्राकृतिक रूप से पुनरुत्पादन के लिए बीज के कठोर आवरण का क्षरण 1 से 2 वर्ष का समय लेता है। क्षरण और अंकुरण की अवधि लगभग 6 माह की होती है।
1: प्रथम वर्ष में नए अंकुरित पौधों पर खुश्की का असर जल्दी पड़ता है। पत्तियां सूखती हैं लेकिन जड़ें नहीं। प्राकृतिक पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में पेड़ गर्मी से पराजित नहीं होता और तना स्थापित हो जाता है।

0: अन्य वृक्षों की तरह दावाग्नि इसे ऊपरी तौर पर नष्ट भले ही कर दे, पर शक्तिशाली अग्नि प्रतिरोधक सागौन की जड़ें क्षतिग्रस्त नहीं होतीं और ये पुनः उत्पादित हो जाता है। यही महत्वपूर्ण कारण है कि सागौन के जंगल स्वतः निर्मित होकर तब तक बचे रहते हैं जब तक कोई इनसे दुश्मनी न करे, अपने स्वार्थ के लिए इनका विनाश न करे।
1: सागौन के जंगलों की सुरक्षा के साथ साथ इसके कृत्रिम उत्पादन की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसका वृक्षारोपण किया गया। वन रोपणियों में बीज एकत्रीकरण, उपचार, अंकुरण और रोपण की नई और समृद्ध तकनीक काम में लाई गई। वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री वी के लाल बताते हैं,
2: सागौन बीज के सिलेक्शन के लिए हम लोग जनरली स्वस्थ झाड़ और ऊंचे झाड़ के बीज एकत्रित करते हैं।
0: अच्छा,
2: ये अप्रैल माह में करीब करीब मजदूरों के द्वारा ऐसे वृक्षों के नीचे जाके गिरे हुए बीजों को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके उसको हम लोग अपने नर्सरी में बुलवाते हैं।
0: अच्छा,
2: क्योंकि नर्सरी में ही उसके ट्रीटमेंट होते हैं और नर्सरी में ही उसके पौधे तैयार किए जाते हैं।
0: ये ट्रीटमेंट
2: बीजों के?
0: अच्छा
2: हाँ, तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सर्वप्रथम कोई सीमेंटेड टैंक बनवा लेते हैं, या वो नहीं जम पाया तो गड्ढे खोद देते हैं जमीन में। वो गड्ढों की साइज करीब करीब 15 फीट, 5 फीट चौड़ा, कोई 5-7 फीट गहरा, उसमें अपन लोग 8-10 क्विंटल प्रति गड्ढे के भाव हिसाब से बीज डाल देते हैं।
0: अच्छा,
2: और बीज डालने के बाद उसमें गोबर करीब करीब 30-40 टोकनी और उसी तरह वही 40-30 टोकनी रेत डाल देते हैं और पानी से उसको लबालब करके करीब करीब 7-8 दिन तक के उसको वैसे रहने देते हैं। बीच बीच में उसका फावड़ा से मतलब उसको वो करते चालते हैं ताकि ऊंचा ऊपर नीचे वो बीज होता रहे। इसके बाद 7-8 रोज के बाद अपन फिर जाके बीज को दबा के देख लेते हैं कि ये नरम हुआ, उसके बार्क की नहीं हुआ, नहीं हुआ तो 1-2 दिन और रख देते हैं। यदि हो गया है तो उसको गड्ढे से बाहर निकलवा के इसमें प्लेटफार्म में, या प्लेटफार्म नहीं है तो ऐसी मिट्टी में जहाँ धूप पर्याप्त दिन भर पड़ता हो ऐसे जगह में लाकर उसको सुखा देते हैं। जब ये सूख जाता है 3-4 रोज तो अपन उसको लकड़ी की ढेंकी बनती है जिसमें धान भी कूटते हैं उसी टाइप के उसको बनाए रहते हैं और उसमें उसकी कुटाई करते हैं। इतनी कुटाई करते हैं कि उसके जो छिलके का जो बार्क है वो निकल जाए, सिर्फ उसमें गुठली बचे। ये जब हो जाता है तो उसके बाद उसको फिर से 3-4 रोज सुखाना पड़ता है। फिर देखिए यदि थोड़ी बहुत बच ही गया तो फिर एक बार कुटाई कर देते हैं। तो इससे क्या है, पूरे पूरे उसके बार्क जो है, कार के जैसे जो बार्क होता है वो सब बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम लोग उसको मैदान में सुखाए दिए रहते हैं 10-15 दिन देते हैं कि जब वो गुठलियों में या बीज में क्रैक आना चाहिए, क्रैक आते तक कि हम लोग उसको सुखाते हैं। जब वो क्रैक आने लगता है उसके बाद हम उसको एकत्रित कर लेते हैं और फिर अपने बोरे में भर के स्टॉक कर देते हैं। ये तो हुआ बीज के ट्रीटमेंट के बारे में। बीज को स्वयं करके प्लांट्स मतलब तैयार करने के लिए अपन के पास नर्सरी होते हैं। उस नर्सरियों में 10 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा क्यारी बनाए जाते हैं। क्यारी वैसे दो प्रकार के होते हैं जिसको अपन लोग एक रेज बेड कहते हैं, जो जमीन से 6 इंच से 3 इंच के ऊपर उसकी मिट्टी रहते हैं, और एक संकन बेड होता है जो जमीन से 6 इंच 3 इंच के आसपास गहरा होता है जमीन लेवल से। तो अपन लोग जनरली क्या है कि संकन बेड का ही उपयोग करते हैं। तो ये 10 मीटर बाय 1 मीटर के जो बेड खोदे जाते हैं वो दिसंबर के माह में उसकी खुदाई का कार्य कंप्लीट किए जाते हैं। जब वो मिट्टी उसके खोदने के बाद 15-20 दिन तक मिट्टी सूखने देते हैं और उसके बाद उस मिट्टियों को कुटाई कर देते हैं वहीं पे। कुटाई करने के बाद उसमें गोबर खाद्य मिलाया जाता है। एक बेड में करीब करीब 10-12 टोकनी गोबर के खाद्य मिला करके उसमें मिक्स किया जाता है। मिट्टी और गोबर बिल्कुल वो चूरा हो जाना चाहिए, किसी तरह से उसमें बड़े मिट्टी नहीं रहना चाहिए, और इसमें पत्थर पत्थर कुछ भी हो तो उसके भी उखाड़ी कचरा जो भी हो बाहर निकाल देते हैं। और ये तो हुआ बेड की तैयारी, और फरवरी मार्च में उसकी बीज की बुआई कर देते हैं। तो एक बेड में अपन छः किलो से लेकर के 8 किलो के आसपास बीज डालते हैं, और बीज अपन लोग छीट देते हैं बराबर बराबर दूरी में करीब करीब पड़े, ऐसा उसका ध्यान रखना पड़ता है। पूरे बेड भर बीज डाल देते हैं और इस उसी बीज को लकड़ी के पट्टी से पीट देते हैं ताकि वो बीज के आधा भाग जो है जमीन में और गड़ जाए। उसके बाद कुछ हम लोग और बचा के रखे रहते हैं, कुछ मिट्टी तैयार शुदा गोबर और गोबर युक्त मिश्रित वाला उसके ऊपर डाल देते हैं, तो वो बीज टोटली दब जाता है। और दब जाने के बाद क्या है कि अपन झाड़ी से उसमें पानी डालना शुरू कर देते हैं उसी दिन से जिस दिन बीज डाले, और इस तरह ये सिंचाई का जो कार्य है करीब करीब 15-20 दिन तक के डालते रहते कंटिन्यू, तब उसमें बीज अंकुरण आना शुरू हो जाता है। जैसे बीज अंकुरण होने के 4-6 पत्ती होना शुरू हो जाता है उसका, करीब करीब 6 पत्ती आ जाना चाहिए बेड में पौधों का। और उसके बाद हमारे पास प्लोथिन बैग होते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं प्लोथिन बैग में। तो प्लोथिन बैग में भी पहले से ही हम प्लोथिन बैग को तैयार करना पड़ता है, उसमें मिट्टी गोबर खाद्य और अगर मिट्टी ज़्यादा चिकनी है तो कुछ रेत बारीक वाला ये सब मिला के मिट्टी तैयार करते हैं। और मिट्टी तैयार करने के बाद उसको पॉलीथीन बैग में भर के लाइन से जमा देते हैं कोई दूसरे खाली बेडों में, 10x1 मीटर के चौड़ मैंने लंबाई चौड़ाई के भी बेड होते हैं उसमें उसको जमा देते हैं। और उसमें वाटरिंग करना पड़ता है, इतना वाटरिंग करना पड़ता है कि बैग के कम से कम 50% मैंने 50% बैग भीग जाना चाहिए पौधे लगाने के पहले। और उसके बाद बेड से वो छोटे पौधों को जो 4-6 पत्तियां हुए रहते हैं उनको निकाला जाता है, वैसे निकाला जाता है बहुत सावधानी रखना पड़ता है कि जड़ पत्ती ना टूटने पाए या उसके डंठल ना टूटने पाए, ऐसा उसको निकाल करके वो अपना जो खाली बेड है बैग है वहाँ पे उसको ले जा करके बहुत सावधानी पूर्वक बॉल लगाया जाता है। और लगाने के बाद फिर उसमें वाटरिंग किया जाता है, और इसी तरह इसको दिन में एक बार तो जरूर पानी सींचना ही पड़ता है।
3: तो ये कितना बड़ा होते तक पानी दिया जाता है?
2: अब क्या है हमें जनरली जुलाई माह में इसकी प्लांटिंग करना पड़ता है, तो ये 2.5-3 महीने के पौधे होते हैं जिसको हम लोग जंगल में प्लांटेशन क्षेत्र में ले जाके लगा लेते हैं। इसी तरह इसको यदि 1.5 साल रखा जाए तो और ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्या है कि 1.5 साल के पौधे जो है ज़्यादा स्वस्थ और अच्छे रहते हैं, इस नाम से वो जंगल में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। साल भर तक इन पौधों के यदि बीज से लेकर के प्लोथिन बैग में प्लांटिंग करते वाटरिंग करते साल भर यदि समय इसमें लग गया तो करीब करीब 5 रुपये के आसपास खर्चा आ जाएगा इसका।

0: টেকি গুণমাল টেকা টেকি
1: उपयुक्त मृदा और जलवायु वाले क्षेत्र में सागौन का रोपण कर देना ही काफी नहीं होता, बल्कि हर वर्ष इसकी खरपतवार की सफाई भी जरूरी होती है, जो नियमानुसार 3 वर्षों तक की जाती है। फिर पौधों की उपयुक्त बढ़त की सुविधा और जड़ों और प्रकाश की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए 5, 10, 20 और 30वें वर्ष में सागौन की सैंपलिंग और बल्लियां निकालने की प्रक्रिया आवश्यक होती है।
2: वानिकीविद हैविटसन के अनुसार बस्तर में लगभग 4 फीट गोलाई के अच्छी गुणवत्ता वाले सागौन वृक्ष की उम्र 100 वर्ष तो होनी ही चाहिए, और ये तभी संभव है जब मृदा और जलवायु दोनों अच्छी हो, वरना इसके लिए 100 वर्ष से अधिक समय लग सकता है।

0: अपनी गुणवत्ता, बहुउपयोगिता, टिकाऊपन और सौंदर्य के कारण सागौन हरा सोना कहलाता है। आज उत्कृष्ट सागौन की एक घन मीटर लकड़ी का दाम अगर कोई 25,000 रुपए भी आके तो आश्चर्य की बात नहीं है। ये बेशकीमती लकड़ी आज हर किसी को आकर्षित करती है, घर का बाहरी हिस्सा हो या दरवाजा, भीतर सजी अलमारियां हो या अन्य फर्नीचर, हर कोई चाहता है कि इन्हें सागौन से बनाया जाए।
1: सरदार हरबंस सिंह फर्नीचर के व्यवसाय से जुड़े हैं। वर्षों पहले वे बस्तर आए और सागौन के सौंदर्य ने इन्हें मोह लिया। जगदलपुर और बस्तर से बाहर सागौन की बढ़ती मांग के आप साक्षी रहे हैं। आप बताते हैं,
2: यहाँ पर जो बस्तर की टीक है इसलिए मतलब जा रहा है कि जो बीजापुर साइड की जो टीक है वो वर्ल्ड में कहीं भी इसके बराबर का नहीं है, और यहाँ पर जो बम्बे से कलकत्ते से जब बाहर से आते हैं वो भी इसी को पसंद करते हैं और इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी होती है। और जगदलपुर में भी क्या है, जो अच्छे अपने पैसा खर्च करने वाले हैं वो बोलते हैं कि टीक का होना चाहिए, भले महंगा हो जाए कैसा भी। मतलब क्या है कि इसमें जो है फिनिशिंग अच्छी आती है, इसमें जो लकड़ी है जो चीज़ बन जाती है आज 20 साल 25 साल बाद भी वैसी की वैसी रहती है। जैसे कोई साल है जो कुछ भी है वो भेंट हो जाती है, कुछ भी है बीजा भी कलर देता है। सागवान का जो आज भी फर्नीचर बनाते हैं 10-20 साल के बाद भी वैसे का वैसे रहता है और अच्छी शाइनिंग रहती है। जैसे कि अपने सोने चांदी और लोहे में फर्क होता है, इसी तरीके से जो सागवान लकड़ी है एक किस्म का सोना ही समझ लीजिए, और बाकी चांदी आगे बीजा, बाकी दूसरी और लकड़ियां जो है अपने लोहे जैसी मतलब कीमत के हिसाब से भी हो जाती है।
0: बस्तर के सागौन ने फर्नीचर और गृह उपयोगी सामान की दुनिया से बाहर भी अपना महत्व स्थापित किया है। आज प्रायः हर रुचि संपन्न व्यक्ति अपने घर को बस्तर के काष्ठ कलाकृतियों से सजाना गौरव की बात समझता है। ये कलाकृतियां अधिकांशतः सागौन की लकड़ी पर ही की जाती हैं। सागौन पर कुछ भी गढ़ा जा सकता है, पानी भरती पनिहारिन हो या दशहरे पर्व की रौनक, माई दंतेश्वरी का छत्र लिए विशाल रथ की आकृति हो या अन्य देवी देवता या महापुरुषों की मूर्तियां, हाट बाजार के दृश्य हो या नृत्य संगीत या सांस्कृतिक समारोह जैसे विषय, सभी सागौन पर अपने सुंदरतम रूप में आके जा सकते हैं।
1: बस्तर और बस्तर से बाहर देश विदेश में इन कलाकृतियों की खूब मांग है। सागौन पर इस कास्ट कला ने जहां सैकड़ों कलाकार पैदा किए वहीं कला की अच्छी कीमत भी दिलाई। बस्तर के कई कलाकारों ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित की।
0: पूर्व में इस कास्ट कला का अपना एक रूप था जिसे नए आयाम देने का श्रेय जाता है बस्तर के वयोवृद्ध शिल्पी श्री अरुण गुहा को। श्री गुहा अपनी कलाकृतियों के लिए सागौन को ही उत्कृष्ट मानते हैं।
3: टीक का महत्व बहुत ज्यादा है, उटका भी यहाँ का बस्तर का जो उटका भी है, कहने इसको दो तीन एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट है इसमें जो चीज बनता है उसको वार्पिंग होता नहीं, क्रैक्स होता नहीं, और दूसरा है कि उसमें ग्रेन्स जो है, ग्रेन्स का यूटिलाइजेशन करने से वो जो चीज बनता है उसको प्रोपोर्शन ठीक से होता है। बिगर ग्रेन्स में क्या होता है, प्रोपोर्शन ठीक से होता नहीं। दैट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट आइटम। और क्या है, जो आदिवासी लोग जो बनाता है ये आजकल थोड़ा बड़ा साइज का होता है, जब छोटा साइज का होता है इंडिविजुअल मैन एक बनाने से, एक तो दशहरा का जो समझिए एक तो ये बनाया तो उसमें एक एक आदमी जो देखा है एक एक ग्रेन का भीतर होने से क्या होता है ना, वो उसको प्रोपोर्शंस छोटा होने से भी एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शंस होता है। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ बी है। ये छोड़ के क्या है कि इतना चौड़ा वाला लकड़ी ठीक छोड़ के अच्छा क्वालिटी का कोई लकड़ी होता नहीं। से 28, 30 इंचेस, 40 इंचेस चौड़ा जो लकड़ी होता है ये टीक छोड़ के और किसी से आपको अच्छा होगा नहीं, उसमें सेंटर आ जाता है, उसमें काम खराब हो जाता है। इसलिए इसको सबसे महत्व है ये टीक से ही बनाना चाहिए। मगर टीक का तीन चार कलर्स होता है, कोई लाइट होता है, कोई डार्क होता है, कोई एकदम ब्लैकिश टाइप का होता है। तो इसको भीतर एक एक टाइप का कार्विंग में एक एक टाइप का टिम्बर यूज करने पड़ता है। किसी में लाइट कलर होने से अच्छा दिखता है, किसी में डार्क कलर होने से अच्छा दिखता है। जैसे देव देवी का मूर्ति होने से वो आपको डार्क कलर होने से अच्छा दिखेगा, मगर कोई सीनरी होने से उसको लाइट कलर में होता है। ये जो वेरिएशन से टी कलर जो है ये आपको दूसरा किसी कलर लकड़ी में मिलेगा नहीं। सॉफ्टनेस के बारे में ये है क्या, टीक इज नॉट वेरी सॉफ्ट। जब सीजन टीक होगा उसको उतना सॉफ्टनेस नहीं रहेगा, मगर उसको ग्रेन से इतना क्लोज ग्रेन होता है कि उसको जो फिनिश करने से मालूम होता है कि जस्ट लाइक ए मार्बल एकदम हो जाता है, जो दूसरा लकड़ी में होगा नहीं। सिवना छोड़ के होता नहीं, मगर सिवना का वो वैसा कलर आता नहीं।
0: यूं तो सागौन संपूर्ण बस्तर में पाया जाता है, फिर भी भानुप्रतापपुर और नारायणपुर के जंगलों का सागौन गुणवत्ता में अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। सागौन न सिर्फ बस्तर के जंगलों का धन है, वरन किसानों की अपनी जमीन पर भी गर्व से गर्दन ऊंची उठाए खड़ा पाया जाता है। ये हरा सोना दिनों दिन अपनी मांग बढ़ाकर लकड़ी की उत्कृष्टता का पर्याय बन गया है।

अभी आप सुन रहे थे रूपक सागौन वृक्ष, लेखक और प्रस्तुति थी एमी रहीम की, वाचक स्वर थे के परेश और जसवीर कौर के, प्रस्तुति सहयोग था हर्ष कुमार स्कॉट का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

भदवा कार्यक्रम सुन तो सपा है मचो माय माता दीदी बहन मन के मैं गोंची करे से जुहार। हाँ तो दीदी बहन मन दखा जी फिर मैं तुमके भेंट हो के लेने तुम बल जाने सा दीदी बहन मन मचो तुम संग भेंट हो तो समय यही है ने अले तुम सपा नंगत नंगत आसास का याजी दखा सपा नंगत तरह कसन बल लेके दखा ये बेचू जोन समय आए नहीं जानी नहीं हो कौन दिन काय हो दे ने काय बीमार सीमार हो दे काय हो दे हाँ काय के हम दीदी बहन मन मन चुपरे खूबे काम बुता रुआ ने घर ले धरून बाहर चुपूता सपा च काम बुता हम दीदी बहन मन चुपरे ची आस ने ये ची संग संग काय के कमानी धमानी बल हम दीदी बहन मन जोन घर चबुता तो करू ची करुआत मान तो बाहरी बल जावा तो मन ने और बाहरी ले कमावा तो कमान बारे आप लोग घर परिवार के बल नंगत ले नंगत चलात का जे उन मन कोशिश करुआत ने। हाँ तो दीदी बहन मन दखा कमाई बोले मैं गोटो गोट सोता ही लेने दखा तुम्हें सपाय कमाक जाए साथ ने कमान बारी का है कि नहीं कोनी कुली भूती जाए साथ नाल कोनी नौकरी चाकरी करे साथ ने सपाय लोग कहीं ना कहीं काम मन करे साथ ची कि आप लोग जो न खिने आए चो सुविधा हो बोलून घर ने कहीं चीज चो मदद हो आम चो घर चो लोग चो कई जीने च कमी नहीं हो बोलू ने तुम बल हाथ पाए के खुबे चलाए साथ ने मेहनत मसागत करे साथ मान तो दखा दीदी बहन में तुम्हें मेहनत मसागत तो कर साथ नौकरी चाकरी करे साथ ने काम बुता तुमके जो रोजी मिले से उन रोजी के तुम्हें काय करवा बचान संगावास के ये सपा एक सारुन दिवास दका उन पैसा काय के जोन बल तुमके रोजी रोजी मिरे से उनके काय के ने खिने खर्चा कतरा खिने बचात रहा जोन के में बचत बोलू हमने अरे चीज संग संग काय के दका मैं लापी धुर काय पैसा कोड़ी बा जाते दका आमी गांव पारा चलो हमने अरे आमी काय के साल भर काय के आमी मेहनत मसागत करू धान कमाम आप मंडिया नाले जोनरा कई बल कमाओ हमने अरे धान के ची दका भी आमी धान कमाम आमी धान कितलो मेहनत मसा उनके धान के भून तो बेड़ा जतना तो खट दे तो फिर निंजा तो काट तो मीन तो सब पाए करो हम कितना मेहनत मसागत लागे से मान तो कहे कि मैं दो कहे गांव ने जो आस हो तुम मन कहे कि आप लोग कमानी के नहीं धान के नहीं बिकुआत अब बिकले का है कि मन धान सरुन जाए से और साल भर निप हो जो मन के खातों का जे कमी हो से तो यही सब पाए का सोचन बर का है कि दीदी बहन मन हम जो घर ने जोन बल जीने साथ खातो बीती होली नाल पैसा कोड़ी होली धान होली चाउर हो नाल का ही राशन पानी भर होली ने उनकी आमी ज्यादा ले ज्यादा

0: जमा करून संगात राय जुआन बारी कहन के पाचे आगे काय की हम कच्ची लगे हाथ पहला तो असर नी हो बोलो हरसनी दा का पैसा करे बोलो होली ने तुम तो कमाई खीन का असर ना मानतर काय की मैं देखो कौन कौन घर असर ना के कमाई तो खीन का असर ना मानतर मंचो काय तो शौक मन बोलबे खातो पीतर फिन तो खूब महंगा महंगा रुआ ने उनका रहने उन मंच जो ना पैसा कोड़ी है उन सपाई होता है सरुन जाए से तो ऐसा नहीं करा हम जो जितलो जरूरत तो सामान आ से जीनेस में ना तो उन सपाई घेन तो रहा है अरे उतली उन चो नहीं उपयोग का तो रहा कहन की दाग हम ही जैसा ना बचाऊं तो उसने आम के आगे उन्हीं बीच बचा ली बीती आम के खूबे फायदा हुआ दे जान के धान बल बाचे तो आम के धान के आगे साल भर ले ज्यादा बाचे जा ले आम के ये तो साल ने बल उन धान के खाऊ सौ कुने उसने पैसा कोड़ी बल बचान संगालू जा ले उन्हीं पैसा दखा कोनी दिन आम के मुसीबत होली परेशानी लीने कोनी मासी माल होला दवाई दारू होली अस्पताल जातो काजी बोले उन्हीं पैसा हम के उधर दाय काम हुआ उन्हीं का दीदी बहन मन जितलो हो सके उतलो बचान संगा आधा का हाँ तो दीदी बहन मन एक गोट मन तो होली ने अले मचलो तुम जो का जहला से जहला के सुनो
1: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तां जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना दुमिद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: तो दीदी भाई मन देखा तुम बल जानू आज कि मैं तुम संग भेटो के लिए जाओ कई कई गोट में धरू नहीं आए ने तो आज ही बोले देखा मैं तुम चुका गोट गोट धरनी ले से ये आए लोक गाता उद्यान राजा चो आए अरे के आम चो लगे हमरा ला सोत सोनारी मोर या रुद्री कश्यप आले ये लोक गाता ने उद्यान राजा चो के सुनू
4: सत भाई राजा तो आसत ए

उदयन राजा तो विचार कर लो, उदयन राजा तो विचार कर लो। मैं बेसरा के लुक जाए दे बोला लो, ए बेसरा के लुक जाए दे। आया बोले तुई बेसर रानी, आया बोले तुई राजा रानी।

0: मैं कौन
1: वाड़े
0: वाड़े
1: जाएंगे,
0: जाएंगे बोला
1: बोला
0: नीरे
1: नीरे
0: कौन
1: कौन
0: वाड़े
1: वाड़े
0: जाएंगे। बेसरा फुसकाऊ ना के लिए
1: जाएंगे।
0: बे, बेसरा
1: बेसरा
0: फुसकाऊ ना
1: फुसकाऊ
0: के लिए बे। हे माल
1: ना
0: जमा
1: के
0: करे
1: लिए
0: प्रभु रे, माल जमा करे।
1: बे।
0: उदयन राजा
1: राजा
0: तो
1: तो
0: जाए
1: जाए
0: बे,
1: बे,
0: उदयन
1: उदयन
0: राजा
1: राजा
0: तो
1: तो
0: जाए
1: जाए
0: बे। बेसरा खोजते
1: बे।
0: जाए प्रभु रे, बेसरा खोजते जाए। ए सतजन टूरी मन
1: तो
0: दख
1: नाम
0: लाए
1: है
0: बे, सतजन
1: प्रभु
0: टूरी
1: रे।
0: मन दख लाए बे।

बेसरा के डर लाए बे डाकू न दीला, बेसरा के डर लाए बे डाकू न दीला। सतजन टूरी डाको हत प्रभु रे, सतजन टूरी डाको।

तो दगते रोए, ओरा तो कया ले तो दगते रोए।

हाँ तो दीदी बहन मां तुम्हें लोकगाथा सुनलास ने जोनता रे उद्यान राजा चो रली ने हरे लोकगीत के आमचे लोग हमरा रोत सोनारी मौर्य अरुण और रुद्री कसे अपने तका कितले नंगत लोक गाता हमी सुन लू ने गीत चो ने कितले नंगत लागली हर गिबर लागली ने कहन के सपाय मन सुन तो काजे बे निमिरु आए ने आले तो दीदी बहन मन ये सपाय नंगत गोट मन तो होली ने सपाय होली तो मैं बोलते रहे मैं चलो किनी कसन समय बल आसे था गोटो गीत होले बल नंगत लागती ने आले मैं गीत धरू नीले साल गीत के सुनू था।

दिदी बहिन मन ए गीत के सुनलास नि ए गीत के गाला सर मेघनाथ पटनायक और मंच संगरी में अले दकादा मचो ज्यादा समय बल होली आलम के विदा दिया था घर द्वार कार्यक्रम सुनतो सपाय मचो माय माता दीदी बहिन मन के मैं गोंचिए जातो पूरे करे से जुहार।

अभी आप ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हिंदी में, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटना

0: मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रूपये नकद और पदक शामिल है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कृषि समसामयिक की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
2: भाई बहन मन, खेती कमानी का जे बैला भैंसा चो खूबे जरूरत पड़े से, ये मन चो नहाल और खेती कमानी मुश्किल होए दे। हम चाहन गांव मन ने सबे ठान ने ढोर अस्पताल निहाय गुनुक गाय बैला के कई बीमारी पड़लो ने एमन चु इलाज करा तो काजे किसान भाई बहन मन के खूबे तकलीफ होय से। असन ने गाय बैला ने जौट तो रोग और हुंचो रोकथाम चो वाट के जानून रले पशु जनावर चो प्राथमिक उपचार किसान आपलो घरे बले करुक लाए सकोत। तो या काश्तकार भाई बहन मन पशु जनावर ने जौट तो रोग और हुंचो रोकथाम चो वाट के हामी जानू। बैला भैंसा ने पेट फूलतोर गोटक बीमारी होय से, ये बीमारी ने बैला भैंसा चो पेट फूले से और ए मन के खूबे तकलीफ होय से। गाय बैला चो पेट फूलतोर कारण होय से जेबे ए मन खूबे मात्रा ने हरा चारा खासो तेबे असन होय से। नहाले कुहलो खराब बीती चारा खादलो ने, नहाले फिर गंदला पानी के पीवलो ने, नहाले पेट ने केस रूंडा हौंदरलो ने, ये सबे कारण लागुन बैला भैंसा चो पेट ने फूला चेगाव रह से। ये बीमारी ने पेट ने अनगर मात्रा ने लेहरा भरी होय से जेचो लागुन पशु के निनाज धरतो ने तकलीफ होय से। पशु जानवर दुखा काजे पाए के भूई ने बिसार मारते रुआत और पेट के बले लात मारुआत। ये जो रोकथाम काजे घर ने 1 लीटर खातो बीती तेल, 1 लीटर गर्म पानी और 20 ग्राम खातर सोडा मिलाऊन पशु जानवर के पियाऊन दे तो राय असन कर ले ए मनचो तकलीफ कम होय दे। गाय बैला ने पेट सूल नाव चो बीमारी होय से एके हमी पेट दुखा चो बीमारी बले बलुक लाए सकू। ये बीमारी जौट तोर कारण होय से जेबे पशु खाली पेट ने रह से और आगर बूता करून दय से तो हुन के पेट दुखा होय से और हुन चो खातो बीती आहार ने अचानक बदली कर ले, नहाले लेहरा के जौटा तो बीती कई जिनिस के खादलों ने पशु जानवर के पेट दुखा उठुक सके। असने पशु चुपेट ने चारा कुहुन रले, नहाले पेट भीतर ने घाव हौन रले और पथरी हौन रले बले पेट दुखुआए। कास्कार भाई बहन मन, बैला भैंसा के पेट दुखा चु बीमारी होले ए चु लक्षण बल्ले चीना असन दखा पड़े दे। पशु घन घन पेट के दखुन पाए के भूए अपटते जाए दे। जुगे पेट दुखा दिलो ने भूई ने लोंडून उलट पुलट होय दे और दांत कट रहे दे। असन ने हम के जानतो राय कि ये पशु के खुबे पेट दुखा दय से। कास्कर भाई बहन मन, तुरते घर ने एचो रोकथाम काजे जीरा 15 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, अजवाइन 20 ग्राम, काला नमक 5 ग्राम, हरट 20 ग्राम, ये सब जाग के मिसाउन पिसुन भाती गर्म पानी संगे पशु जानवर के पियाउन दे तो राय। असन कर ले पेट ने भरलो लेहरा बाहर निस्के दे और पशु के अच्छा लागे दे। पशु मन के 20 ले

0: ग्राम मात्रा बड़े पशु मन के और नानी पशु मन के 10 ग्राम मात्रा दिन ने दुहार पिया तो राय। काश्तकार भाई बहन मन के भय जे भाई हामी दखुआओं की बैला भैंसा चारा खाऊक नहीं मने आऊआत और राशन हुन मन तेबे करुआत जेबे पशु के जर धरली से नहाले पेट दुखा दय से नहाले और कोनी दूसर प्रकार जो बीमारी होली से। तो काश्तकार भाई बहन मन एचो घर ले इलाज काजे 10 ग्राम अजवाइन, आंवला 20 ग्राम, चित्रक 5 ग्राम, पीपली 5 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, हरट 15 ग्राम, काला नमक 25 ग्राम और जीरा 10 ग्राम ये सब जाग के मिसाउन कुटुन भाती चूर्ण तैयार करतो राय और बड़े पशु के 20 ले 30 ग्राम और नानी पशु के 10 ग्राम तैयार कर लो चूर्ण के गर्म पानी संगे दिन ने दुहार पिया तो राय। असन कर ले पशु के चारा नहीं खाऊ भाव तो बीती बीमारी ले उपचार हो दे और पशु जो ना चारा खाऊक मुरे आए दे। गाय बैला भैंसा ये पशु मन तो हम जो संगे गोठियाऊक नहीं सकोत मानतर हमन मन के ये पशु मन ने जौट तोर बीमारी चो लक्षण बल्ले चीना के जानून रतो राय और ये मन के कहीं बल्ले तकलीफ हो से बल्ले आप लोग घरेज प्राथमिक उपचार करतो राय फिर पाछे ढोर डॉक्टर मन के बल्ले दखातो राय। हम जो खेती कमानी ने बैला भैंसा खूब सहायता देसोत तो हम के बल्ले आप लोग घर चो लोग असन ये मन के मानतो राय और बीमार पड़ ले ये मन चो नगद इलाज करातो राय।
1: अभी आप कृषि समसामयिकी की बेड़ा खाड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण सुन रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 1:10 हुए हैं।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 डॉक्टर की सलाह।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8:00 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हां, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4:00 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसानवाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोता सुमन। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं जूही जोशी और आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का ये खास कार्यक्रम, जहां आपके दिल की आवाज

कर गूंजेंगे आप ही के पसंदीदा गीत। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए आगाज करते हैं कार्यक्रम का और आपको सुनवाते हैं आपका पसंद किया हुआ यह गीत जिसे आपने सुनना चाहा है फिल्म हिम्मतवार से। इस गीत को गाया है बाबू सुप्रियो और साधना सरगम ने। संगीतकार है नदीम सैफी और श्रवण राठौर और इस गीत के लिए हम तक खत लिख भेजा है आप सभी ने। आप हैं ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया बंछोर, शिवाजी चौक राजीम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। ये अगला फरमाइशी खत आया है खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार खंडाले, अंजलि, संदीप, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले। अगला खत है मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रितु सिंह और ऋषभ सिंह। बलौदा अकलतरा से आप हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉ रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। कतियापारा जुना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा और आदित्य देवांगन। बमहर चाटीदेह से गंगा देवी देवांगन, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन। चांदनी चौक गंडे पंडरिया से आप हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र सेन, यहीं से ही आप हैं रौनक सेन। ग्राम कोरमा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से ज्योति, जानवी, दीक्षांत, मिरी, प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, मनोहर, निषाद, नैतिक, दिव्यांश, धैर्य और आराध्या आप सभी हैं उत्तर बस्तर कांकेर भानु प्रतापपुर से। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी और आरएसपुरी। लच्छनपुर से आप हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, मुक्का भाटापारा से भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित, सुमित्रा साहू, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले, नुरैशा बेगम फूलवाले। संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव, तेजल यादव। हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी और हिना कौसर। सुभाषवाड भाटापारा से आप हैं एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमिन यादव, गिरीश करण यादव, युवान भावेश यादव, श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, धाडीनादुरा महाराष्ट्र से आप हैं। तो आइए सुनते हैं आप सभी का पसंद किया हुआ ये गीत।

कार्यक्रम श्रोता सुमन में अगले गीत की फरमाइश आई है फिल्म बाजीगर के इस गीत की, जिसे गाया है विनोद राठौड़ और अलका याग्निक ने। गीत लिखा है गौहर कानपुरी ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, और इस प्यारे से गीत के अनुरोध करता है आप सभी। आप हैं लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से, कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। ग्राम चरौदा बारनवापारा, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से आप है हमारे श्रोता नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू और ज्योति ठाकुर। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। प्रमिलागंज आलोर जिला रतलाम मध्य प्रदेश से आप हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। ग्राम धुरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू। हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर आप है बिरडी से। सावरगांव महाराष्ट्र से आप हैं रघुनाथ नारे, पुष्पाताई नारे, श्रीधर नारे और मीनल नारे। अनूपपुर मध्य प्रदेश से हमारी श्रोता हैं जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया आप है सपना संगीता रोड इंदौर से। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगन, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, मुस्ताबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधी भाग अकोला से आप है रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव आप है हिच्छा महासमुंद से। नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू और राघवेंद्र साहू। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा बचेली से हमारे श्रोता हैं आप बलराम सेन, इंदु सेन, ऋतिका सेन, पुष्पराज सेन, पोषण सेन और पंचू सेन। तो लीजिए श्रोताओं सुनिए आप सभी का फरमाइश किया हुआ फिल्म बाजीगर का ये गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम श्रोता सुमन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए है ये एक विशेष सूचना, जो इस प्रकार है। फोन इन किसान वाणी की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार यानी कि आज ही के दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे के बीच होनी है, तो इस कार्यक्रम में फोन करना ना भूलें। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम श्रोता सुमन में पुनः आपका स्वागत है। श्रोताओ, अब सुनेगा फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये खूबसूरत नगमा आपकी फरमाइश पर। स्वर है कुमार सानू और अलका याग्निक के, गीत लिखा है रानी मलिक ने, धुन तैयार की है अनु मलिक ने और इस गीत की ख्वाहिश हमसे की है आप सभी ने। आप हैं सुंदरपारा रोहासी से डगे सर्राम साहू, घनश्याम साहू, नूतन साहू, अलका जानवी साहू, मालेगांव से आप हैं दत्ता घायल, सुनीताबाई घायल, सनिका घायल और गजानन घायल, भाटापारा दत्रेंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर, सनावद मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा देवी, प्रभा कटारिया, कृष्णा विराज, अर्नव और काव्यांशी कटारिया, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर, आप हैं जसपुर उत्तराखंड से, महासमुंद तुमगांव से आप हैं सतीश कुमार यादव, श्रीमती चित्रेखा यादव, सुभाष वार्ड भाटापारा से भाई मोटू यादव, रिंकू कुमार यादव, श्रीमती भूरीबाई यादव, युग कुमार यादव और युवराज कुमार यादव, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, रतनपुर से आप है भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविन्द्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद्र, आदित्य, गुनगुन नायक, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेक बीरक, मीका बीरक, ग्राम नथाना पंजाब से आप है हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन सोनी, सीता और गीता। तो लीजिए श्रोताओ, सुनिए फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये बेहद ही प्यारा सा नगमा आप सभी की फरमाइश पर।

श्रोताओं, आप सुने कार्यक्रम श्रोता सुमन में कुमार सानू और साधना सरगम के युगल सुरों में फिल्म दाविनी का ये गीत। समीर की गीत रचना है और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने और पसंद करता है आप सभी। आप हैं सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान, अनुष्का चक्रधारी, आप सभी हैं ग्राम भंडार सिवनी, जिला कोंडागांव से, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप है झग्गर राम साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू, मदनपुर कवर्धा से आप है श्रवण कुमार साहू, चंडीगढ़ से आप है सतीश जनेजा, बिमला अनेजा, नेहरू वार्ड यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से आप हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, डंगनिया रायपुर से अनिल कुमार यादव, श्रीमती भारती यादव, अयाश कुमार यादव, गगन कुमार यादव, तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल शिवास, अनीता शिवास, डोंडी लोहारा संबलपुर से गौतम उर्वशा, डामिन उर्वशा, लक्की और डोमनलाल कोठारी, अर्जुनदा बालो छत्तीसगढ़ से दिनेश यादव, साधना यादव, तुवेगोंदी मंचुआ से रिंकू रावटे, अयांश और मोनू सहारे, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, डॉ विसन फ्रिगु, विनय ठाकुर, सोनडीह से सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, रायपुर से नीलू मैग, कंवर कॉलोनी बड़वाह से आप हैं प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी शिमाली और मीनूराज शिमाली, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दिवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू पूजा रोशनी और अजय गंगराड़े, अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर और वेदिका फूलमाली, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, कुमारी अंकिता जोशी और बेबी वैदही जोशी, कामठी नागपुर से श्रीमती किरण शर्मा, कैलाश प्रसाद शर्मा, आशीष कुमार शर्मा और श्रीमती अमृत शर्मा, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया और प्रभा देवी तामोरिया। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम श्रोता सुमन का ये अगला फरमाइशी नगमा सुनेगा फिल्म मिस्टर आशिक से। स्वर है अलका याग्निक और कुमार सानू के। लव्ज है इंदिवार के। संगीत से सजाया है जतिन ललित ने और इस गीत के फरमाइश करता है आप सभी। आप हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, बन वगैरह राजनांदगांव से आप हैं योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश और अंजलि सारवा, हमीरपुर से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, निवेदिता, प्रांशी, ज्योति, मानसी, सुदीपा और सुशीला पाल, ग्राम फरसगांव, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ से आप हैं हमारे श्रोता फागेश्वर मंडावी, पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज वाडोदे, बीटी वाडोदे, जाबरून अर्धापुर से आप हैं दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय आशीष, पृथ्वीराज, कुमारी साध्वी जोशी, नसवाला चौक मलकापुर से आप हैं संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीर सागर, सतीश श्राफ, जगदीश तोमवार, नगीन दास, नयापारा फरसगांव से सत्येंद्र मंडावी, उमेश नाग, कृष्ण नेताम, रंजीत भंडारी, आदर्श नगर मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, भाटापारा से आप हैं दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत, पेंशनबाड़ा रायपुर से सोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्यप्रकाश, शीला यादव, अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर, गांव मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू। तुली जी श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का ये गीत।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम श्रोता सुमन का ये अंतिम नगमा सुनिएगा फिल्म विजयपथ से। इस गीत के रचनाकार हैं जमीर कासमी, संगीतकार हैं अनु मलिक और सुरों में ढाला है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। और इस गीत को सुनने की ख्वाहिश हमसे की है आप सभी ने। आप हैं खुर्सीपार भिलाई से श्रवण कुमार यादव, विक्की यादव, श्रीमती आरती यादव, कुमारी देविका और बेबी यादव, सुभाष वार्ड भाटापारा से अमित कुमार यादव, श्रीमती ईश्वरी यादव, करण कुमार यादव और डिम्पी यादव, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, वारणा शाहपुर कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्वनी चौहान, अंकिता, अनिकेत, करिश्मा, माई चौहान, कल्याण से आप है डॉक्टर सूरज सुरवे, नमिता प्रकाश सुरवे, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार,

बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा और कुश मूड़त, ग्राम परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया और तुषारणी मसिया, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, गणेशनगर बिलासपुर से अशोक कुमार यादव, श्रीमती अनीता यादव, प्रिंस कुमार यादव, गब्बर यादव, सुभाषवाड़ भाटापारा से भाई अजय यादव, श्रीमती पार्वती यादव, गिरीश कुमार यादव और प्रेरणा यादव, दुर्गापारा संतोषीनगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव, धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव, किशोर कुमार सांवले, श्रीमती रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारुवी और मास्टर प्रणव सांवले आप है दरबार कॉलोनी सनावत से, कन्नेवाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी, देवव्रत सोनवानी, लक्ष्मी देवी सोनवानी और कुमारी गीतिका सोनवानी, बेमितरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही मेहराज जहां आप है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, सारागांव चटौदा से आप है सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा और आयुषीकृत वर्मा, दिल्ली शहर मोरीगेट से आप हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो लीजिए श्रोता सुनिए कार्यक्रम श्रोता सुमन का फिल्म विजय पथ का ये अंतिम और प्यारा सा गीत।

अभी आप कार्यक्रम श्रोता सुमन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लौ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा कि एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के ए सेंगोत्यान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
4: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
1: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्तारोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार। दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र,

0: कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सपा कलाकार भाई बहन सियान सजन और दादा दीदी मन के मैं गोंची करे से जुहार। तो कलाकार भाई बहन मन दखा फिर तुमको मैं भेट हो कि लेने हले सांगा फिर कसन कलाकार भाई बहन मन सपा नंगत नंगत आसास का है ने दखा सपा नंगत रहा है कसन बल्ले के दखा तुम्हें नंगत रह जल तुम चो जो न काम बुता है ने उन बल नंगत चले दे काम बुता नंगत चले जाल तुम चो जीवना बल नंगत चले दे कहन की जितलो नंगत आम चो काम बुता चले दुतली आम चो कमाई ने बांटती हो देने तुम बल जाने साथ के घर पर चलात का जे की काम कमाई ने किन बांटती कड़ुक चुप रहे से ने उनका जो सपा नंगत रहा कहन के नंगत रहा ले तुम चो कमाई ने बांटती हो दे फिर उनने फिर बांटती हो जाए तुम चो घर पर नंगत चले दे आप लोग दे पाए के नंगत ले नंगत दखा रखा करा दखा अरे बे काय के दखा गर्मी चो महीना है ने तो ये गर्म खूबे लागे से उनका जे खूबे ले खूबे पानी पिया और घाम लिखी नहीं बाचुन बारी रहा दखा। तो कलाकार भाई बहन मन तुम संग भेट घाट तो हो लेने दखा मैं तुम संग भेंट हो के ले जाल कहीं ना कहीं गोट मन के धरू निवाने के तुम बल जाने साथ ने हाजी भाई मैं तुम चो का गोट धरू नी ले से हराजी चो गोटा नई पीढ़ी और कला नई पीढ़ी बल्ले कलाकार भाई बहन मैं तुम्हें जाने साथ के आम चो जो नुआ युवा मनासो जहन की लेका लेकी होला ने जो समझदार होला उन मन कला बल्ले जो नाम चो पुरखा ले जो न चलते ऐसे उन मन चो हुनर ने जहन के लोकगीत होली और कई काम होली जहन की चित्रकला होली नाल फिर बड़े काम होली लोहा चो काम होली और खूब खूब नंगत नंगत आम चो ताने हुनर मनासे ने जो नाम चो कलाकार भाई मन चो भितरे आसे जो उनको मन नंगत ले नंगत कर तो काजे कार मेहनत मसागत कसवत ने। तो कलाकार भाई बहन मन धका एक हुनर बल ले का है कि नहीं आमी सीखुन बारी आम ची लगले तो नी संगा उसे ने कहन की तुम्ही सीखला सा तुम च माँ बाबा ले आ तुम च माँ बाबा तुम ये नंगा सीखला तो ये तो पिला मन के तुम्ही सीखा है साथ ने आ तुम्ही धके साथ कि तुम च जो न समय रे उदा दाय काय रली की उदा दाय तुम के सुख सुविधा नी रली उठले जहन के कई सुविधा नी रली कोनी जहन के बड़े की ची धका ने उनसे लगे ज्यादा औजार बोले जमक नहीं रहता रहे उनका रहे नंगत ले नहीं बना सकते रहे मानता रे बच्चे जो बड़े ही मनास हो तुम मन चो काम के दखा तो कितलो नंगत बना ला सोतने कसम बोले कुन मन चो हाथ इतलो सुंदर होली से कि उन मन जितलो सुविधा मिले उतलो सुंदर मन आप लोग हुनर के दखा है सोतने नानी असन फारा ताने दखा कितलो नंगत नंगत छापा चित्र मन बना कितलो सुंदर बनाया सोच के दख तो लोग बोले उनके घेन तो काजे मन करे सोत उन्हीं आए कि दखा आम चो जोन पुरखा बेरा खिनिक जानकारी चो कमी रहे ने और उन कारण बोले मन आप लोग काम बुता के आगे बढ़ा नहीं सकला उन के धका नहीं सकला मानता रे जितलो पढ़े लिखे होला जितलो जानकार होला सो उन मन चलो गे ज्यादा का समझदारी ली ने कसन बोले के मन के घर ले निकल ले दुकान ने जोन सामान बोले उन सामान उन मन के मीरे से उन कारण मन चो जोन काम बुता है नंगत चले सारू मन चो जोन हुनर आस उन मन चो लगे ने उन हुनर क्या सुंदर ले सुंदर बनाए सोतने कहा है कि कलाकार भाई बहन मन मैं दो कुआ है कि नहीं आगे चलो का है कि नहीं फोटो खींचन बार नहीं गोटक नानी असन पंडरी असन फोटो संगात रहते मानता रे बच्चो जो न मैं घर मन ने देखू है कितलो सुंदर दखा रंगीन फोटो मन संगा सोतने आ तुम्हें सोचा है कितलो बदलाव इली ने लोग मन कितलो मशीन जो का है तो उपयोग मन करे सोता दखा पंडरी फोटो ले दखा कितलो रंगीन बीती फोटो बनाए सोत तो आ तुम बस सोचू सके साथ के कितलो आम के उनने फायदा हो इस उन मन के कसन की दखा आमी घर ने टाऊंगी तुम कितलो सुंदर दखा दे ऐसे ने और आगे का है कि दका रुक मंच बल का बनाते रहो तुम असने सादा सिंपल दका देते रहे मानते रे जोन चो घर ने तुम्हें जा सुन मंच घर ने दका से दीवान दका से नाल फिर उन डाइनिंग टेबल बोले जोन तन बोसन भात खवा मुन होली खुशी टेबल होली इतलो सुंदर नकाशी कर उन बारे आप लो हाथ चो हुनर के दका ला सोत की कोनी बोल उन घर ने जा सो तुम दुकान बोले हाँ कौन बड़ी ली तान ली बना ला सा तुम ये कितलो सुंदर दका दे से बोलू ने उताले तुम चो पहचान हो ऐसे और ये सब पाए के का है कि नहीं हम चो जो नुआ पीढ़ी चो जो आसोट कलाकार भाई बहन मन ये मन के आओ सुंदर नकार ने सुंदर बना कोशिश के असर कसन बल लेके दका ये मन जितलो सुंदर बना दे उन मन चो उतली उन मन चो नाम बल बढ़े दे मन बल जाने सोत अरे चो का दका कितलो नगत नगत सुविधा मन होली से मोबाइल मन होली से रेडियो बल होली से ने और फिर जानो टीवी बल आसे तुम ये सब पाए तान ना ये वीडियो बनान का ही बनान डालू सकास और आप लोग हुनर के सब पाए लोग के दकान बारी आप लोग पहचान बना सका। हाँ तो कलाकार भाई बहन मन एक गोट मन तुम्हें तुम संग गोटी आय ची ने मानते रे दे जहाला धनी ले जहाला के
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से, बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से, नुआ कीमत ले सामान बनातो लोग और घेनतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितम्बर 2025 ले लागू हो दे।
7: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाएं रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 से 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे, आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 से 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
8: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवें राहत दरकना उम्मीद मिंदे। यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता। जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना दिंदे।
0: हाँ, तो कलाकार भाई बहन मन मैं तुम संग गोटे आते रहे ने दका नुआ पीढ़ी चे लोग का है कि नहीं जितलो सुविधा मने मन आप लोग का जे धरे सोत नहीं उतली उनके ने आप लोग कमा तो का जे साधन बल बनाए सोत कसन की दका सपाए के नौकरी चाकरी नहीं मिले नहीं कहीं ना कहीं कुली भूति करुआत नाले जोन चलो हुनर ना सुमन आप लोग हुनर नीचे आप लोग घर परिवार के चलावात नहीं। तो का है कि नहीं दका एबे चो लोग का है कि नहीं जसन की दका लापधुर का है जातो राम ची बस्तर ने शहर भितरे दका ने जोन लगे चांदनी चौक बोला उन लोग दका उन लोग मैं दकू आए कि उन लोग बो शुरुआत नहीं मन बो शुरुआत दादा मन बो शुरुआत ने उमन बल कलाकार आर कसम बोले देखो मन नानी नानी बांस ले दा का कितलो नगत नगत टुकना टाकरी और उन चबल बड़े असन नानी असन सब जिनिस मन बनाए सोत ने कहन के आगे चलो काय कतर और बांस ले वो मस्जिद तो का जुन टाटी बनात रहत ने और फिर जानू एक परला बनात रहो सूप बनात रहो और टुकना टाकरी और उन का धान संगात का पाल बनात रहत ने इतली ची बना जानते रहो मातर एबे तुम दका जो मैं बोल ले तुम के बे आम चो जगदेवपुर ने ची दका उन कलाकार भाई मन दका बांस ले कितलो और उन चोर बिलाओ सुंदर सुंदर बनाए सोत ने यही आ उन मन चो हुनर जो हम के उन मन दका आए सोत ने और हम उनके चिताओं से क्या माने लगे ये हुनर आसे बोलून और उन हुनर ले दका उन मन इतलो उन मन चो कमाइबल हो ऐसे कहन की उन मन चो हुनर दका सपाए जगान फोटो खींचून बल ने सोत उन मन चो गोटे आए सोत बोले यही उन मन चो कमाई चो जरिया होली से ने। तो कलाकार भाई बहन मन तुमको मैंने यही बोलें दे कि जितलो एबे तुम्हें समझदार आसा पढ़े लिखे आसा उतली ने तुम्हें आधुनिक चो बोले उनचो उपयोग करा कहन कि तुम चो हुनर के आगे बढ़ात के आज यही ची काम ये दे। हाँ तो कलाकार भाई भाई मन ए सपाय गोट मन तो होली ने तुम्हें अजाने साथ में आउबल गोट धरनी वाय जहन की मैं तुम गोटे अटका जे गोट कलाकार चो गोट के धरू नि वाय ने और उनचे संगे संगे नए गीत गोविंद भी धरू नि वाय आज भर मैं तुम चो कार गोटो कलाकार धरू नि ले से या शोभना नारायण और एमन जो नाथ नई कथक नृत्य करवात तो एमन चो गोट की मैं तुम संग तो गोटे आंची मानतर उनचे पहले ये दे गोटो गीत ना ले से गीत के बोले सुनू

हमारा भाई बहन मन एक गीत के सुनला सुनी एक गीत के गावला सो तो गेरमणि देवी और उन मंचो संगवारी मन हाँ तो मैं तुम संगे आज इचो कलाकार चो गोट धरनी हुई लेसने ये मनात शोभना नारायण जोन कथक नृत्य करुआत ने अदखा ये जोन शोभना नारायण साहब जो नासोत नहीं ये मन भारत ताने नहीं इतने सुंदर कथक नृत्य करते रहो ये मन जो नृत्य कारण ने भारत ताने नहीं पूरा हम जो देश दूसरा देश में बोले ये मन की पहचान होली और उनके खूब सम्मान बोले मिल ली ये मन जो जोन जीवनारल नहीं आम के ये सीखा हुआ ते मन चो तानले मन जोन सांगे से मन चो जीवनाल आम के ये सीखो मेरे दे कि जैसा नामी नौकरी चाकरी करुन बारी बोले आप लोग हुनर के कसन आगे बाढ़ती करते रहे बोलून कन के मन बल नौकरी चाकरी करुन करुन बोले आप लोग जोन नित्य कला ये मन के नहीं के भी नहीं छाड़ला और उनके नंगत ले नंगत सीखते का जे मन प्रयास हमेशा करते रहो तो देखा ये मन चो जो जन्म आए 2 सितंबर 1950 ने पश्चिम बंगाल चो कलकत्ता ने होली और ये मन चो जो माँ चो नाम आए ललिता नारायण जोन गोटो ये मन बोले कला रोत और नए कलाकार रोत और ये मन संस्कृति चो खूबे जानकार रोत और आप लोग माँ चो कला के जानकार तो कारण चे ही ने कहा कि नहीं ये जो शोभना नारायण जी जो नाथ नहीं ये मन 4 बरख चो उम्र ने ही नृत्य सीखो मुरियाला हम देखा 4 बरख बोले कितलो नानी हो इसने ये बट पिला मन तो 4 साल बोले देखा मोबाइल होता रहा टीवी होता रहा ये मन ने रुआत ने मान तो ये मन देखा शोभना नारायण जो न जी आत नहीं ये मन का आयत कि 4 बरख नहीं देखा नृत्य करो सीख लाओ कितलो नगर गोता है देखा नानी उमर ने जो सीखते जावा आप लोग हुनर के कला के देखा जावा उन मन आप लोग हुनर ने आउर ले आउर पारंगत होते जावत ने एक तुम बल जाने साथ के जो नानी उमर ने दुख हुआ है सीख हुआ उन्हीं सब पाया आगे ची बाटती करुआत बोलू ने अरे मन जो पढ़ाई है नहीं जो प्राइमरी पढ़ाई होली कॉलेज होली जितने बल पढ़ाई होली ये मन ने दिल्ली ताने ची कर ला और न ये मन का है कि ना बड़े होम बर का है ना मिश्रा हाउस बोलूं गोटो का दिल्ली चो विश्वविद्यालय से उतर जाने बहुत ही विषय ने मास्टर डिग्री धर ला और का है कि मन ने दाका मैं तुमके मूल बोला ची बोल ले कि ये मन कथक नृत्य सीखो मुर 4 साल ने जिसने मन जो पढ़ाई होते गेली पढ़ाई कार्य ने कहा कि कथक नृत्य कथक आज खिनी के मन के परेशानी होली कहन की दोनों काम तो एक संग नहीं हो पढ़ाई संग संगे आप लोग सीखते हुनर के सीखते काज बल ने खिन कमी होली उन कार्य ने मन कहा खिनी पाठकुत्ती होते गेला मान तो फे बोले मन नहीं आप लोग हार नहीं मान ला जिसने मन जो पढ़ाई पूरा होली ने अब पूरा करूं बारे मन नहीं फिर सोचला कि नहीं हम के मके और चले और पारंगत होते रहे बोलू सोचला तो उन कार्य ने कहा कि नहीं मन गुरु खोज मुझाला सिखा तो काज तो ये मन के गुरु बल मिलला जोन गुरु आते मन गुरु पंडित बिज्जू महाराज रो तुम मन के सिखा तो और गोटो गुरु रो गुरु पंडित कुंदन लार ये मन दोनों मेरुम बैर ये मन के नंगत ले नंगत ये नृत्य के सिखाओ मुरियाला और दखा ये मन चो सिखा तो कारण ची दखा उन मन ने बेटलो नाम ये मन चो आसे कसन बोले कि दखा आमी स्कूल बल जावम ने पिला मन की स्कूल पटावम तुम तो आपुन बसुन बारी नि सिखु सके सोत उन चो कारण का है कि स्कूल ताने गुरुजी मर दे मैडम मर दे उन मन सिखा देने तेबे मन सिखु हुआ है तो असनी ये मन बोले आप लोग का गुरु खोजला और मन चो गुरु कारण नहीं है मन चो खूबे पारंगत होला उन नृत्य ने और आप लोग नाम के आगे बढ़ाला और काहे कि मन बिया लाइक च होला तो बिया होलो पाचे काहे कि मन हास्टेरिया जो जो पहले जो राजपूत रो तो मन चो नाम है डॉक्टर हर्बर्ट ट्रैक्सर संगे मन चंगे होली और 1976 ने ये मन का एक ने भारत लेखा परीक्षा पास कर ला जो इनके हम बोला IAAS बोलवा उन परीक्षा पास कर ला और अधिकारी बन ला मैं तुमके मूर बराचे बोले दाका मैं नौकरी चाकरी करूं बोले आप लोग हुनर के आगे बढ़ाला बोलू ने दाका मैं यही गोट के तुमके सांगते रहे कि ये मन दाका आप लोग पढ़ाई लिखाई पूरा कर ला उतलन पाचे फिर जानू गोटोक विषय ने डिग्री बधर ला उनचो सांगे फिर काय कर ला आप लोग जो न कला आसे हुनर आसे उनके नंगत ले नंगत पारंगत हो तो काजे गुरु खोजून उनके सीखो मुझे आला ने उतलन पाचे फिर काय अधिकारी पद का जे मन पेपर बल दिला और पेपर दे बरे मन पास बर होला दाका और गोटोक अधिकारी बन और उन अधिकारी संगे संगे काहे कि नहीं मन आप लोग अभ्यास के और नगत ले बनाला और उन संगे नगत बनान बारी काहे कि नहीं आप लोग प्रदर्शन के रूप मुरियाला बोलू बे उन मन कौन ताने मंच मिले जाल उता ये मन जाउन बारी आप लोग हुनर के दकाते रहोत तो कलाकार भाई बहन मन ये मन जो गोट मत तुम संगे गोटे आयन चीने आले फेरे दे गोटो गीत बद्धनी गीत के बोले सुनो

0: गावला सोत मुकेश बासनिक हाँ तो मैं तुम संग गोटियात रहे हैं शोभना नारायण जी चुगोट के ने हाँ तो मैं तुमके बलते रहे कि यमन IAS अधिकारी बल बनला बोलू ने दका यमन अधिकारी तो बनला मान तो कहे कि ना आप लोग जो ना अभ्यास रहे सीख तो जो ना हुनर लगन रहे यमन कहे कि बिया ने अंदा अंदा सीखते रहो और आप लोग काम ने बोले जाते रहो और कहे कि नहीं मन नहीं आप लोग जो ना पारंपरिक जो कला है घर ले सीखन बारे तक एक लोग मत कुन मन आगे बढ़ा गेरा होता जन आप लोग जो संस्कृति या से रीति रिवाज सफाए को तब मिला ला ने और उन मन कहे कि नुआ नुआ नहीं नृत्य कर तो का जो तक कोशिश कर ला जहन के पश्चिम शास्त्रीय संगीत बोलवा तो उनके मिला ला सो आ टेप डांस बोलवा तो सब पाए के तो के मिलान बारू में नगर ले नगर डांस और बना सीख ला ने डांस बोले नृत्य करु सीख ला और फिर काय के ची संग संग काय ने यमन नहीं पुस्तक बर लिख ला जो नृत्य यमन कतक नृत्य जो न करे सोत उतना नहीं 14 ले बोले ज्यादा पुस्तक मन लिख ला और नहीं दिल्ली तने काय के नहीं आशा वाली गोटोक बोलू न नृत्य केंद्र खोचो मूर कर ला जोन तन जो नुआ पीढ़ी चो जो न लेखा लिख मन आजत ने उन मन के उत्ता गोटोक स्कूल असन खोल बल उतना सिखाओ मुरियाला और ये मन के सरकार बाटले बोले सम्मानित मिली जहन के पद्मश्री 1992 ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिली 1999 ने बिहार गौरव पुरस्कार मिली जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले जो बाहरी देश ने जो मिले सुन बल खूबे बड़े गोटाए ने और काय के दका बेच जो मार्च 2026 ने जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होली नहीं उन तने काय के नहीं मन नहीं नुआ पीढ़ी मन चो जो आसो तुन मन के आप लोग शिक्षा दे तो काजे काय के मन नहीं वो तो आप लोग कार्यक्रम दिला बोलू बे मन बोलू तक कथक नृत्य के दकाला दका तुम कि सोचा उन जो ना 1950 ने जन्म बर्द का 2026 तक दका कितलो उम्र होली उन मंच ने हर उन हुमर ने बले मन आप लोग हुनर के बे बल दका ऐसो तनुआ नुआ पीढ़ी मन के सिखाए सो तो कलाकार भाई बहन मन तुम्ही बले आप लोग लगे जो हुनर आसे ज्यादा उम्र होलू से कि नानी उम्र आसू बोलो ना सन नी सोचा कसन की दका जसन ये शोभना नारायण जी जो ना आसो तुम मन एबे बले इतलो उम्र होला सो तर आमच मंजारे आसो तर आप लोग हुनर के दका ऐसो दकान बारी का है कि नुआ पीढ़ी जो पीला मन आसो मन के नंगत ले नंगा सिखा तो काजे कोशिश करे सो प्रयास करे सो तार उन चुका जी स्कूल बोले खोल ला सो जो दिल्ली ता ने आसे तो कलाकार भाई बहन मन दका इतलो नंगत ते मंच जीवना रली ने तुम्ही बोले मंच असन नंगत जीवना बना तुम चो बोले असनी नाम हो असनी तुम्ही नंगत ले नंगत का करा हाँ तो कलाकार भाई बहन मन दका सफाई नंगत गोट मन तो होली ने मच लखी नी कसन समय बल आसे आ मच लगे तुम चो कार गोटो गीत बोले आसे आले गीत के बोले सुनूता
1: हरे काय डोंगरा डोंगरे लागला चली डोरी बोलाला मारसी बोली खार करे जाय सोयला सुसी पुडका लुकाय रला कावरे डोकरी हंदरा हंदरा उठला मारले मारो पिटले पिटो अनगन्या के टेम डगालिया बागटे गोडिया सोयला पेटिया मोडला डोंगरा बोलला सुसी पुडका बसी बाकी इसने आपरे ना उठला डोंगरा तरला लाटी चाटला सुकला पिटी हादाय देला ये टंग से तू टंग मुगा पिटी बग नागल खाना देनी डोंगरा मोरा बसे खाइबी फुलला बेट के तरै देवे उसकी ओई मोवी कुकड़ा गार गोटे से फोकला बोलते मुंडे डटाई अभी मोर बेला गुजर गुजर कहते सुनते रवि मोर बेला गुजर गुजर कहते सुनते रवि शुक्ला बोल के दगाई देवे पानी बुड़ी करी मोर भी दाते वे बोलते डोगरा डोगरी सेलो देला डोगरा सेलो मांगला डोगरी उठी करी टिक दुम तुम डोगरी बोलाए गला पानी लो अलर शुक्ला बोलते हापड़ के थे अकेला तारा तो गुड़ शाम सबने दीदी देला कौन नहीं तक रोब रोब करा मार रोब रोब आयला कौन कटा उठे मर्ज पुजारी दर्जी रे डोगरे लगले खली तारे डोगरा डोगरी मोरती बोली हापड़ के थे कैसी तोर डोगरी मोरती कौन माने डॉक्टर ले खाने ली पड़ते थी खाना बोला आयला बोले हम के और मरते थी तोर लगते चार आठ ना पुने पूरा थी तोर डोगरा डोगरी गली धन लगी गई हम के बंदी ने थी कावरो लो पोरो हमर मोर जा जाए थी सोने करी सके पुने बोके डोगरा डोगरी चिंता कर ला यबुबार डोगरी मोरला बोले पेट पानी कोने रे दिही बोला कोने रोला बांडा मुसल तू यार टटा हैला सुका सुका ना मन के डोगरा पोलाई गला डोगरी लाई गला डोगरा डोगरी के तरले खोले तुमा देला दुई डगले अले उन डोगरी दासुन कर जूता उन डोगरी दासुन कर हमर घरे जाऊ ता तुआ बनाई खाई निशा मिला हो डोगरा डोगरी बेनी जन निज डोगरे गलाई ता तुआ बने बनाई खाई कई करी निशा मिला हेलाई ता बनाई करी कई करी निशा मिला हेलाई સુરો સુરો ગોંદા ગોળે બોળે બારથી દાદા બાટે પીડી રેલે પેજલી ને જડથી પોડરે પોરા પાયલે ટકા ગુગત ગુગ જાયથી હોદર કોને પીડી ને ચમદા ચિતાયો હશે ના દબુડી પાણી ગઈ કુકડા ખાય મે ટાન ગઈ સુને સુને નીદા દેવે ઠેવા કીડા મન ગઈ કરલી કોસ ઉતર લસતે ટેબરી પીડે તમને દોત કીચડી લાપડી દેલા ઉપર ઉપર ખામ ગઈ

अभी आप कार्यक्रम कला और कलाकार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर अब हमारे कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। शाम 5 बजे मीडियम वेव पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब हमें इजाजत दें। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में आज शाम 5:05 पर। आज शाम 5:10 पर होगा युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हिंदी भाषा में। रत्नी और साथियों के स्वर में जगार गीत आज शाम 6:35 पर। कार्यक्रम बस्तर के स्वर आज शाम 7 बजे।

0: आज शाम 7:21 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम शिक्षकों के लिए आज रात 8 बजे। विषय होगा इंटरनेट और आधुनिक शिक्षा पद्धति। वार्ताकार इंद्र कुमार झा। आज रात 8:30 पर होगा बच्चों का कार्यक्रम पिलामन का जय गोठ। प्रस्तुति होगी भरत कुमार गंगादित्य की। कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से आज रात 9:15 पर। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में आज रात 10 बजे सुनिएगा कंकालीन माता पाड़ और लक्ष्मी जगार पाड़। वादक कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। यह थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना कल सुबह 6:05 पर। सुबह 6:20 पर सुनिएगा चिंतन। आलेख और स्वर होगा माधुरी महापात्र का। श्रीरामचरितमानस का गायन सुबह 6:25 पर। स्वर होगा अनुराधा पौडवाल का। संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। कल सुबह 6:35 पर और कल दोपहर 1:10 पर कृषि श्यामी की बेड़ा खाड़ा चो गोठ। कार्यक्रम हलोली में सुबह 6:40 पर सुनिएगा गौपतिया पाड़। कलाकार होंगे श्रीधर और साथी। कल सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसके आकर्षण होंगे रसरंग में हिंदी सिनेमा में महिलाएं। प्रस्तुति होगी चंद्र ऋषि ठाकुर की। साथ होगा हल्बी समाचार बुलेटिन और होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। कार्यक्रम लोकमंजरी में कल सुबह 8:30 पर सुनिएगा विभिन्न बोलियों में लोकगीत। कल सुबह 9 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुबह 9:30 पर। फिल्म होगी एन इवनिंग इन पेरिस। कल सुबह 10 बजे कार्यक्रम गुलशन में आप सुनेंगे शीर्षक फिल्मी गीत। शीर्षक होगा प्यार। कार्यक्रम गुड़दुम में लोकनाथ वैष्णव और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत कल सुबह 10:30 पर। कल सुबह 11 बजे कार्यक्रम एक ही कलाकार। कलाकार होंगी अभिनेत्री रीना रॉय। विभिन्न प्रदेश के लोकगीतों का कार्यक्रम सबरस कल सुबह 11:30 पर। कल दोपहर 12 बजे कार्यक्रम झुमझुमा में सुनिएगा मोतीलाल और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार कल दोपहर 12:30 पर। कल दोपहर 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम कला और कलाकार कल दोपहर 2:30 पर। कल शाम 5:10 पर होगा युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हल्बी बोली में। गोंडी समाचार बुलेटिन कल शाम 6:30 पर। कल शाम 7 बजे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव कल शाम 7:21 पर। कल रात 8 बजे कार्यक्रम कूड़े फूल में सुनिएगा नीलू राम और साथियों के स्वर में भतरी लोकगीत। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन का जयगोठ कल रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी शुक्रू राम यादव की। कल रात 9:15 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। शासकीय योजनाओं की जानकारी का कार्यक्रम ओवाट में कल रात 9:30 पर। कृषि विभाग की योजनाएं विषय पर अजय कुमार मीरी की बलवीर सिंह कच्छ से भेंटवार्ता। कल रात 10 बजे सुनिएगा सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी होंगे श्री मंधाराम नाग और श्री बलदेव मौर्य। संपादक बलवीर सिंह कच्छ। पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा कल रात 10:30 पर। यह थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में।
1: रेडियो केंजवाल और मी सोबेकुन सेवा जोहार। इदेक दिया ता कार्यक्रम तसंग नाना माखनलाल सोरी केंजवाल और नेंड मावा इत कार्यक्रम पारदर्शिता और विश्वासता पुनः

0: पहुंचता भरोसेमंद साधन बने मात्ता। मुन्ने इचू इचू बूतों तक आजे सरकारी कार्यालय ना चक्कर लगा किसोक मत्तोर। आवेदन ना स्थिति पुंदन काजे टेम लाग सोक मत्ता। और बनेटे बने जानकारी पुटवेक जनता परेशान आसोक मत्तोर। लेकिन सेवा सेतु ऐप यू सपाय बूतों कुन ज्यादा सरल किसीता। इदेक मानेक अपना मोबाइल ले सरकारी योजना प्रमाण पत्र शिकायत और जन सेवा ता जानकारी एत परिंतोर। संगे आवेदन गला किस परिंतोर। ईद एपता सबले हजोर इंदेना सरलता आंध। नाटेनोर्क माने गला ईद एपतुन आसानी ले उपयोग की परानूर। लयोर्क जवान सियान सपाय मानेक नकाजे ईद एप सुविधाजनक साबित आंता। सेवा सेतु एपता माध्यम ले आय जाति निवास प्रमाण पत्र ले पैसी राशन कार्ड और नेलिता नकेलता संगे हाएंग सौक 41 ले आगेर सेवा उन्दी डिजिटल प्लेटफार्म परो उपलब्ध मनता। छत्तीसगढ़ ता जूना ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल परो केवल 46 सेवा पुटसोक मत्ता। अगाय पूना और नेकाय बेस सेवा सेवा सेतु प्लेटफार्म परो इदेक हैंग सौक 41 सेवा लाइव मनता। ईद पूना सेवा ते 54 पूना सेवा ता संगे और विभाग ता मून सौक 29 रीडायरेक्ट सेवा कुन एकीकरण की ले आता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इतोर की सेवा सेतु ऐप ता माध्यम ले आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ता उपयोग कीसी डिजिटल नागरिक सेवा कुन और ज्यादा मजबूत और प्रभावी आयनु। और केतोर की इदेक व्हाट्सएप ता माध्यम ले गला सेवा ता जानकारी सहज रूप ले अवही आयाल। और विश्वास तोहतूर की सेवा सेतु ऐप राज्य ते सुशासन पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित प्रशासन तुन और लाव हियाल। ईद परियोजना ता संचालन राज्य स्तर परो चिप्स तिकेडा की आंता। जबकि जिला स्तर परो कलेक्टर ता तलपति ते डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी ता माध्यम ले इदेना प्रभावी क्रियान्वयन कियाल तोर। पूना प्रणाली ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधार व्हाट्सएप और भाषिड़ी लहकता उन्नत तकनीकी ता एकीकरण उपयोग कीले आता। इदेन संगे आधार ई KYC डिजीलॉकर ई प्रमाण और उमंग लहकता प्लेटफार्म ता संग एकीकरण कीस सेवा कुन और नेकाय सरेल सुरक्षित और सुलभ कीले आता। सेवा सेतु ते ट्रेजरी और ई चालान ता एकीकरण कीले आता। ईद ले जनता उन्दी प्लेटफार्म परो ऑनलाइन भुगतान कीसी तुरते डिजिटल रसीद पैस परानूर। संगे DBT ता माध्यम ले योजना ता पैसा सीधा लाभार्थी ना बैंक खाता ते लोही आयाल। वेहना रियल टाइम ट्रैकिंग SMS और व्हाट्सएप ता माध्यम ले संभव आयाल। पोर्टल ते QR कोड आधारित प्रमाण पत्र सत्यापन क्लाउड स्टोरेज डिजिटल सिग्नेचर रियल टाइम डैशबोर्ड और MIS रिपोर्टिंग लहका ता सुविधा जोड़े कीले आता। ईद पोर्टल 22 भारतीय भाषा ते उपलब्ध मनता। राज्य ते यू सेवा ना पक्की लेवाते अवहन काजे 800 ले आगेर लोक सेवा केंद्र 1000 ले आगेर च्वाइस सेंटर और 15000 ले आगेर कॉमन सर्विस सेंटर बूतो कीनता। ईगा ले आम जनता आसानी ले यू सेवाक ना नफा एत परानूर।
1: आप सुन रहे थे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हिंदी भाषा में।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपकी पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे।
1: आज की शाम आपके साथ होंगे हम, यानी मैं शिवानी राव
0: और मैं ग्लोरी विनीशा नाथ। आप सभी युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को हमारा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार।
1: अच्छा ग्लोरी,
0: हाँ
1: तुम्हें पता है आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं?
0: हाँ बिल्कुल शिवानी, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसमें पिछले कुछ वर्षों में हमारे जीवन और काम करने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है, वर्क फ्रॉम होम जीवन।
1: हाँ, और हम पहले जहाँ लोग रोज सुबह तैयार होकर दफ्तर जाया करते थे, वही अब हम घर का एक छोटा सा कमरा ही ऑफिस बन चुका है। लैपटॉप, इंटरनेट और मोबाइल ने काम करने की दुनिया को बिल्कुल ही नया रूप दे दिया है।
0: सही कहा तुमने शिवानी, वर्क फ्रॉम होम ने लोगों को सुविधा तो दी है, लेकिन इसके साथ कई नई चुनौतियां भी सामने आई है। कुछ लोगों के लिए यह वरदान साबित हुआ तो कुछ लोगों के लिए तनाव का कारण भी बना।
1: ग्लोरी,
0: हाँ
1: अगर सुविधाओं की बात करें तो सबसे पहले समय की बचत दिखाई देती है।
0: हाँ शिवानी,
1: पहले लोगों का काफी समय ट्रैफिक और यात्रा में निकल जाता था, लेकिन अब वही समय परिवार या खुद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों?
0: हाँ बिल्कुल शिवानी, और खासकर महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम कई मायनों में मदद साबित हुआ। वे घर और काम दोनों को बेहतर तरीके से संभाल पा रही है। कई लोगों अपने छोटे शहरों में रहकर भी बड़ी कंपनियां के लिए काम कर रहे हैं।
1: ये तो सच है, तकनीक ने दूरियों को कम कर दिया है। अब मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, फाइलें डिजिटल रूप में साझा की जा रही हैं,
0: बिल्कुल,
1: और पूरी टीम अलग अलग शहरों में रहकर भी साथ काम कर रहे हैं।
0: लेकिन शिवानी, हर चीज के दो पहलू होते हैं। वर्क फ्रॉम होम में कई लोग मानसिक तनाव और अकेलापन का भी सामना कर रहे हैं। दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहना, लगातार मीटिंग्स और काम का दबाव स्वास्थ्य पर असर डालता है।
1: हाँ बिल्कुल, और बच्चों की पढ़ाई, घर के काम और ऑफिस की जिम्मेदारियाँ सब एक साथ होने पर कई बार व्यक्ति थकान महसूस करने लगता है। क्यों?
0: हाँ शिवानी, इसीलिए वर्क फ्रॉम होम में अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। समय का सही प्रबंध, बीच बीच में आराम और परिवार के साथ बातचीत मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
1: और पता है ग्लोरी,
0: हाँ
1: कि मैंने कई लोगों को यह कहते सुना है कि वर्क फ्रॉम होम ने हमें अपने शौक को पूरा करने का मौका दिया है।
0: हाँ
1: कोई संगीत सीख रहा है, कोई योगा कर रहा है, तो कोई अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पा रहा है। क्यों?
0: ये बहुत अच्छी बात है शिवानी। वास्तव में अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो वर्क फ्रॉम होम जीवन का अधिक संतुलन और आरामदायक बना सकता है।
1: तो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम केवल काम करने का तरीका नहीं, बल्कि एक नई जीवन शैली बन चुका है। इसमें हमें सुविधा भी है, जिम्मेदारियां भी हैं और चुनौती भी।
0: ज़रूरत इस बात की है कि हम संतुलन बनाए रखें ताकि काम के साथ साथ रिश्ते, स्वास्थ्य और खुशियाँ भी बना रहे।
1: दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद।

0: के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं आज की शाम और क्या है खास।
3: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, सामान्य ज्ञान से जुड़ी कुछ बातें और साथ ही होगा वार्ता।
2: जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और जानते हैं कि पहले गीत की फरमाइश किसने की है। श्रोताओं, आप है अशोक नगर बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके। ड्राइवर कॉलोनी निजामाबाद से आप है शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले। साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप है हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतेक बीरक और मीका बीरक। साथ ही रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।
3: सेक्टर 67 मोहली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिका मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, शुभचंद्र बजाज। अगनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता राव, कृष्णा राव, ईश्वर राव, रोजा हैवी और सोम शंकर राव। आप सभी ने सुनना चाहा है ये गीत फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से। श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में गीतकार है इरशाद कामिल, संगीतकार है विशाल शेखर। तो दोस्तों आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, अगला गीत सुनने की फरमाइश की है आप सभी ने सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम रेशमा और आदिपा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्ल्यू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार, सुभाष वार्ड भातापारा से आप हैं अमृता यादव, पार्वती यादव, ईश्वरी यादव, लक्ष्मी यादव, कुमारी प्रेरणा डिम्पी यादव, गौतम नगर जिला नांदेड़ से आप हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले,
1: महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, सदीम बाठे, अमूल्य बाठे, वैशाली बाठे, मोती गार्डन भट्टापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया, युग कुमार झेरिया, आप सभी ने सुनना चाहा है ये गीत फिल्म डर से। उदित नारायण की मधुर आवाज में गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं शिव हरे। तो दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, कुछ पल के लिए देते हैं विराम कार्यक्रम आपकी फरमाइश को और अब जानेंगे सामान्य ज्ञान से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी रोचक सामान्य ज्ञान की बातें।
1: ग्लोरी, तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डाकघर किस देश में है?
0: शायद अमेरिका में।
1: नहीं, इसका जवाब है भारत। हमारे देश में 1.5 लाख से भी ज्यादा डाकघर हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं।
0: वाह, सच में गर्व की बात है शिवानी। और क्या आपको पता है कि भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया था?
1: हाँ बिल्कुल, शुरुआती दिनों में वैज्ञानिकों के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, इसीलिए रॉकेट के हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ी से ले जाया जाता था। आज वही भारत अंतरिक्ष में नया इतिहास बना रहा है। क्यों?
0: वैज्ञानिकों को मिस्र के पिरामिड में हजारों साल पुराना शहद मिला था जो अब भी खाने योग्य है।
1: आपको पता है ग्लोरी, नीलगिरी पहाड़, इन पहाड़ों को यह नाम यहाँ खिलने वाले नीले रंग के फूलों की वजह से मिला, जो तमिलनाडु के केरला और कर्नाटका राज्यों में फैली हुई हैं।
0: मुन्नार अपनी हरियाली और फूलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ 12 साल में एक बार खिलने वाला नील कुरंजी फूल बहुत खास माना जाता है।
1: दोस्तों, आज सामान्य ज्ञान में बस इतना ही। लौट चलते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश की ओर।
0: आप सभी ने सुनना चाहा है ये गीत फिल्म बॉर्डर से, सोनू निगम और अलका याग्निक की मीठी आवाजों में। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने।
1: इस गीत को सुनने की फरमाइश की है आप सभी ने। श्रोताओं के नाम है चंडीगढ़ सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा यदु, लक्ष्मीना यदु, लालापुर से लाकेश यदु और समीर यदु, बड़ा बाबू गांव से देवेंद्र ताती, राकेश कुमारी, निशा, प्रकाश, देवेंद्र ताती ने, और पंजाब से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन, तानिया।
0: साथ ही जिला खंडवा लाहौरी से आप है राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से आप है विजय वैद, रानी महिमा और नीतू वैद। ग्राम बुरगहन छत्तीसगढ़ से आप है राम दुलारी प्रजापति, राम शरण प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशिकांता प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप है राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश कार्तिक और युवराज राउत। आप सभी को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: श्रोताओं, गीतों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल सुनेंगे कार्यक्रम वार्ता, डिजिटल इंडिया और युवा विषय पर। वार्ताकार है रुखसार बानो।
3: डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक मुहिम है जिससे भारत में लोगों को टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया का ज्ञान मिल सके। इस समय तक हम डिजिटल दुनिया से बहुत दूर हैं क्योंकि अधिकतर लोग ऑनलाइन दुनिया से अभी कोसों दूर हैं। इसी वजह से इस मुहिम को शुरू किया गया है। देश के लोगों के बेहतर विकास, वृद्धि के लिए और रूपांतरित भारत के लिए यह एक बहुत ही प्रभावशाली योजना है। सुशासन और अधिक नौकरियों के लिए भारत को डिजिटल विस्तार देना इस योजना का लक्ष्य है। डिजिटल इंडिया का मुख्य लक्ष्य सभी सरकारी सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट से जोड़ने का काम शुरू किया गया है। सरकारी सेवा और लोगों के बीच की दूरी के अंतर को मिटाने के लिए डिजिटलीकरण आवश्यक है। किसी भी दूसरे देश से ज्यादा वृद्धि और अच्छे भविष्य के लिए भारत में डिजिटलीकरण की बहुत अधिक जरूरत है। इससे सिर्फ भारतीय लोगों का डिजिटल लेन देन ही नहीं बढ़ेगा बल्कि देश में भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा। डिजिटल इंडिया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश के हर विभाग व रिकॉर्ड को एक ही कड़ी से जोड़ना है, और वह कड़ी है देश की इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम की कड़ी जो काम की गति को बढ़ाने में सहायता करती है। सरकार द्वारा इस अभियान को 2019 तक पूरे भारत में डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के अनुसार ग्रामीण स्थानों को तेज इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। डिजिटल इंडिया से कागजों में लिखा पढ़ी का समय भी बचेगा और कार्यालय में लोगों की लंबी कतारों में भी कमी आएगी। डिजिटल लॉकर व्यवस्था लागू करने को यह मुमकिन बनाएगा जिसके परिणाम स्वरूप रजिस्टर संग्रह के माध्यम से ई शेयरिंग सक्षम बनाने के साथ ही भौतिक दस्तावेज को कम करेगा जिसके द्वारा कागजी कार्रवाई को घटाया जाएगा। यह एक प्रभावशाली ऑनलाइन मंच है जो चर्चा, कार्य करना और वितरण करना जैसे विभिन्न दृष्टिकोण के द्वारा शासन प्रणाली में लोगों को सम्मिलित कर सकता है। यह सरकार के द्वारा विभिन्न ऑनलाइन लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करेगा। यह किसी भी स्थान से अपने दस्तावेज और प्रमाण पत्र को ऑनलाइन जमा करना लोगों के लिए संभव बनाएगा जो शारीरिक काम को घटाएगा। ई हस्ताक्षर संरचना के द्वारा नागरिक अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन हस्ताक्षरित करा सकते हैं। ई अस्पताल के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वास्थ्यपरक सेवाओं को आसान बनाया जा सकता है। इसके बहुत से उदाहरण हैं जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर से मिलने का समय निश्चित करना, फीस जमा करना, ऑनलाइन लाक्षणिक जांच करना, खून जांच करना आदि। यह अर्जियां जमा करने, प्रमाणीकरण प्रक्रिया, अनुमोदन और संवितरण की स्वीकृति के द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के लिए लाभ उपलब्ध कराता है। डिजिटल इंडिया अभियान एक बड़ा मंच है जो अपने नागरिकों के लिए पूरे देश भर में सरकारी और निजी सेवाओं के प्रभावशाली वितरण को आसान बनाता है। भारत का नेट कार्यक्रम भारत देश के लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ेगा। पूरे देश में टेलीकॉम कंपनी के द्वारा बड़े पैमाने पर वाईफाई हॉटस्पॉट को फैलाने की योजना बनाई गई है। कनेक्टिविटी से जुड़े हुए सभी संबंधित मुद्दों को संभालने के लिए ब्रॉडबैंड हाईवे है। सभी शहरों, नगरों और गांवों में ब्रॉडबैंड हाईवे की खुली पहुंच माउस के एक क्लिक पर विश्व स्तरीय सेवाओं की उपलब्धता को मुमकिन बनाएगा। जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया अभियान के लाभ हैं, उसी प्रकार से डिजिटल इंडिया के नुकसान भी है। डिजिटल इंडिया मिशन से हानि तो कुछ नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिजिटल इंडिया का नुकसान गरीब और कम पढ़े लोगों को होगा, क्योंकि उन्हें यह तकनीक समझने में और इससे अभ्यस्त होने में कुछ समय लग जाएगा। आइए मैं आपको अब बताती हूँ डिजिटल व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य। अगर यह योजना भारत में पूरी तरह से सफल हो जाती है तो इससे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। इससे लोग ऑनलाइन की सभी सेवाओं को उपयोग कर सकेंगे, जिससे देश में उनकी पूंजी और अधिक सुरक्षित रह सकेगी। डिजिटल इंडिया मुहिम के अनुसार भारत में छोटे गांव से लेकर शहर तक सभी जगह हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी, जिसकी सहायता से लोग ऑनलाइन की सुविधाओं का उपयोग करना सीखेंगे और उसे जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे। आज के समय में अधिकतर कार्यालयों में इंटरनेट के माध्यम से काम हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन काम शुरू नहीं हुआ है। इस मुहिम के अनुसार सभी सरकारी संस्थाओं में बहुत ही जल्द सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ऑनलाइन सेवा की सहायता से लोगों को ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा। सरकार ने इस मुहिम के साथ साथ आधार कार्ड से मोबाइल नंबर, पैन, बैंक अकाउंट, जीवन बीमा जैसी सेवाओं का बहुत पहले ही जोड़ दिया है, जिसकी मदद से अब हर भारतीय की पहचान सही ढंग से हो पाएगी और लोग इन सेवाओं को आधार से लिंक होने के कारण आसानी से उपयोग कर पाएंगे। अब नौकरी के लिए और स्कूलों में आवेदन देना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल रूप से लिंक किया जा रहा है। इस योजना को सफल बनाने के लिए सबसे पहले सरकार ने आधार की मदद से लोगों का बायोमेट्रिक डाटा लिया, जिससे उनकी अद्वितीय पहचान मिल सके। अद्वितीय पहचान मिलने के बाद भारतीय नागरिकों से सभी सेवाओं जैसे मोबाइल नंबर, पैन, बैंक अकाउंट, जीवन बीमा, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। उसके बाद आधार की सहायता से लोगों को सभी सुविधाएं दी जा रही है। इससे लोगों की पहचान सही प्रकार से हो पा रही है और साथ ही बीच में भ्रष्टाचार करने वाले कम हो गए हैं। आज आप घर बैठे आधार की मदद से मोबाइल सिम खरीद सकते हैं अथवा पैन अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसी कई सेवाएं हैं जो ऑनलाइन KYC और OTP की सहायता से कुछ ही मिनटों में पूरे हो रहे हैं, जिनके लिए कभी लोगों को मेहनत और इंतज़ार करना पड़ता था। आज के समय में लगभग सभी भारतीय बैंकों में ऑनलाइन बैंकिंग और ATM की सुविधा है, जिसकी सहायता से लोग बैठे बैठे सभी पैसों का लेन देन कर सकते हैं। अब पैन को भी आधार से जोड़ा जा रहा है, जिसकी मदद से कोई भी आयकर चोरी या घोटाला नहीं कर पाएगा, और साथ ही लोग TDS भी घर बैठे भुगतान कर सकते हैं। अगर आपको बिना बाहर गए सस्ते दामों में सामान मिलेगा तो आप ज़रूर खरीदेंगे। अब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर घर बैठे सामान खरीद सकते हैं और अपना समय और पैसा बचा सकते हैं। अब आप डिजी लॉकर की सुविधा से अपने सभी ज़रूरी दस्तावेजों को वेरीफाई करके मोबाइल फ़ोन में रख सकते हैं। इससे आपको दस्तावेज गुम जाने का खतरा भी नहीं रहेगा। सरकार सभी डिजिटल सुविधाएं और सेवाएं लोगों के लिए शुरू कर रही है। ऐसी स्थिति में हर भारतवासी का कर्तव्य है कि वह डिजिटल लेन देन का इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि यह सरल, सुरक्षित और सफल जीवन की शुरुआत है। इससे हम लोगों का समय भी बचता है और समय का मूल्य सभी को पता है। आज की दुनिया में पैसों से ज्यादा समय का मूल्य होता है। धन्यवाद।
4: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वार्ता डिजिटल इंडिया और युवा विषय पर रुक्षार बानो से।
2: शिवानी तुम्हें पता है डिजिटल इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं, यह युवाओं के सपनों का प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर डिजिटल पेमेंट तक।
4: बिल्कुल, और आज के युवा टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
2: अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म मोहब्बते से, लता मंगेशकर और उदित नारायण की मीठी आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने।
4: इस गीत को सुनने की फरमाइश की है आप सभी ने बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशम, अदिशा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन कुमारी, कुमारी डब्लू डोमने। जेल रोड मथुरा से वासीम अकरम ला बेलदार ने। सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार, अमित कुमार, अमीन, गिरीश करण, युवान धापेश यादव ने।
2: घंटाघर चौक खंडवा से आप है संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया।

0: चारमीनार चौक गणेश पंडरिया से आप है दरमियान लाल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से आप है हरीश कमल सेतपाल, भूमिका सुशीला दादी, देवरी भाटापारा से आप है गन्नूलाल रजक, के आर साहू और अश्विनी वर्मा गणेश मिस्त्री। आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए हमें अनुमति, मुझे शिवानी राव
1: और ग्लोरी विनीशा को
0: नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी हिंदी भाषा में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स,

0: ब्रिटेन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रूपये का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही समय में आप छत्तीसगढ़ी और संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: समाचार छत्तीसगढ़ी में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री है पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत भर लोगन मल्ले ईंधन बचाए और विदेशी उत्पाद के प्रयोग कम करे के करीन विनती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए है चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिला भर 3 मई के होए नीट यूजी परीक्षा ला रद्द करे के फैसला ले है। और दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज संझा सिलेंडर में विस्फोट होए ले एके परिवार के 4 जिन लोगन के मौत। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत पर लोगन मन ले ईंधन बचाए और विदेशी उत्पाद के प्रयोग कम करे के विनती करे है। गुजरात के बड़ोदरा में काली एक ठिन जनसभा में प्रधानमंत्री है पेट्रोल और डीजल के उपभोग कम करे और वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन कक्षा और वर्चुअल बैठक जैसन कोविड दौर के उपाय अपनाए के अपील कर दोहरिन। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव घलो पश्चिम एशिया संकट ले उपजे हालात के बीच लोगन मल्ले मदद की अपील करे है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए है चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिला बर 3 मई के होए नीट यूजी परीक्षा ला रद्द करे के फैसला ले है। एनटीए है बतैन कि सरकार है पेपर लीक के आरोप मन के पूरा जांच भर मामला ला केंद्रीय

0: अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ल सौंपे के फैसला लिहे। एनटीए ह कहिन कि परीक्षा बर नवा तारीख अलग ले अधिसूचित करे जाही। पंजीकरण विवरण उम्मीदवार के जानकारी और 3 मई के परीक्षा बर चुने गए परीक्षा केन्द्र वैसने रही। एजेंसी ह कहिन है कि दोबारा परीक्षा बर और पंजीकरण कराए के जरूरत नहीं पड़े और परीक्षा शुल्क घलो नहीं लगाए। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाते। मौका में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में राखे गए कार्यक्रम में 15 जिन नर्सिंग पेशेवर ले जुड़े नर्सिंग के क्षेत्र में बढ़िया कामकाज पर राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिन। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्स मिडवाइफ्स सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक मल्ला देगी। उन्हें आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौका में छत्तीसगढ़ में घलो कतकोन कार्यक्रम हुआ थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रायपुर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में रखे गए कार्यक्रम में नर्सिंग संवर्ग के पदनाम में परिवर्तन करे के घोषणा करी। नर्सिंग सिस्टर मल्ला अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जाने जाही और स्टाफ नर्स के नाव नर्सिंग ऑफिसर हो ही। राज्य शासन प्रदेश में चरचरावत गर्मी ल देखत स्कूल मन भर गर्मी के छुट्टी घोषित करे जाए के बावजूद कुछ एक प्राइवेट स्कूल मन डहर ले ए बेरा कक्षा लगाए जाते। एला शासन गंभीरता लेवत अपन आदेश के उल्लंघन माने हैं। लोक शिक्षण संचालनालय शिक्षा विभाग के जम्मो संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी मल्ला चिट्ठी जारी करके ऐसन प्राइवेट स्कूल मन के खिलाफ कार्रवाई करे बर कहे है। ए बारे में बिलासपुर उच्च न्यायालय घलो एक ठिन याचिका दायर करे गई रही से जिला हाईकोर्ट संज्ञान में ले है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान कालीले छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरा में रही। अपन प्रवास के दौरान उमन ग्रामीण विकास मंत्रालय को तिले चलाए जात आने आने योजना मन के समीक्षा करी। संगे संग ग्रामीण विकास ले जुड़े जनप्रतिनिधि अधिकारी और हितग्राही मन ले गोटबात करी। श्री पासवान विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ले जुड़े तैयारी और ग्राम पंचायत मन में चलाए जात ग्रामीण विकास के बारे में घलो जान वाली ही। अपन प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्व सहायता समूह मन के माइलोगिन और आने आने योजना मन के हितग्राही मन ले गोट बात करी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा रोड में न्यायिक कर्मचारी मन बर बनाए जात आवासीय परिसर और मरवाही में नवा सिविल कोर्ट भवन बनाए के भूमि पूजन करी। ए मौका में मुख्य न्यायाधीश जिला जज और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मन ला निर्देश दिन है कि जम्मू प्रस्तावित काम ला तय करे गए मापदंड के मुताबिक कराया जाए। प्रदेश में नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होए के संग लाउडस्पीकर जैसन यंत्र के प्रयोग पर दिशा निर्देश जारी करे गए है। जौन क्षेत्र में चुनाई होइया है वहां रतिहा 10 बजे ले बिहनिया 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगा दे गए है। चुनावी सभा और प्रचार वाले गाड़ी मन में लाउडस्पीकर लगाए पर सक्षम अधिकारी ले अनुमति लेना जरूरी होगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो 5 समाचार को थी। दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज संझा सिलेंडर में विस्फोट होए ले एके परिवार के 4 जिन लोगन के मौत हो गए। इमा 1.5 साल के 1 जिन नोनी घलो शामिल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर बताइन कि कपरी रोड स्थित एक ठिन मकान में 60 सर्किट की स्थिति आगे लग गई। आगे के चपेट में आए ले घर में रखे गैस सिलेंडर फट गए और आगे पूरा घर में फैल गए। घर में आगे लगे की स्थिति यहां रहैया परिवार के मनखे मन बाहर नहीं निकल सकिन और जिंदा जल गए। पुलिस मामला की जांच करत है। जांजगीर चांपा जिला के धुरकोट गांव में कलिंदर खाए के बाद 1 जिन लड़का के मौत और 3 जिन आने लड़का मन के बीमार होए के मामला आगुआ है। बीमार लड़का मन के इलाज जिला अस्पताल में चलत है और उखर हालत सामान्य बताया जात है। प्रशासन कलिंदर के सैंपल ला जांच पर भेज दे है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लोगन मन के स्वास्थ्य की जांच करत है।

रायपुर पुलिस ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्कर मन के खिलाफ बड़का कार्रवाई करे हे। महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिला मन में नाकेबंदी के दौरान फेरी लगा के कपड़ा बेचे के आड़ में करे जात अंतर्राज्यीय तस्करी के खुलासा हो हे। पुलिस आरोपी मन के लिए 378 किलो ले ज्यादा के गांजा जब्त करे है, जेखर भाव बाजार में 1,98,00,000 रूपया बताया जात है। ये कार्रवाई में 11 ठीन गाड़ी जब्त करे गए है और पुलिस 12 झीन तस्कर मन घलो गिरफ्तार करे है। ये तस्कर मन कपड़ा के ढेर के बीच गांजा रख के ओडिशा ले मध्य प्रदेश जावत रहीन। नारायणपुर जिला में जिला सुरक्षा बल मन माओवादी मंडहार ले लुका के रखे गए 1,00,00,000 रूपया नकदी के संगे संग बड़ मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक जिनिस और रोजे काम में अवैया जिनिस बरामद करे है। जिला के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया सुरक्षा बल मंडहार ने करे गए कार्रवाई के जानबादी बात बताई कि बछर 2025-26 में जिला में 270 हथियार के रिकवरी हो है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव गंवई के सड़क मन के बढ़िया रखरखाव में पूरा देश में दूसर स्थान पाए है। मध्य प्रदेश के सीहोर में रखे गए योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य ला सम्मानित करीन। राज्य कोतिले पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और प्रमुख अभियंता के कटारे पुरस्कार लीन। प्रदेश में अब तक 32,000 किलोमीटर लंबा और 8,000 ले ज्यादा सड़क मन के नवीनीकरण करे जा चुके है। महासमुंद के जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ला गैस चोरी के मामला में निलंबित कर दे गए है। पाछू 9 मई के ए मामला के खुलासा करत पुलिस जिला खाद्य अधिकारी के संगे संग 3 झीन लोगन मन गिरफ्तार करे रहीन। आरोपी मन 6 ठीन एलपीजी गैस कैप्सूल टैंकर मन ले गैस चोरी करके ओला 80,00,000 रूपया में बेचे रहीन। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरा होए के मौका में अवैया 30 मई के रायपुर में पत्रकारिता मारतंड उत्सव मनाया जाही। ए बारे में रायपुर के प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल मन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले मिलके उमल्ला कार्यक्रम में शामिल होए के न्योता दिन। मुख्यमंत्री आयोजन के पोस्टर के विमोचन करीन। ए कार्यक्रम में बड़का पत्रकार, संपादक और मीडिया विशेषज्ञ मन शामिल हुईन। मौसम विभाग ले मिले जानबा के मुताबिक प्रदेश में काली एक दो जगह में हल्का वर्षा हो या गरज चमक के संग बूंदाबांदी हो के संभावना है। मौसम विज्ञानी आकाशवाणी समाचार ला बताएं कि प्रदेश में अवैया 4 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी हो सकते। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत पर लोगन मल्ले ईंधन बचाए और विदेशी उत्पाद के प्रयोग कम करे के करीन विनती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिला पर 3 मई के होए नीट यूजी परीक्षा ला रद्द करे के फैसला ले है। और दुर्ग जिला के कुमारी थाना क्षेत्र में आज संझा सिलेंडर में विस्फोट होए ले एके परिवार के 4 जिन लोगन के मौत। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका वंदना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रिय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणा सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे 15 परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। अपि च इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रिय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे संस्थया सूचितं यत् छात्रहितं राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाल्याः विश्वसनीयता च रक्षितं एषः निर्णयः स्वीकृतः। संस्थया स्पष्टीकृतं यत् प्रश्नपत्र सम्बद्धानां आक्षेपाणां विस्तृत अन्वेषणार्थम् एषः विषयः केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणाय प्रेषितः। एतदर्थं संस्था पूर्ण सहयोगं प्रदास्यति तथा अन्वेषणाय आवश्यकानि साहित्यानि अभिलेखानि साहाय्यं च उपलब्धं करिष्यति। केन्द्रीय संस्थाभिः आरक्षक बलैः च सह समन्वयनान्तरं प्राप्त सूचनानां आधारेण एषः निर्णयः कृतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। गुवाहाटी नगरस्य खानापाड़ा स्थिते पशु चिकित्सा महाविद्यालयस्य प्रांगणे आयोजिते समारोहे राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रादापयत्।
1: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: ডক্টৰ শর্মা মহোদয়েন সহ অন্যে চত্বৰহ অপি মন্ত্ৰীমণ্ডলহ মন্ত্ৰিত্বেন শপথম স্বীকৃতৱন্তহ। তেষু ভাজপা দলস্য পক্ষতঃ রামেশ্বর তেলী अजंता नेयोग च असम गण परिषदः पक्षतः अतुल बोरा तथा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पक्षतः चरण बोरो च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् समारोहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अनेके केन्द्रीय मंत्रिणः तथा एनडीए शासित राज्यानां मुख्यमंत्रिणः अपि उपस्थिता आसन्। अनेन सह डॉ शर्मा असम राज्यस्य प्रथमः कांग्रेस रहितः नेता अभवत् यः अनवरतम् द्वितीयवारं मुख्यमंत्री पदम् अलंकृतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणां सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां सहभागी राष्ट्राणां च विदेश मन्त्रिणः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखाः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। सः अपि उक्तवान् यत् ते प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह अपि मेलनं करिष्यति। श्री जायसवालः अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां विदेशमन्त्रिणः परस्पर हितस्य वैश्विक क्षेत्रीय विषयेषु स्वविचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यन्ति।
2: 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक देशों का आपने जिक्र किया उनकी तरफ से कौन आएगा ये तो खैर उनको तय करना है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे आपको पता चल जाए कौन उनके नेतृत्व कर रहे हैं कौन लोग उसमें भाग ले रहे हैं।
0: अद्य अन्ताराष्ट्रिय परिचारिका दिवसः आचर्यते। अयं दिवसः आधुनिक परिचारिका व्यवस्थायाः संस्थापिकायाः फ्लोरेंस नाइटिंगल इत्यस्याः जन्मवार्षिक्याः उपलक्ष्ये प्रतिवर्षम् आचर्यते। रोगी परिचर्यायां सामुदायिक स्वास्थ्ये आर्थिक विकासे च परिचारिकाणां महत्वपूर्णां भूमिकां स्वीकृत्य अयं दिवसः आचर्यते। अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिय परिचारिका दिवसस्य विषयः अस्माकं परिचारिकाः अस्माकं भविष्यम् इति। सशक्ताः परिचारिकाः जीवनानि रक्षन्ति इति उपविषयः अपि निर्धारितः अस्ति। एतत् वैश्विकस्तरे परिचर्या व्यवसायिकानां कृते उत्तम सहयोगस्य संरक्षणस्य संसाधनानां च आवश्यकतां प्रकाशयति। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपतिभवने आयोजिते कार्यक्रमे पञ्चदशभ्यः परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है रतनी और साथियों के स्वर में जगार गीत।

रतनी और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे जगार गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: समाचार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद कक्षाएं लगाने वाले अशासकीय स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सिंग स्टाफ का पदनाम बदलने की घोषणा की। नर्सिंग सिस्टर अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
8: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
7: इधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात के बीच लोगों से सहयोग की अपील की है।
0: प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से वैश्विक परिदृश्य पर आह्वान किया है, पेट्रोल डीजल रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम हो, ऐसे कुछ आग्रह प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश पर जब भी इस प्रकार की परिस्थितियां आती है वो देश के नागरिकों के सहयोग से ही उस पर अमल करना संभव होता है। निश्चित रूप से हम सब भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अमल करने की दिशा में बढ़ेंगे।
7: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने चिकित्सीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट UG परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। NTA ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। NTA ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए जाने के बावजूद कुछ अशासकीय संस्थाओं द्वारा वर्तमान में भी कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इस

0: प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश का उल्लंघन माना है। लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षा विभाग के सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस संबंध में बिलासपुर उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर के डॉ भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में नर्सिंग संवर्ग के पदनाम में परिवर्तन की घोषणा की है। इसके अनुसार नर्सिंग सिस्टर अब नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी, जबकि स्टाफ नर्स का नाम नर्सिंग ऑफिसर होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान कल से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे, साथ ही ग्रामीण विकास से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। श्री पासवान विकसित भारत जी रामजी अधिनियम से संबंधित तैयारियों और ग्राम पंचायतों में संचालित ग्रामीण विकास गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्व सहायता समूहों की महिलाओं और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के पिंडरा रोड में न्यायिक कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे आवासीय परिसर और मारवाही में नए सिविल कोर्ट भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने जिला जज और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज शाम सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 1.5 साल की एक बच्ची भी शामिल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि खपरी रोड स्थित एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया और आग तेजी से फैलने लगी, जिसके कारण घर के अंदर मौजूद परिवार के सदस्य बाहर नहीं निकल सके और जिंदा जल गए। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और 3 अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अनिता श्रीवास्तव ने बताया कि बिस्तर रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले के सारे तथ्यों का पता चल पाएगा।
1: जो 4 बच्चों ने कुछ तरबूज खाया था और रात में चिकन खाया था, तो उन 4 बच्चों को जिला अस्पताल जांजगीर लेके आए, तो उसमें रास्ते में एक बच्चे की मौत हो गई और 3 बच्चे यहाँ पे भर्ती थे, तो उसके लिए जांच की टीम तुरंत ही वहाँ पे गांव गई उनके, और वहाँ जाके और बाकी भी बच्चों की जांच की। तरबूज में कुछ कीटनाशक किस चीज से पकाया था वो नहीं जानते। बाकी जैसे कि ये पता चला है कि वो तरबूज एक दिन पहले का कटा हुआ था और उसके बाद शाम को बच्चों ने खाया, जो कि पूरा दिन इतनी तेज गर्मी है तो उससे सड़ भी सकता है। तरबूज का सैंपल है वो फूड डिपार्टमेंट वालों लेके गए हैं और दूसरा रिपोर्ट हमारे फॉरेंसिक विभाग से आएगी, तभी पता चलेगा कि ये किस कारण से हुआ है।
0: इस बीच बच्चे का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि मृत बच्चे का बिस्तर सुरक्षित रखा गया है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए करीब 1 करोड़ रुपए नकदी सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि हाल के महीनों में जिले में 270 हथियारों की रिकवरी हुई है।
2: 47 3 SLR, 2 303, 315 है, बहुत सारे मोर देन 250-300 लाइव राउंड्स हैं और साथ ही साथ अन्य दैनिक उपयोगी सामान भी मिले। ड्यूरिंग ऑपरेशन डंप से कैश रिकवरी भी हुई, तो 2 जगहों से कुल 1,01,64,000 रुपया जब्त हुआ है। ये पूरी कार्रवाई में STF नारायणपुर DRG हमारे BSF ITBP का एक संयुक्त योगदान रहा।
0: रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन

0: शिया के तहत गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिलों में संयुक्त नाकेबंदी के दौरान फेरी लगाकर कपड़ा बेचने वालों की आड़ में की जा रही अंतर्राज्यीय तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों से 378 किलो से अधिक का गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1,98,00,000 रूपये बताई गई है। कार्रवाई में 11 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 12 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कपड़ों के ढेर के बीच गांजा रखकर ओडिशा से मध्यप्रदेश ले जा रहे थे। महासमुंद के जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव को गैस चोरी के मामले में सम्मिलित पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। बीते 9 मई को इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने 6 एलपीजी गैस कैप्सूल टैंकरों से गैस चोरी कर उसे 80,00,000 रूपये में बेच दिया था। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्यप्रदेश के सीहोर में आयोजित योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सम्मानित किया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉ गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रदेश में अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।
1: प्रदेश में आज से लेकर आगामी 5 दिन तक मेघ गर्जन का एक्टिविटी 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ तेज हवा लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चलने की संभावना है और इसके साथ साथ हल्की वर्षा भी होने की चांसेस है। अधिकतम तापमान के बारे में बात करें तो अधिकतम तापमान आज से लेकर अगले 4 दिन तक लगभग 2-3 डिग्री का क्रमिक वृद्धि जो है वो एक्सपेक्टेड है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद कक्षाएं लगाने वाले अशासकीय स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सिंग स्टाफ का पदनाम बदलने की घोषणा की। नर्सिंग सिस्टर अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर कहलाई जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: हाँ राम राम ना धर्मू, राम राम।
1: हाँ राम राम ना कुरसो दादा, राम राम।
0: हाँ देखनु ये आजकल च बोलतो सन ये बेरा ने घाम पानी ने तो के बल दके सुन तू माए का पे जाए का पानी जल धर लीसी झोरा ने
1: सबके धरुक लागे दादा।
0: अरे पानी ने दक का तो पानी तो बने से पानी अरु ये पेज ना आलो तो आदमी ही डुकना है बोलतो सुनो ऐसे
1: बिल्कुल नहीं होने। और दक आजकल आम निकलू से नहीं तो असन बल लागे से कि तपलो असन
0: पूरा आज का आई रखालो सन।
1: हाँ हाँ
0: अरे तामी भेट गाठोलू और संगे संगे हम कार्यक्रम बट जाऊने कार्यक्रम बस्तर के स्वर सुनतो जमाए दादा दीदी सियान सजन भाई बहन मन के मैं कुरसो
1: और मैं धर्मो दोनों करो से
0: राम राम। पीला मन कसन भूल को
1: नहीं भूल को का है तो रेडियो कटा कटा बस लो नान नान पीला मन के बले हम दोनों जो बाटले खूबे खूबे माया और लाड़ बले
0: लाड़ बले। आरु आरु सत्य है ना दक बतर बेरा बलने समय ने आम के बिल्कुल असन वाट मन के ना लसन काई देह पाँच हो ना ले खा तो पी तो बोल काई बोले असन बीती मन का है कि लेख करूँ
1: लागे से
0: अरे माइमुर है से
1: माइमुर
0: अभी घाम चु होली अभी घाम गेले ने फिर लेहरा पानी मिले हुआ है बरसा हुआ है बोले ने ये सफाई के
1: लेख करूँ लागे
0: हाँ लागे से।
1: अरे अभी तक घाम ने असनी निक रुक बल नहीं हुए तो काई तुआल ना हले काई असन गम चासन बीते के मुंडे बांधो रन बल अच्छा लागे से और काई जुगल जुगे असन रुक राय मन रले ने उनसे खाले बोले हमके रुको
0: है हाँ समय से मैंने ठेबुक बोले हुए थे बिसाक बोले हुए थे अस्थिर लागू है
1: तो
0: और उन्हीं अस्थिर भीतर ने दाक आमचो बोले ने ये बोलू बस्तर जिला बोले ने बरन बरन चो तीज त्योहार मन होते रु गए ने संगे संगे बिया बर्पन मुले भी दक्षीस
1: हाँ।
0: बोले ने सपाय बटे उसने चे लागे कि कोनिच पारन गांव जाओ बिया मनो ऐसे
1: असन
0: लागे
1: लटपट में ये मंडी मन सर ली
0: था
1: फिर बिया मन
0: बिया मन से और ये सपाय के सपाय था ने कई बोले हो बिया बर्पन हो नाले मंडी बाजार हो नाले तियार मोहतुर हो सपाय था ने आम के ये आए कि आप लोग देह पाए नंगत रतोर होले ने ये सपाए बानी नंगत हो
1: नंगत रहे
0: नो आए
1: और ये सबके हमको ध्यान बल देते रहे और दक कितरो नंगत नंगत असन रुसुमा से असन रीति नीति मना से ये मन के बोले आम के अच्छा पूरे नेतो रहे
0: बिल्कुल नेतो रहे आरु आम चो जो रुसुम मना से बल ने एक कान कान दख लेने में गोटक सोर सुतर से बीती उनता ने रुसुम मन रहे से उनता ने बोलू गोट रहे से नो आए आले दक बाजार मंडी होलू कोनी बोले ने आम मचो गांव ने होली तो दूसर गांव ले बोले ऐसो सगा होत नाल आपला ने बोलू रिश्ते नाता होत ने आल कितलो सुंदर लागे से उनता ने भेटघाट हो से और दूसर बोल था ने बोले ऐसो तुम भेटघाट हो से गोटक सुत बोले ने सलाह सुतर बीती हो से नहीं भेटघाट होलू बोले मिलू बोलू
1: मिलू
0: उसने से बोले ने मंडी बोले बर कारण एक हार हुआ है तो पीला के बोले हरिक लागू है सियान के बोले लागू है सपाई के लागे
1: सपाई के लागे इसका और उसने आम चो हरिक चोई गोट के आमी गोठियाँ से तो आम के बोले असन थोड़े से ये सब चीज के बोले काय बोले इसमें कि ज्यादा हरिक उदिम ने आम के आप लोग उन चीज के नहीं भूलकता
0: रहे बोले नाम चो जो परंपरा बीती जो आम चो बोलू करतो खून तो भी जोन बजाय ये भी टीका है असन नी करवाना नी जानो तो फिर हमें भूल कुक
1: अल
0: तक मैं उन बीती तो उनथन गेले से नहीं ना जाने नहीं तो फिर मैं भूलक ली नू कितले सांगले बोले काय बीती है मैं बोले दे
1: और आमी एक रीति रुसुम मन के करूं दे तो हम चो पीला जिला मन बल दक दे उन मन बल सीख दे
0: सीख दे
1: तो उन मन चो पीढ़ी मन बल आगे एक नीति
0: आगे अल तक आगे जमाने बोलतो इतलो पढ़े लिखे तो नहीं रहो
1: नहीं रहो
0: मात्र एक गोटो सलाह सुतर नाले परिवार संग हो नाले आप लोग सगा संबंधित हो नाले काईची बले होने उनके बोलने ने असने बीती के आप लोग तीज त्योहार होली मंडी बाजार होली जत्रा पानी होली यही बीते मन सीखते रहो समझो
1: है
0: अले बेड़ा खड़ा दाए बोल बेड़ा खड़ा बोले कर काम करते समय बोल का गोटो के समय आ रहे से उन हिसाब ने कर तो रहा है ना ऐसा ना उसने बोल गोट होते रहे कि नहीं तो ये सपा बीती मन दादा दीदी मन आम चो जानकारी नंगत आए
1: नंगत
0: है का आम चो जीवन बल नंगत रहे थे और आम चो जो रुसुम जो रहे से उनके बोले हमें भूल कुक लाई नहीं हो ऐसे
1: एकदम सत्य गोट के बल दादा तो ये तो होली नगद गोट मन ने तो दक आम चल लगे और बोले नगद गोट मना से और असन झाला मन वाला से तो हुन मन के वाला में सुन लेता।
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तक का टैक्स तुन और सरल बना की तोड़। बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडो लेकिन 18% टैक्स की सितोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता। एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सितोड़। इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन।

0: समान 18% कर लागे दे, आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स उपरे एबर एक समान 18% कर होली से। ये काम ले कल पुर्जा बना तो कंपनी अरु घेन तो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे। एचे संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी उपरे 5% कर लागे दे, ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी, दुई चक्का बीती गाड़ी और तीन चक्का बीती गाड़ी उपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: हाँ धर्म, दखना आले तुझे मुंडरा बल बड़े दखा दे समझ लग बला आस मान कर राजी दीना दीन हिसाब ने बल्लें दख आपलान आपलान गीत के मन कर लो भाई बहन मन चिट्ठी पत्री तो पठारू ने आज सुना सुना उसी बोले तो उसने आले फिर आम ये मुंडरा के निस्काऊ कार ऐसा ये गीत की अमरा फिर पाचे ये मंच गीत कुरिया मंच बोल गाँव लोग बोल नाव सांगो और मन कर लो भाई बहन मंच बोल नाव सांगो वही लाले गीत के अमरा।

0: हाँ काय रे गीत रेली
1: आय काय
0: अरे गीत के कोण गाव रोत
1: एक गातो लोग रोत त्रिनाथ सिंह छत्री और हुंचो संगवारी
0: मन आले मन कर लो भाई बहन नाव मन के सांग वने ये मनात ग्राम नागरवाही विश्रामपुरी ले
1: हाँ।
0: भुवनेश्वर कश्यप

0: सोनधर कश्यप, दिनेश कश्यप, बालमन कश्यप, गंगाधर कश्यप, सुदुरुराम कश्यप, आर्यमंचो घरचो सपाय लोग।
1: हाँ, और ये संगसंगे सन्नुमर काम पकनार दरभाले, हिडमो कवासी कोड़ेनारले, पवन गावड़े वाहनपुरले, विजय बघेल ममड़पाल और दशरथ यादव कोयपालले।
0: हाँ, इतने लोग बोलू ये,
1: हाँ, ये गीत के
0: मन मन कर रहा। और फिर राम चलक तो चिट्ठी बोला से,
1: हाँ,
0: समय बोला से,
1: हाँ,
0: तो वाले फिर झटके हम रहा हूँ गीत के बोले।
1: हाँ।

0: हाँ, अलदक ने कहा ऐसे गीत रेली, एक गीत के गौरव रामनाथ
1: खालो तस्य
0: कश्यप अरे मंचो
1: परमचो
0: संगवारी
1: संगवारी
0: मन,
1: मल।
0: अले मन कर लो भाई मंच नाक सांगू।
1: और
0: यमनाथ ग्राम छिंदावाड़ा रामपाले, जुगल कश्यप, जलदेव कश्यप, सुसेन कश्यप, शंकर बघेल, सुखदेव कश्यप, बुधराम कश्यप अरे मंचो संगवारी मन।
1: संगवारी मन और द के संग संगे उर्मिला सेठिया, कार्तिक ठाकुर, जयमन नाग, छोटू नाग, कृष्णा सेने पा, ये मन सपायत गांव पुष्पाल ले,
0: पुष्पाल ले,
1: और ये मन जो घर चलो मन माली।
0: हाँ
1: तो
0: अलदक
1: ये
0: इतले,
1: कितरो नगद गीत बल रही ने,
0: हाँ
1: और
0: अलदक आमी फिर नहीं भूल लाऊं तो कसन बोले और बोले आम लगे आसे
1: हाँ मोटर
0: आले
1: बाजली
0: ओ
1: तले।
0: आले गीत के फिर हम रहते हुए।
1: आले।

0: तुका रसे गीत के
1: गीत
0: सुनाली
1: रेडी ना,
0: जरा,
1: अरे ये गीत के गौरव
0: शिवराम नाग अरुण चो संगवारी
1: संगवारी
0: मन।
1: मन
0: तो मन
1: आले।
0: कर लो लोग बन नाव के धरू था
1: हाँ
0: ये नानगुर गांव ले दयो नाग, संतोष नाग, अर्कित कुमार, शोभाराम और धीरेन्द्र।
1: ये मनात ग्राम दरभाले सुखमन नाग, जयदेव नाग, खूबराज, राजेश प्रधान, महादेव नाग, लक्ष्मण नाग, अरे मंचो संगवारी मन।
0: तो ये तो होली दादा ये हम
1: ए
0: चो
1: मन कर
0: लोकलहरी
1: लो
0: बल
1: भाई भाई
0: ने।
1: मंचो चिट्ठी पत्री बले अमरालू, गीत को गोविंद बले अमरालू
0: होली
1: ने
0: हाँ
1: मान।
0: दादा जा तो बेरा बोल
1: हाँ
0: होली।
1: मांतर मांतर का है कि देखा दादा दीदी मन कि हरि क्रले ने सब पाया है, काम धाम तो रहे से
0: हो सके
1: मांतर हरि क्रत्रो बल ने जुगे नंगता रा बीमारी सीमारी बल रले बल ने खिंडी गुच हुआ है
0: पूछो क्या।
1: कसन,
0: हाँ हाँ
1: और चिंता धोखा करते नहीं हो। आम चो गीत गीत बल सुना तो बीती उसने यार, सुन तो बीती बोले उसने,
0: उसने हाँ
1: और आपन मन बल देखा हरिक ने आते भी चिट्ठी पत्री पठाए साहब ने,
0: हाँ
1: तभी उन गीत गोविंद के हमें सुनाओ से, तो हुनी का जी काय रस्या नंगत रहता है, हंसी मजाक नहीं रहते रहा है, और आप लोग परिवार के आप लोग जीवना के नंगत चलाते
0: चलाता
1: रहे,
0: है।
1: तो ऐसे संग संग आले हम विदा धरते बे।
0: हाल तो ये दादा मोटर कट रख सकन मैं
1: हाओ
0: विदा धरे से।
1: हाओ
0: तो ऐसे संग संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी सियान सजन और संग जो रहा संगवारी मन के जा तो पूरे मैं धर्मू
1: मैं कुरसो
0: आमी दोनों करूं से राम
1: राम राम।
0: राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: કરશો દાદા?
1: જુહાર ધર્મભાઈ, જુહાર ના જુહાર. અરે તો આમી તો સાંભળું ને, કાય આજીના ભયંકર બોલતોસન ઘામ છેકતે રે. ભલે ને મેં કામ બાટે જાઉં રે, યાલે ના સાંગુ તો કામ બોલ કરું કે ના, એટલો ઘામ ને કાલે કામ કરું કે મેં
0: ભલે સાયકલ ચલા ચાતા દાદા, પસના ફૂટલી લટ પટ ને અમરા લેશે બે
1: હારું. આ સત્યા ના ઘામ ને ભલે દાદા દીદી મન એક બલ્લે ને કહે કે બિયાન પાર કામધામ કરતો રહે, 9-10 બજલે એ તર કસમ ભલે જુગી ઘામ ને રતોર બલનો હોય
0: બલનો હોય એ દક કે બિકા બિયાન પાર બલને જસન કી બડ બિયાન 4-5 બજે લે લોક મન મુરિયા ઉવાત ને
1: બેડા બુતા કે આરુ સાંજ બેરા બોલતો સન ઉની 4-4:30 બોલતો સન સાંજ બેરા બોલુ જાતો રહે ને ઉતરતી પહાર ને. તો વાલે આમી ભેટઘાટ થોલુ માંતર સંગ સંગ કાર્યક્રમ બડ જાવ ને. કાર્યક્રમ કિસાનવાણી સુનતોર જમાય કિસાન દાદા દીદી સ્યાન સજન મન કે મેં કુરસો
0: ઓર મેં ધર્મું
1: ખેતીબાડી હો ના કઈ બોલ કામ હો સમયાને કરતો બીતી નંગત આય કસન આલે ઘામ બેરા બોલું આલે મુંડે બેરા બોલ લેને આલે ઈલું આરુ પેચ ખાદલું આરુ ડંડી બિસાલું આર ગેલું આર કામ કરું બોલે કામ તો નહીં હોય જેટલો બોલ લેને ટડમ ને બોલ જાવા નહીં માંતર ના આયો કસન બોલે ઘામ અસન આય કી બોલે ને ના ઉન સમયા ને પાણી મીરું હોય સમય ને છાવ મીરું હોય સમયને સમયા ને કઈ બીતી મીરું
0: અસન બેરા કાય બીમારી મન જોટું
1: હા જોટે છે
0: આમી ભર ઘામ ને બુતા કરું છે અર અચાનક લે જાઉં પાણી પીઉં દેઉં છે તો અસન ને બોલે
1: એ બોલ નંગત નો
0: હોય નંગત નો હોય
1: નંગત નો હોય
0: કાય કેટલી દાય નિસા ચેગલો અસન હોય
1: દે હો હો
0: કાય બોલે તું માંસ ધરલો અસન હોય દે
1: ટડમ બીતી કામ કરતર નો બોલે સમયા દકુન બાતી દખા સબલે બોલે માયમુર બીતી એ હોય છે દાદા દીદી મન આપલો જીવના બલે આપલો દેહ પાય નંગત રહી દે તો કામ ધામ હોવું હોય આરું ખીંડી કાતક બીમારી સીમારી પડલું બોલે ને કેટલો આમ કે નુકસાન હોય જાય છે કેટલો પરેશાન હોય છો ઘર છો લોક બોલ હોય છો તારું ખુદ બોલ હોય છો નો આય આરું દક એ બી બોલતો હશે દક બેડા ખડા છો બોલતો સમયા તો માયમુર હોલી છે બોલું એ સમયાને કોની કોની દક ખદભાત છો બોલે કાયત કરું ને પારી હીરી ને એવું ઉનકી બોલ જતન કરું ને કોની ને ખાપસો તો નાંગર ફાર આશે તો ઉનકી જતન આશો કોની કોની આજકાલ તો ટ્રેક્ટર મન બોલે બોલીસ ને ઊંચું બોલ નાંગર આશે કે નહીં આય નો આય અરે ઉન તન ભરતો બીતી ઉન તેલ બોલ્યું વાત ઉન બોલે આશે કે સપાય કે આમ કે લેક કરું પડે કાય નો આય
0: ઓર જસન તું બોલીસ દાદા કે એ બે ઉસન માયમુર હોલી છે સમય ને તો અસન બેરા લોક મન જાસો થી બડ બ્યાન લે બુતા કર લાગસો ઉતા તો એ બે કાયા દક ઘામ કે દખુન અસન બલે કે પાણી બલે આજકાલ થોડે આટલી
1: આટલી
0: પાણી બલ નિયા તો આમ કે ઉનકે ધ્યાન ધરતો રહે ઓર ઉની હિસાબ ને આમ કે થોડે આપ લોગ ખેતી કે બલે
1: જતન રહે કરતો રહે પાણી બલે માયમુર સપાય કચ પાણી હોય એ બધા કામી તુઈ યાર સાયકલ ચલાવે બોલી સાયકલ તુઈ દુસર ગાંવ ને બોલ જા એ ગોટક પારાલ દુસર પારાલ જા દક કેટલો આમ કે બોલું પિયાસ લાગે છે ના કસન કસન લાગે છે પાણી તો આમ ખૂબ નંગત આય નું ઉસને આમ જો
0: ફસલ
1: બેડા બોતા બોલ લાગે છે સત્ય બોલીશ જોન ભાઈ બહેન મન લાગે બોર આશે ના આલે નલ આશે ના પાણી સુવિધા આશે તો ઉન મન તો આય નંગત આય માત્ર હુન પાણી બોલે સન સમયા ને ખીંડી ખાલી જ જાય
0: ખાલી જાય છે ઓર તક અચ્છા ગોટ કે તું સાંગલીશ કે એ બે પાણી ચો લાગુ છે આય
1: હાવ
0: ઓર અસન આમી ભલ ભલ ભલ પાણી કસની રકાઉં દે તો પકાઉં દે તું તો હું ભલે નંગત નહીં આય
1: નહીં હોય
0: તો ઉનકા જે આજકાલ જો નુઆ નુઆ ઉન્નત ઉવાટ માં નાશે જસન કે ડ્રીપ
1: પાણી છે
0: અસન ઓર કાય કાય અચ્છા લે મતલબ જોકે પાણી ખર્ચા બલ નહીં હો ઓર આમચો ફસલ બલ અચ્છા રહો
1: અચ્છા હો જોન થાને આમ કે પાણી ઉનકે મીરે દે હુની થાને પાણી જાઓ અસન આય નહીં તો બલતો ગોટી આય દાદાજી મારું એ બે છું દેખા બારતી ચો બેરા આય ઓર અસન સમય ને કાય કે આપુન કોની જી બોલે બોલ્યું છે કે ખીંડી ઇઝ બોલે ને હે હાર ખીંડી ખૂબ જન જાદા મીરતી જાલ હોતી ને કસન બીતી બીચ કે નાલ કસન બીતી કાય તો લગાવા તો આમ કે ખીંડી જુગે નંગત રહે દે કમ સમય ને પાકે દે કમ સમય ને હોય દે એ સપાય ગોટો લેખ કરતો બીતી બોલે માય તૈયાર કરતો બીતી એ બે સમય હોય છે નો આય તે બે ઊંચો ઉસન કરું નામી कई फसल के धरवा नाले खेती करवा तो तेबे तो उनके फायदा लाभ मिले
0: से
1: और उठ पटंग हमें कसने बीतियो हमें लगावा नाल कसने का आयत कर दे बोले तो कहते नहीं है नो आए तो ये सपाए के बल्ले ये भी समय ने आम के ध्यान दे पड़े से पानी कांजी संगे संगे आप लोग नांगर फारोली कई कई और बानी मन लागू है कसन उसन समय ने उदा पड़ा ने कई बीती के न दखुक नहीं हो ना जानुक नहीं हो ना अनुक नहीं हो
0: अनुक नहीं हो
1: नो आए
0: एकदम नगद गुट बोली जा रहा तो ये सब तो होली आम चो नगद ज्ञान ध्यान गुट मन ने तो मैं बोलते रहे आम चो लगे और बोले असन
1: झाला बना से
0: हाँ झाला बना से तो उनके बोले हमें सुनो
1: आलते
2: अरे राकेश भैया इस बार फसल का क्या हाल है
3: अरे बहन फसल का हाल तो ठीक है लेकिन मेरी किसान सम्मान निधि अभी तक नहीं है
2: तुमने अभी तक EKYC नहीं करवाया
3: EKYC वो कैसे होगा
2: चुटकियों में होगा वो भी फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से
4: और इसके अलावा ये योजना की वेबसाइट पर भी बड़ी आसानी से हो जाता है और इसके बाद अपने खाते को आधार से लिंक करना भी जरूरी है फिर बिना किसी समस्या के पैसे सीधा तुम्हारे खाते में आने लगेंगे
5: डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं
6: अब EKYC की सुविधा आपके नजदीकी जन सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध है आज ही अपनी EKYC पूर्ण करें मोदी सरकार की गारंटी किसानों को हर साल ₹6,000 आधुनिक कृषि समृद्ध किसान
7: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
8: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
9: GST काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा
10: GST काउंसिल बुधवार नेटेन घोषणा कित्ता की सरकार सीमेंट तपोर्रो GST मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे इलेकेन संगमरमर इंदनत और ट्रेवटीन ब्लॉक इतके उनले कटात बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड
7: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
8: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
1: हाँ अले गोटमन तो अम्ब्रालू ने मांतर दक आमी पनाए मुर कर रहूं कि घाम बेरा से गोट ने और घाम बेरा से गोट बल्ले ने पानी के पीऊं क्या काय के खावा ऐसा भू है काम नहीं है
0: मैं समझ इसका काय गोटी का
1: असन अल दक असन समय ने बल्ले ने गोटक तू जानिस बोले यारू बनाओ बोल घर बल बनाओ से यारू खाओ से बोल पीऊं से बोल ने बल्ले ने मंडिया और ये
0: मंडिया के हल हिंदी में रागी बोल बोलवाते
1: हैं हाँ रागी बोल था हाँ। अलदक तू के सांगे से ये बीती ये मंडिया पेज बल्ले नसन आए कि तू एक एक दुई दोनी पीउन जा नहीं तू के घाम मारते बीती बोलियो लू बोलवा दी ये के भी नहीं धरे
0: और पेट एकदम दे सीतर लागे
1: हाँ सीतर लागे दे कार ऐसे उन काम बल करे दे लेकिन उनके उतलो फर्क नहीं पड़े थे तो ये आए और असन समय मांतर दक्षी ए बीच जमाना ने ए बीती खिंडी खिंडी बल तो असन उतलो नहीं जाने सो कोनी कोनी मानतर भाई मन किसान दादा मन ये मन जानत कसम बोल ले खेती बाड़ी करे सोत मरान ने नाले बाड़ी ने लगाए सोत मंडिया के और ये बोल ले मंडिया ए बिदा के चो मोल कितलो होली से ए चो मोल खूबी आसे
0: एक मोल असन में बोल होली दादा काय काज किया एक बोलवा मिलेट
1: मिलेट
0: मिलेट बोल ले ने एक बोलवा श्री अन्न ये असन मन अन्न है कि आमचो देह पाए का जो खूब बढ़िया है वो खूब बढ़िया है
1: खूब बढ़िया है बोले नहीं रोग राई का जो बोले खूब बढ़िया रोग राई बोले आसे नहीं नहीं होए
0: और ये जो मांग
1: दवाई मनात नहीं है
0: जो देश ले धरुन विदेश तक बोले जो मांग बल बढ़ी से
1: बढ़ी से उन्हीं का जे ये खूबे माइमर हो ऐसे और घाम दाए तो एक गोटोक दवाई वखट्टा असन है ये लोग मन का जे तो वाले हम इतलो बेर नहीं करू ये भेडवार तक बीती आसे ये मनात भेडवार तक करे सो ते मनात डिप्रेशन बन जा रहा और ये मन संग भेट घाट करे सो
0: चंद्र ऋषि
1: ठाकुर आले मंडिया चो गोट के गोटे आसो आमी वल सुनू और किसान दादाजी मन ये मन बोले सुनो तारू जानो
11: के आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पारंपरिक अनाज की जो कभी हमारे गांवों और खेतों की पहचान हुआ करता था, लेकिन अब फिर से अपनी पौष्टिकता और उपयोगिता के कारण लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रागी यानी मड़िया की। बस्तर अंचल में रागी केवल एक फसल ही नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति, खान पान और किसानों की जीवन शैली का हिस्सा रही है। कम पानी में तैयार होने वाली ये फसल न केवल किसानों के लिए लाभकारी है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद उपयोगी मानी जाती है। आज के समय में जब मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब रागी की खेती और उसके महत्व को समझना और भी आवश्यक हो जाता है। इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डिप्रोशन बंजारा जी। आप कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में विषय वस्तु विशेषज्ञ सस्य विज्ञान के पद पर कार्यरत हैं। तो सबसे पहले डिप्रोशन बंजारा जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी जगदलपुर के इस स्टूडियो में।
12: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।
11: और जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आज हम मड़िया, जिसे हम रागी भी कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और बस्तर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मड़िया बहुत ही प्रसिद्ध है। आम जनता अपने दिनचर्या में मड़िया को शामिल करती ही है किसी न किसी रूप में। तो हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर बस्तर में लगाने वाले और मड़िया के अलावा और कौन कौन से ऐसे लघु धान्य फसलें हैं, आप उसके बारे में हमें बताएं।
12: जी, जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे लघु धान्य फसलें हैं वो बस्तर के लिए बहुत ही उपयोगी है, और तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा लघु धान्य फसलें हैं उसमें मुख्य रूप से कोदो है, कुटकी है, रागी है जिसको हम मड़िया के रूप में जानते हैं, और सांवा है। तो हम आज मड़िया के बारे में बात करें जिसको हम रागी कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो बस्तर क्षेत्र है वो वन आच्छादित है, साथ में हमारा पाइल का प्रकार देखा जाए जो उच्चहन भूमि होती है उसमें ये प्रमुखता से खेती किया जाता है। और इसकी खेती के बारे में हम कहते हैं तो ये पारंपरिक है जिसको किसान भाई बिना ज्यादा खर्च के इसको लगाते हैं और अधिक आमदनी प्राप्त करते हैं। तो हम अगर इसकी खेती के बारे में कहें तो इसको लगाना बहुत ही आसान है, और इसको लगाने के लिए मुख्य रूप से जून जुलाई, जो 15 जून से लेकर 30 जुलाई तक इसका बुआई करने का उचित समय होता है, अगर हम इस समय उचित बुआई करते हैं तो हमारा फसल अच्छा होता है
11: जी।
12: और इसको लगाने के लिए हम दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं, या तो हम सीधी बुआई के रूप में भी उपयोग लगाया जा सकता है, या फिर इसको किसान भाई रोपा पद्धति के माध्यम से भी इसको लगा सकते हैं। जून में 15 जून को इसका नर्सरी डाल दें और 10 जैसे ही इसका दो से तीन पत्ती आती है फिर इसको हम अपने खेतों में रोपाई कर दें। तो इसका ये खेती करने के तरीके हैं। अगर हम इसका बीज दर की बात करें तो इसको लगाने के लिए 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम खेतों में लगा सकते हैं।
11: तो जब हम मड़िया की बात करते हैं तो किसी भी फसल को लगाने से पहले भूमि को भी तैयार करना पड़ता है।
12: बिल्कुल।
11: तो मड़िया लगाने के लिए भूमि को किस तरह से तैयार किया जाता है?
12: मड़िया लगाने के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो मड़िया का बीज होता है वो बहुत छोटे आकार में होती है, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। तो इसके लिए हमको हमारा जमीन जो है एकदम से भूरभूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका बीज गहराई में चला जाए तो इसका जर्मिनेशन जो है, अंकुरण जो है, प्रभावित होता है। तो इसीलिए हमको इसको भूमि के तैयार करने के लिए कम से कम में एक बार मिट्टी पलटने वाली हल की आवश्यकता होती है, उसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाना पड़ता है जिससे हमारा मिट्टी एकदम भुरभुरा हो जाता है, उसके बाद हम अपने बीजों को बुआई करना चाहिए।
11: जी, और जैसे हम अगर बस्तर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर धान का उत्पादन किया जाता है, और जैसा कि आपने बताया कि मड़िया को भी जून जुलाई में ही बोया जाता है और वही समय धान की खेती करने का भी होता है, धान को भी उसी समय में ही बोया जाता है। तो धान को अगर खेतों में बोएंगे तो क्या साथ साथ मड़िया को भी उसी खेत में लगाया जा सकता है, या फिर हम जैसे भर्री इधर बोला जाता है जो खाली भूमि रहती है, हम उसमें भी मड़िया को लगा सकते हैं और साथ ही साथ धान को हम अपने खेतों में लगाएं, ऐसा भी क्या किया जा सकता है?
12: जी, बहुत अच्छा सवाल है मैडम। किसान भाई जानते हैं कि जो हमारा धान की फसल होती है वो उसको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। धान की फसलों में हम पानी भर के रखा जाता है, और जो हमारा मड़िया की जो फसल है वो उसको पानी भरने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सिर्फ पूरे जीवन काल में सिर्फ 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर धान जो फसल है उसको हम निचली जो भूमि होती है जिसमें पानी इकट्ठा होते हैं वहां पे किया जाता है, और मड़िया की जो खेती है वो उच्चहन भूमि में किया जाता है जहाँ पे पानी न रुके। अगर पानी जहाँ पे रुकेगा वो हमारा मड़िया की फसल खराब हो जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि जहाँ पे पानी नहीं रुके ऐसे जमीन को हमको चयन करके मड़िया की खेती करना है।
11: तो जैसे बारिश का जब मौसम आता है तो बारिश तो रोजाना ही होती है
12: जी।
11: तो जब रोजाना बारिश हो रही है या फिर जब भारी मॉनसून आया हो तो उस स्थिति में भी क्या मड़िया या फिर रागी का जो पौधा है वो सर्वाइव कर पाता है, जिंदा रह पाता है, या फिर उस स्थिति में भी कुछ उसको प्रिकॉशन या फिर उनका बचाव किसी तरीके से करना पड़ता है?
12: जी बिल्कुल, हमारा जो वनांचल क्षेत्र है वहाँ पे बारिश तो होता ही है, तो हमारा जो रागी का फसल है एक बार इस्टेब्लिश हो जाने के बाद बरसात होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते हमको पानी का जो इकट्ठा होने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होना चाहिए। एक बारिश हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी जो है ढलान के रूप में चला जाना चाहिए। अगर लगातार 3 दिन 4 दिन बारिश होता है तो हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो जहाँ पे रागी लगाए हैं वहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए, बस हमको यही ध्यान रखना है, बाकी हमारा फसल में कोई नुकसान नहीं होता है।
11: जी, क्योंकि अब जो संयुक्त राष्ट्र है वो भी मोटे अनाज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है उस बारे में, और मोटे अनाज के लिए तो उन्होंने एक वर्ष भी निर्धारित किया था
12: जी।
11: तो क्योंकि इसकी पोषण तत्वों की अगर हम बात करें तो रागी में भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, तो क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिशन उसमें पाए जाते हैं या फिर न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है रागी की, जिसे हम फिंगर मिलेट भी कहते हैं,
12: हाँ जी,
11: मड़िया भी कहते हैं, तो उसके क्या न्यूट्रिशियस वैल्यू है, आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
12: जी बिल्कुल, हम जब रागी की बात करते हैं तो यह एक हाईली न्यूट्रिशनल क्रॉप है, जिसमें कैल्शियम है, आयरन है और सुपाच्य रेशा है, और साथ में प्रोटीन है और विटामिन है, और ये मिनरल से भरपूर फसल है जिसमें ये सारी चीजें पाई जाती है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की बात करते हैं तो फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे रागी पे उपलब्ध रहते हैं। और उसी प्रकार से ये जो रागी है हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन कहना चाहिए या फिर प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम उनके हड्डी के मजबूत करती है और बच्चों को भी बल प्रदान करती है। और उसी प्रकार से हम इसकी जब हम शुगर की बीमारी बोलते हैं जिसको, हम उसके लिए भी इसको रिकमेंड करते हैं डॉक्टरों के द्वारा कि इसको खाने से वो नियंत्रण में रहता है करके। और साथ में ही जो माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं या माल न्यूट्रिशन जो भी व्यक्ति हैं वो इसको सेवन करने से उनकी जो भी माल न्यूट्रिशन है वो कम हो जाती है।
11: जी।
12: तो इस प्रकार से इसको लेने से हमारा सुपर फूड है, इसको लेना चाहिए अपने डेली यूज में।
11: अच्छा, दैनिक आहार में हम इसको शामिल कर सकते हैं?
12: बिल्कुल कर सकते हैं।
11: और जैसे कि आप भी जान रहे हैं कि आजकल जैविक खेती का बहुत चलन है, तो क्या हम मड़िया को भी जैविक खेती या फिर जैविक तौर तरीकों से इसका उत्पादन किया जा सकता है, जैविक खाद इसमें उपयोग किए जा सकते हैं, या फिर जैविक खेती के जो अन्य तरीके हैं उनका इस्तेमाल करके भी इसका उत्पादन किया जा सकता है?
12: जी बिल्कुल, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, जो हमारा मड़िया की खेती है उसमें हम बहुत ज्यादा रासायनिक खाद की आवश्यकता तो बिल्कुल ना के बराबर ही होता है, और हम जैविक खेती में जाते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा लाभ होता है, क्योंकि जैविक जो खाद है उसकी मात्रा हमको कम डालनी पड़ती है। इसमें हम मुख्यतः रूप से 5 से 7 टन ही गोबर खाद की आवश्यकता होती है, अगर केचुआ खाद की बात करें तो 2 से 3 टन में ही हो जाता है, और साथ में बायो फर्टिलाइजर भी आज हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से बायो फर्टिलाइजर का भी उत्पादन हो रहा है वहां से भी, और या फिर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी किसान जो है प्राप्त कर सकता है इसको। और जो बायो फर्टिलाइजर है या जैविक खाद है इसको करने से हमारा उत्पादन दर है कम से कम में 10 से 15% बढ़ जाती है। तो हमारे जो किसान भाई हैं, ऑलरेडी जो बस्तर क्षेत्र के किसान भाई हैं, वो जैविक खेती करते आ रहे हैं और रागी की खेती में किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमको जैविक रागी का यहाँ पे उपलब्धता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हम जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोबर खाद है, केचुआ खाद है, और बायोफर्टिलाइजर में हम बोल सकते हैं कि एक स्फुर घोलक होता है जिसको हम PSB बोलते हैं, ZSB कहा जाता है और KSB कहा जाता है। इन सभी चीजों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ में ही एक नील हरित काई का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। नील हरित काई का प्रयोग हम 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर, मात्र 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसको छिड़काव करते हैं, तो इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा आता है। इसमें कंसे बहुत अच्छे बनते हैं, उनका जब रागी का जब ग्रेन्स डेवलप होती है तो अच्छे दाने भर के आते हैं।
13: जी जी जी। जैसे कि हम चना या फिर मूंगफली लगाते हैं तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है और उससे जो हमारी मृदा है वो और ज्यादा पोषक तत्वों से भर जाती है। तो क्या इस तरह का कोई लाभ रागी या कहें मड़िया को लगाने से भी कृषकों को हो सकता है, या फिर मिट्टी के पोषक तत्व ज्यादा बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ लाभ अगर हो तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
12: जी, आपने सही कहा है कि जैसे कि मूंग लगाते हैं, मूंगफली लगाते हैं या अन्य दलहनी फसल लगाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उसके प्लांट में मैकेनिज्म होते हैं। लेकिन हमारा जो ये लघु धान्य फसलें हैं जिसमें रागी, कोदो, कुटकी, हम सामा बोलते हैं, वो इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एक सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप होने के कारण से इसमें दलहनी फसलों की तरह स्थिरीकरण की मैकेनिज्म नहीं है।
13: लेकिन क्या कोई अन्य लाभ होते हैं इन्हें लगाने से?
12: अन्य लाभ में कहना चाहिए कि ये कम फसल, कम जो रासायनिक है या फिर कम उर्वरा है उसमें हो जाता है, लेकिन इसमें अलग से ऐसा कोई लाभ तो नहीं कह सकते। बस यह है कि हमारा जो फसल है वो कम उर्वरक में हो जाता है।
13: डिप्रोशन बंजारा जी, हम बात करेंगे आर्थिक पहलू के बारे में, क्योंकि सरकार भी इसके उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, तो हमारे किसान भाई जब भी किसी फसल का उत्पादन करते हैं तो उसका आर्थिक पक्ष भी देखते हैं। तो आप बताएं कि अगर कोई किसान रागी की फसल उगाता है तो उसे आर्थिक तौर पे किस तरह से लाभ हो सकता है और उसका अभी वर्तमान में समर्थन मूल्य क्या चल रहा है?
12: जी बिल्कुल मैडम, यहाँ पे हम रागी की खेती की बात करते हैं तो जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें रोग भी कम लगते हैं, कीट भी कम लगते हैं, इसका जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो बहुत ही कम लागत में हो जाता है। अगर हम वही धान की बात करते हैं तो धान में हमको बहुत ज्यादा ही रोग बीमारी आती है आज के समय में, और उसमें खरपतवार बहुत ज्यादा आ जाता है, जिसको प्रबंधन करने के लिए हमारा खर्च जो है बढ़ जाता है। और हम आज देखते हैं कि हमारा जो धान का MSP है वो लगभग 3000 या 3500 के करीब है, लेकिन जब हम रागी की बात करते हैं तो 2025-26 में जो MSP का जो प्राइस है रागी का वो 8886 रुपए प्रति क्विंटल है। तो हमारा अगर हम रागी लगाते हैं तो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो लगभग 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का होता है, तो हमारा जो MSP प्राइस है वो धान से भी ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम किसान भाइयों को बोल सकते हैं कि धान के बदले अगर रागी लगाते हैं तो आर्थिक रूप से ज्यादा लाभ होगा। और कहना चाहिए कि शासन जो है समय समय पे किसानों को अनुदान भी दिया जाता है। अभी कुछ समय पहले स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन राशि दिया जाता था कि धान के बदले अगर अन्य फसल हम लगाते हैं, दलहनी है, लघु धान्य फसलें हैं या सब्जी हैं, तो उनको कुछ रुपए दिया जाता था धान के बदले दूसरे फसल लेने से। लघु धान्य जब हम लेते हैं जिसमें रागी, कोदो, कुटकी है, तो उसमें लगभग 10,000 से 11,000 रुपए प्रति हेक्टेयर उनको दिया जाता था, बशर्ते किसान को ये करना था कि पिछले साल जो धान का पंजीयन है वो होना चाहिए और अगले साल उसके दूसरे फसल लगाना चाहिए, तब वो राशि उनको मिलता था। तो इस प्रकार से हमारा जो MSP का प्राइस है वो धान से भी ज्यादा है, और गवर्नमेंट भी इस चीज को बढ़ावा दे रही है कि धान के बदले दूसरा फसल लगाएं, तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को आर्थिक मदद मिलती है और अधिक मिलती है।
13: जी जी जी। क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र भी इसको मान्यता दे चुका है और अब देश विदेश में भी रागी मड़िया जिसे हम कहते हैं उसकी बातें हो रही हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो रागी फसल का क्या महत्व है और बस्तर किस तरह से अपने आप को रागी या फिर मड़िया के उत्पादन में खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित कर सकता है, कैसे रख सकता है अपने आप को, कैसे देखते हैं आप?
12: उसके लिए हमारा जो बस्तर क्षेत्र है, मैं देखता हूँ कि हमारा जो पूरे बस्तर का परिक्षेत्र है 70% आसपास का फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे, और उस फॉरेस्ट एरिया में हम देखते हैं कि जो अपलैंड एरिया है वो बहुत खाली रहता है। वहाँ पे किसान भाई कुछ नहीं लगाते हैं, मतलब खाली छोड़ देते हैं, परती छोड़ देते हैं हर साल। तो हम किसान भाइयों से आग्रह कर सकते हैं कि उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो सुपर फूड है रागी, न्यूट्रिशनल इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसको हमको किसानों को बढ़ावा देना चाहिए कि किसान भाई इस जमीन को खाली ना छोड़े, क्योंकि मात्र एक बार बुआई कर देने से और एक बार या दो बार इसमें खरपतवार निकाल देने मात्र से ही हमारा उत्पादन अच्छा आ जाता है। तो हमको इसको बढ़ावा देना चाहिए जिससे हमारा बस्तर की पहचान बढ़े, क्योंकि आज हम किसान भाई के घर देखते हैं कि वो मड़िया का पेज पीते हैं, मड़िया की अन्य चीजें बना के वो डेली यूज में लाते हैं। तो ये निश्चित रूप से होगा कि मरहान जमीन को हम मड़िया लगा के अपना उत्पादन बढ़ाएं और उसका क्षेत्र विस्तार करें, तो हमारा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जरूर बनेगी।
13: जी जी, आपने तो मड़िया और उसकी खेती के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है डिप्रोशन बंजारा जी, लेकिन फिर भी कोई बात रह गई हो या फिर आप हमारे श्रोता जो किसान भाई बहन सुन रहे हैं आपको, उनसे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर कहें।
12: बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि आज हम जो हमारा मड़िया है वो सिर्फ मड़िया पेज के रूप में नहीं रह गया है, आज हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका बहुत ही अच्छा प्रोसेसिंग करके, वैल्यू एडिशन करके चीजों को मार्केटिंग डेवलप हो चुका है, जिसमें हम रागी का आटा है, रागी का बिस्किट है, रागी का माल्ट है, रागी का कुकीज है, इवन आजकल तो रागी के ड्रिंक भी अवेलेबल होने लग गए हैं मार्केट में। तो इस प्रकार से अन्य चीजों को भी प्रोसेसिंग की ओर लेके जाएं और इसका आर्थिक मूल्य को बढ़ेगा और किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा।
13: जी जी, तो डिप्रोशन बंजारा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोता भाई बहनों को, आपने अपना समय दिया और हमसे बातें की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
12: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और मैं सारे किसान भाइयों श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: हाँ दक धर्म काय सुंदर ये रे मंडिया फसल छो जानकारी ने दखनु मंडिया तो अमित पनाय बोल बोलू और मंडिया बोल ले आप लो सपाय बानी मले बट गोटक दवाई है
0: दवाई
1: है एक केबे बोल तू खा नालका पेज बनाओ नालकाई बोल बनाओ ये केबे बोल कोनी समय न बोले कोई का है तो नुकसान बोल तो नहीं है और एक ये मन रहोत डिप्रेशन बंजारा और ये मन संग गोट बात करते रहोत
0: चंद्र ऋषि ठाकुर
1: ठाकुर तो वाले के तो अमरालू मांतर द काम से लग बिला और
0: जाला मन बला
1: वाले के अमराओ
14: बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को
15: पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बेम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं।
16: राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं।
15: इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है।
17: विद द हेल्प ऑफ नेशनल बैम्बू मिशन वी मैकेनाइजिंग ईच एंड एवरी प्रोसेस फ्रॉम बैम्बू अनलोडिंग टू ट्रीटमेंट टू फर्नीचर मेकिंग प्रोसेस।
15: किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है।

0: सुना सुना सुना किसान भाई बहन मन सुना सुतुरच गोड
1: फसल बीमा करतो काजे हमेशा सुरता राखा गोड
0: अकाल पूर लेरा धुका जसन अड़नाप चिपा आरु कीड़ा थापा रोग राई ले फसल बर्बाद होन गेले बीमा तुमचो संग दे दे
1: फसल बर्बाद हो नहाले कम हो उपजन मीरे दे बीमा ले तुमके धन
0: सरकार तुम चुका जे कर ली से कैक फसल बीमा योजना आन ली से
1: भारत सरकार चो फसल बीमा योजना हिसाब ने अधिसूचित खातो फसल जसन धान गहूं तिल आरु बरकार बीती पाक फर फसल आरु बेपार बीती फसल जसन डांडा नडेर मंचो बीमा होय से बीमा किस्ती पटा तो काजे सरकार बाटले पैसा कौड़ी चो सहायता मिरे से
0: किसान भाई बहन मन फसल बीमा योजना चो लाभ धरा आप लो ये तो समिया ने हो तो नुकसान चो पूर्ति करा
1: फसल बीमा योजना काजे भेटघाट करा आप लो जिला चो कृषि अधिकारी कृषि सहकारी समिति नाहले लगे चो बैंक शाखा ले
0: अगर जानकारी काजे फोन करा किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर आए 1800180155 नाहले लागान करा www.farmer.gov.in
1: फसल बीमा योजना चो संग जीवना न्याय दे हरीक उदिम चो रंग

0: अली गुटमन तो अमरालू मांतर दक धर्म ये धर्म और कुर्सो तो भीड़ लास होत मांतर गोटक बल गीत गोविंद बले ना सुनाला से सावो है से कस
1: गीत नाले पर
0: नो है
1: नी बने काय
0: आले खेती बाड़ी जी गोटोली काम धाम से गोटोली और मांतर हरिक बल होतो रंपनाय बल बोल लु की हरिक ने बल रतोरे है तो वाले बेर नाय कर उतेवे
1: हां
0: ये गीत के अमराव पाछे गीत कुरिया मन से नाव के सांगवा

0: करो तो दादा एक गीत के बोले हम सुन लू ने
1: और
0: दक कितलो नगद गीत रहे और ये जो गीत कुरिया किसी तालीस
1: हाँ चीता लिखा है
0: हाँ
1: गीत कुरिया यमन रोत और मधुराम और यमन से संगवारी
0: माल
1: अल द कार से गीत गोविंद तो अमरा लू ने आरु दादा दीदी मन ए बीच समय खेती बाड़ी समय आए और सपाए बल्ले ने काम धाम चो समय आए मानतर का है आप लोग जीव जांगर की खाओ तो पीओ तो ये सपाए के लेख करते रहे
0: हाँ।
1: बिया बर्पन बोलो हो इसे दखने
0: हाँ।
1: असन समय बोले जाऊ खुआ और खिंडिक नगद बन लीज बरून खिंडिक जुगे बल खाओ
0: हाँ।
1: मानतर का है कि पेट पाट के बल दख तो रहा है लेख कर तो रहा है
0: जीप के नहीं दख तो रहा जीप के दख तो रहा
1: तो आरु घाम जुगी हो तो तेल मसाला बीती खिंडिक दियाने ची देते रहा है कि असन बीती खातो रे बल नो है और पानी होली पेज होली ने असन बीती मन जुगे करते रहा पीला जिला सपा एक ध्यान देते रहा बिना काम ना लोग बाहर नहीं सकते नो आए तो वाले दक आले दक हम चो विदा धर समय हो से हल में मोड़ा कर रख सकले से
0: हाँ मैं विदा धर हाँ तो किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सपा गांव कारी किसान दादा दीदी मन के जातो पूरे मैं धर्मू
1: मैं कुर्सो
0: अमित दोनों करूं से
1: जुहार।

0: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शिक्षकों के लिए। विषय है इंटरनेट और आधुनिक शिक्षा पद्धति। वार्ताकार हैं इंद्र कुमार झा।
1: नमस्कार, मैं इंद्र कुमार झा। श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र अथवा समाज में शिक्षा सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति का मापदंड होती है। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश प्रतिरूप पर आधारित है, जिसे सन 1835 ईस्वी में लागू किया गया। जिस तीव्र गति से भारत के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है, उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि हम देश की शिक्षा प्रणाली की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, चुनौतियों और संकट पर गहन अवलोकन करें। श्रोताओं, शिक्षक के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आज का विषय है इंटरनेट और आधुनिक शिक्षा पद्धति। श्रोताओं, सन 1835 ईस्वी में जब वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी, तब लॉर्ड मैकाले ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य भारत में प्रशासन के लिए बिचौलियों की भूमिका निभाने और सरकारी कार्य के लिए भारत के विशिष्ट लोगों को तैयार करना है। इसके फलस्वरूप एक सदी तक अंग्रेजी शिक्षा के प्रयोग में लाने के बाद भी 1935 ईस्वी में भारत की साक्षरता 10% के आंकड़े भी पार नहीं कर पाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता मात्र 13% ही थी। तब से अब तक हमने बहुत लंबा सफर तय किया है। वर्तमान में भारत की साक्षरता 74.04% है, जो कि विश्व की साक्षरता दर 84% से कम है। वर्तमान में आधुनिक शिक्षा पद्धति में इंटरनेट का व्यापक उपयोग हो रहा है। श्रोताओं, इंटरनेट आज हर घर में पहुंच चुका है। पिछले 20 वर्षों में टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है, जिसके दौरान डेस्कटॉप कंप्यूटर और इंटरनेट का विकास किया गया है। श्रोताओं, अब आइए हम जानते हैं इंटरनेट के होने वाले लाभ से। इसके अंतर्गत पहला बिंदु पारस्परिक क्रिया है। इसके अंतर्गत इंटरनेट ऑनलाइन शिक्षा के कार्यक्रम स्तर और विधि दोनों में पारस्परिक क्रिया प्रदान करते हैं। पारस्परिक क्रिया कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों और प्रशिक्षकों को विचारों का आदान प्रदान करने में समर्थ बनाती है। दूसरा पॉइंट है वेब शिक्षक। वेब शिक्षक जिसने अपनी हस्तकला को बढ़िया ढंग से सीख रखा है, उनके पास आगे बढ़ रही टेक्नोलॉजी को अनुकूल बनाए जा सकने वाला हस्तांतरित किए जाने योग्य दक्षता और ज्ञान होगा। तीसरा बिंदु है दूरस्थ शिक्षा। जैसे जैसे इंटरनेट का खर्च घट रहा है, बहुत से यूनिवर्सिटी कक्षा के लाभों को दूरस्थ शिक्षा के व्यवस्था में लाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रक्रिया को बुद्धिसंगत बनाना और भी आसान हो गया है। इंटरनेट दूरस्थ शिक्षा और शिक्षण को आसान बनाता है। चौथा बिंदु है स्वतंत्र अधिगम। इंटरनेट स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर प्रदान करता है। आधुनिक वेब आधारित अधिगम और कंप्यूटर का प्रयोग छात्रों को अनुदेशन देने के ढंग में आधारभूत परिवर्तन किए जाने का साधन प्रदान करता है। पांचवा बिंदु है योग्यताओं का प्रयोग। इंटरनेट शिक्षा प्रक्रिया के उच्च स्तर का अर्थ है सीखने में योग्यताओं का विशिष्ट प्रयोग करना। छठवां बिंदु है वेब आधारित शिक्षण और शिक्षा। जानकारी आधारित साइटों के साथ एकीकृत किए जाने पर शिक्षा की बढ़ती हुई और नई तकनीकों द्वारा छात्रों की बढ़ती हुई अभिप्रेरणा को ध्यान में रखते हुए वेब आधारित शिक्षण और शिक्षा में प्रभावशीलता पर गंभीर रूप से विचार किए जाने की अति आवश्यकता है। सातवां बिंदु है ऑनलाइन शिक्षा का तीव्र विकास। वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा का इतनी तेजी से विकास हो रहा है कि इसका अनुसरण करना बहुत कठिन हो गया है। पूर्व अनुमान किया गया है कि योग्य ऑनलाइन शिक्षकों की भारी रूप से कमी हो गई है। इंटरनेट द्वारा शिक्षण संस्थान यदि अपने उन शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं और उनकी प्रतिभाओं का लाभ उठा सकते हैं, तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। श्रोताओं, अब आइए हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है। श्रोताओं, आज शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का महत्व बहुत बढ़ गया है। वैसे तो हर क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग महत्वपूर्ण है। जब इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ था, तब कुछ भी जानकारी एक दूसरे को धीरे धीरे प्राप्त होता या नहीं भी होता था। जब से इंटरनेट आया, तब से एक दूसरे को अपना संदेश देना या प्राप्त करना बहुत ही आसान हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग शिक्षक के लिए अमृत के समान है। बच्चों को सिखाने के उद्देश्य से शिक्षक इंटरनेट पर जो प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं उसे सर्च करके स्वयं पढ़ लें, तब बच्चों को कक्षा में अधिगम करा सकते हैं, जिससे बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर साबित होगा। आज के टेक्नोलॉजी युग में वेब हिंदी दुनिया ने भी इंटरनेट का उपयोग कर बहुत कुछ सीखा एवं अनुभव के साथ साथ ज्ञान प्राप्त किया है। आज के वर्तमान स्थिति में विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, शिक्षा, ऑनलाइन नौकरी के आवेदन, ऑनलाइन खरीदी बिक्री, रेलवे, हवाई जहाज, बस, कार आदि घर बैठे बैठे बुकिंग हो जाता है। यहाँ तक कि ई बुक से पढ़ना और भी आसान हो गया है। विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को अपना संदेश दे सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, वह भी कम खर्च में। यही नहीं, वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अलग अलग स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति को एक साथ एक दूसरे के आमने सामने से बातें करते नजर आते हैं। भारत में जब से घर घर मोबाइल वितरण किया गया है, तब से भारत में इंटरनेट क्रांति आ गया है। अब केवल शहर ही नहीं, गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच गया है। जहां आने जाने की सही मार्ग आज भी नहीं है, वहां भी इंटरनेट पहुंच चुका है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के पास

0: विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वह बच्चे और विद्यार्थी जिसके शहर में वह कोर्स उपलब्ध नहीं है या जो बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, वह भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर भंडारण और डेटा प्रबंधन के लिए सबसे बढ़िया साधन है कंप्यूटर में आप अनेकों पुस्तकों को डिजिटल फॉर्मेट में अपने साथ साथ रख सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी अपने लिए जरूरी नोट्स तैयार करने में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की सहायता से ले सकते हैं। शिक्षक भी विद्यार्थी को प्रभावी ढंग से किसी भी विषय को समझाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रोजेक्टर, इंटरनेट आदि व्यावहारिक ज्ञान लेना अति आवश्यक होगा। श्रोताओं, आप कभी भी और कहीं भी अपने दोस्तों के संपर्क में वीडियो कॉल, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग जैसे सुविधाओं के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं और किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षा का एक अच्छा स्रोत है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बड़ा योगदान है। आज लगभग हर स्कूल और हर कॉलेज में कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर के माध्यम से अध्यापकों को भी छात्रों को पढ़ाने में सहायता मिलती है। आज इंटरनेट जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। हमें रेलवे समय सारणी या कोई ट्रेन कहां पर है, हम लोग लाइव देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात, शिक्षा ग्रहण करने के अलावा ऑनलाइन बिजनेस करके पैसा भी कमाया जा सकता है। तो श्रोताओं, शिक्षक के लिए इंटरनेट अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक को हमेशा अपडेट रहना चाहिए। जो पढ़ाना चाहते हैं उसे इंटरनेट पर सर्च करके पढ़कर समझने के पश्चात बच्चों को प्रभावशाली ढंग से समझाए जा सकते हैं।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षकों के लिए। विषय था इंटरनेट और आधुनिक शिक्षा पद्धति। वार्ताकार थे इंद्र कुमार झा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन का जेगोठ में अभी हम सुनेंगे संत गुरु घासीदास बाबा के विषय में। प्रस्तुति है भरत कुमार गंगादित्य की।

0: तो पाठ के दखा उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन
1: पीलामन का जे गोठ ये कार्यक्रम की सुनतो जमाए पीलामन के मच बाटले खुबे खुबे मया और लाड पीलामन ये कार्यक्रम ने रोजे दिना आमी तुम के नगत नगत गोठ बात नगत कहनी और महापुरुष मंचो जीवनाचो गोठ मन के सांगो से असनी आजी मैं जे महापुरुष चो गोठ के सांगो आए हुनात बाबा गुरु घासीदास बाबा गुरु घासीदास चो अवतार हो रहे सन 1756 ने छत्तीसगढ़ राज्य चो रायपुर जिला चो गिरोदपुरी गांव ने ये मंचो बाबा रला महंगू दास जी और आयाचो नाव रहे अमरावतीन बाबा गुरु घासीदास सतनाम पंथ चो थापना करला असन गोठिया तो हिसाब ने ये पंथ के सतनामी पंथ बलतुर होए से बाबा गुरु घासीदास भंडारपुरी ने आपलो ठान के संत समाज के परछट सत जो सकत संगे देव रहे होता बाबाजी चो बंस चो लोग आजी बले रहे सोत आपलो समयाने बाबाजी समाज चो भीतरे चो गरीब अमीर भेदभाव जातिवाद और अड्रा टकर मन के गुचाउन मनुक मनुक गोटकी महा बलून नगद गोट के मनुक मांदी के सांगला ये मंचो सद धर्म चो गोठले समाज के खुब्बे काई जाई नगद ज्ञान सीखुक मिरली बाबा गुरु घासीदास चो जन्म जयंती के गुलाय छत्तीसगढ़ ने 18 दिसंबर दिने मनातुर होए से बाबा गुरु घासीदास जात जात ने भेदभाव और समाज ने भाईचारा नीरतों के दखुन खुबे दुखले रला होन सर लगाए उवाट करते

हालांकि समाज के ये चोले मुक्ति मीरो मानतर ये चोले लोग मन के काई फरक नहीं पड़तो के हुन सत्य के डगरा तो काजे गिरोदपुरी जो रानबन खमन ने छाता पहाड़ ने गेला और समाधि ने बसला। गुरु घासीदास काजे असन बले जानुक मीरे से कि हुन सोना खान चो खमन ने बले सत आरु ज्ञान के डगरा तो हिसाब ने खूबे तप करूरला। गुरु घासीदास बाबा गिरोदपुरी ने आपलो आश्रम बनाला। बाबा जी सत्य नाम पंथ चो स्थापना करला और सात ठान सिख्या के सांगला। ये सात ठान सिख्या मनात। पहल सिख्या आए सत्य नाम चो उपरे विश्वास संगतुर। दूसर सिख्या आए जीव चो हत्या नी करतुर। तीसर सिख्या आए मांस नी खातुर। चौथा सिख्या आए चोरी चकारी जुआ खेल तोले लाफी रतुर। पांचवा सिख्या आए निशा पानी ले लाफी रतुर। छठवा सिख्या आए जाति पाति चो भेदभाव ले लाफी रतुर। और सातवा सिख्या आए व्याभिचार नी करतुर। ये सब पाए नगद सिख्या मन के बाबा गुरु घासीदास सांगला। गुरु घासीदास के आत्म ज्ञान मेरु रहे। हुन मन चो मानतुर रहे कि समाज चो जमाए माने गोट की आत। कोनी बले बड़े कोनी नानी नुहात। गुरु घासीदास पशु जनावर के बले खोबे माया करते रला। होन पशु जनावर चो ऊपरे काई अत्याचार नी करा बलून सब पाए के सांगते रला। गुरु घासीदास चो सांगलो गोट ने कितरे ही झान लोग मन चलला। हुन मन चो सिख्या चो असर छत्तीसगढ़ चो पहिल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह ऊपरे बले रहे असन लोग मन सांगुआत। गुरु घासीदास चो सांगलो ज्ञान चो गोट और हुन मन चो जीवना चो गोट मन के सतनाम पंथ के मानतो लोग मन गाउन गाउन नाचुआत। और असन नाच तो गावतो के पंथी गीत पंथी नाचा बलतोर होई से। एबे पंथी के छत्तीसगढ़ राज्य चो गोटोक लोक विधा बले बलतोर होई से। आले तेबे पिलामन सुनो गोटोक पंथी गीत।

0: पिलामन ये रहे पंथी गीत। ये गीत आरु नाचा के सब पाए लोग मिसुन भाती गववात और नाचवात। पिलामन ये था समझ तोर बीती गोठे आए कि पंथ बल्ले होए से बाट और पंथ चो लागुन गोटो खास पंथ ने बल्ले बाट ने चल तो लोग मंचो गाव तो नाच तो बीती नाचा के पाछे बल तो रोली पंथी नाचा। नगद विचार ने सद धर्म चो बाट ने सतनाम पंथ चो लोग मन चलवात। यही लागुन ये के होन पूजा अनुष्ठान बेरा ये नाचा के गीत गाउन गाउन नाचुआत। पंथी नाचा के खूबे लोग मिसुन भाती नाचसोत। ये था 15 झान महा लोग रसोत। गोटोक गाव तो लोग 3 झान बजा तो लोग गोटोक नाचा सिखाऊ गोटोक सिटी मास्टर और 10 झान नाच तो लोग बजा तो लोग ने गोटोक मांदर बजा हुआ है गोटोक झांझ बजा हुआ है और गोटोक झुमका बजा हुआ है। ये नाचा के सतनामी पंथ जो लोग मन बारा मासी संजबेरा जयत खाम आरु गुरु गद्दी गुड़ी लगे नाचुआत। आले पिलामन आले फेर गोटोक असनी पंथी गीत और सुनो।
1: गुरु घा

बच्चों का कार्यक्रम पिलामन का जगोठ में आप सुन रहे थे संत गुरु घासीदास बाबा के विषय में। प्रस्तुति थी भरत कुमार गंगादित्य की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉ शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
3: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
4: आईसीसीआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
5: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रूपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे।

पहली से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान स्याह और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि चार अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किशोर कुमार की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म आपकी कसम का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं लखमू राम और साथियों के स्वर में भतरी लोकगीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है सन्नू मरकाम पखनार दरभा से, हिड़मो कवाशी कोड़ेनार से, पवन गावड़े वाहनपुर बास्तानार से, विजय बघेल कामड़पाल से, दशरथ यादव कोयपाल से। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है शेख हुसैन की आवाज में छत्तीसगढ़ी लोकगीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है महामाया पारा ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमारी साहू। ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन। ग्राम छिंदावाड़ा रायकोट से जुगल कश्यप, जयदेव कश्यप, सुशेषण, शंकर बघेल, सुखदेव कश्यप, बुधुराम कश्यप और संगजोबीर कश्यप।

पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत में आइए अब सुनते हैं कलावती और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्कर और तन्मय गजभिये। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। पूसपाल से उर्मिला सेठिया, तोकापाल से कार्तिक ठाकुर, राजूर से जयराम नाग, डिमरापाल से छोटू नाग और मावलीगुड़ा से कृष्णा सेन।

गणेश मंडावी और साथियों के स्वर में प्रस्तुत है ये गोंडी लोकगीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं कामानार से सुखमन नाग, जयदेव नाग, दरभा से खूबराज और राजेश प्रधान, कामानार से महादेव और लक्ष्मण, चिलकुटी से भुवनेश्वर कश्यप, सोनधर नाग, दिनेश और बालमन कश्यप।

कार्यक्रम का अगला लोकगीत है हल्बी बोली में, गायिका हैं गेलमणि देवी। इस गीत को सुनना चाहा है दयोनाग नानगूर, संतोष नाग बाबू सिमरा, अर्खित कुमार मुसरीगुड़ा, शोभा राम बेलवुट्टी और धीरेन्द्र पांडे मुरकुची। नारायणपुर से मुचाकी हिडमा, भीमा, संदीप पोदिया और सतीश माड़िया।

आप सुन रहे थे पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में आइए सुनते हैं कंकालीन माता पाड़ और लक्ष्मी जगार पाड़। वादक कलाकार हैं गणपति कड़ियारी और साथी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में आप सुन रहे थे कंकालीन माता पाड़ और लक्ष्मी जगार पाड़। वादक कलाकार थे गणपति कड़ियारी और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency or NTA on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group SOG has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary, Edappadi K. Palaniswamy, has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati. Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. The Ministry of Education today organized a high-level diplomatic interaction on Bharat Innovates 2026 in New Delhi as part of preparations for the Global Innovation Event scheduled to be held in Nice, France from 14th to 16th of June next year under the India-France Year of Innovation. The interaction brought together ambassadors, high commissioners, diplomats and government officials to discuss opportunities for global collaboration through India's growing innovation ecosystem. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. In Maharashtra,

0: In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad tonight, chasing a target of 169 runs. Sunrisers Hyderabad were all out for 86 runs in 14.5 overs. Earlier put into bat, Gujarat Titans posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 396.62 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सुबह 5:55 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे।

और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सुबह 5:55 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे।